ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की श्रावण मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त 2026। सुबह के 5:56 और 38 सेकंड हो रहे हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषध निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृत

दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू PNG कनेक्शन है। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।

0: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। दो क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के दो मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जा रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं समूह स्वर में ये देश वंदना।

आपने समूह स्वर में ये देश वंदना सुनी। अब लिए चलते हैं आपको भक्ति संगीत के संसार में और सुनवाते हैं शीला वर्मा के स्वर में तुलसीदास रचित ये रचना।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने ये भक्ति गीत सुना। कार्यक्रम आराधना का आनंद आप उठा रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर से। कार्यक्रम में अब समय है पंडित कुमार गंधर्व की गाई कबीरदास रचित इस रचना का।

0: हरिओम शरण की गाय इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं खेती की बात। आज आप सुनेंगे धान को कीटों से कैसे बचाएं विषय पर जानकारी दे रहे हैं अभिनव गौरहा।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार भाई। हर क्षेत्र में धान के जन मुख्य फसल है हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे क्षेत्र के तन धान के फसल लग गए। अब लगभग पहलिया जिन खातू है, जिन उर्वरक है, ओला डाले के समय आ गए। अब यही मेले शुरू होते कि भाई धान में आनी बानी के कीट के आक्रमण होते, कुछ कुछ रोग भी लगते। रोग के बाद अपन ला बाद में बताबो, आगू के क्रम में बताबो। आज हम बात करबो कि धान में, धान के फसल में लगे वाले कीट से हम कैसे बांच सकत हन, अपन फसल ला कैसे बचा सकत हन। धान के फसल खेत में लग चुके हैं। अब किसान भाई मन ला सबले ज़्यादा जरूरी है कि फसल के निगरानी करना। कई पैत हम खेत में पानी, खाद, उर्वरक के ध्यान देथन, लेकिन कीट मन ऊपर ध्यान नहीं देवन। जब तक कीट के प्रकोप ज़्यादा दिखाई नहीं देवे तब तक फसल ला काफी ज्यादा नुकसान हो चुके होते। एकर बर सबले जरूरी काम होते कि खेत ला लगातार देखत रही। हफ्ता में कम से कम 2 से 3 पैत खेत जाके पौधा ला ध्यान से देखना है। पत्ती मन हरियर है या पिवरा होते, पौधा के बीच के जिन हिस्सा है वो सूखत है कि नहीं सूखत है, पत्ती मन मुड़त है कि नहीं मुड़त है, तना में छेद थोड़े दिखाई देते, ये जम्मो बात ऊपर हमला चेत करना है। धान के कीट की जब बात आते तो धान में प्रमुख कीट में से एक होते तनाछेदक। तनाछेदक एक कीड़ा धान के जिन तना होते ओखर अंदर जाके वाला नुकसान पहुंचाते। अगर फसल है छोटे अवस्था में है तो पौधा के बीच वाले हिस्सा है सूखे लगते। एला आम भाषा में किसान मन डेड हार्ट या सूखा दिल के नाम से जानते। बाद में जब धान में बाली आए लगते तब कुछ जन बाली होते ओमन सफेद दिखाई देते, ओमा दाना बिल्कुल नहीं बने, वह पोचवरी थे, तो सीधा उत्पादन हा प्रभावित होते। दूसर महत्वपूर्ण कीट है पत्ती लपेटक। ये जन कीट होते धान के पत्ती ला मोड़ के उखर अंदर मरी थे और पत्ती के हरियर हरियर हिस्सा ला खाते। कुछ समय बाद जब पत्ती हा सफेद या सूखा कस दिखाई देते तो हमें पता चलते खेत में बहुत ज्यादा पत्ती ऐसा ढंग से प्रभावित है तब फसल के जन बढ़वार है ओमा सीधा असर पड़ सकते। किसान भाई हो, कोनो भी कीट दिखाई देते तो तुरंत कोनो भी प्रकार के दवाई डाल देना सही नहीं है। पहली तो हमला

0: एला पहचानना जरूरी है कि खेत मा कौन सा कीट हावय और ओखर प्रकोप हा कतका हावय। अगर तना छेदक या पत्ती लपेटक के प्रकोप आर्थिक नुकसान के स्थिति तक पहुंच गए है तो कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित कीटनाशक मन जैसे होते कोलेंट्रा निलिप्रोल या कारटाप हाइड्रोक्लोराइड जैसे सक्रिय तत्व वाले जिन दवाई होते ओखर इस्तेमाल खेत में करे जाते। लेकिन हर कंपनी के दवा के मात्रा अलग अलग हो सकते है। एखर बर पैकेट में लिखे फसल और कीट के अनुसार मात्रा के हमन ला इस्तेमाल करना है। किसान भाई आप मन ला ये चीज बता दी कि ज्यादा दवाई डाले ले ज्यादा फायदा नहीं हुआ, उल्टा फसल माटी पानी और खेत में मौजूद लाभदायक कीट के नुकसान हो सकते है। एखर बर उतके दवाई हमन डारी जतका अनुशंसित करेगा है। छिड़काव करत खानी भी हमन ला कुछ ध्यान दिए वाले बात मचेत करना है। जैसे तेज धूप है घाम है तो कीटनाशक के छिड़काव झन करे। कीटनाशक के छिड़काव के समय बिहन्ना बिहन्ना या संझा के समय होते है। पानी गिरे की संभावना है तो छिड़काव हमन ला रोक देना है। ज्यादा तेज हवा चलत है तबो भी हमन ला छिड़काव करने से बचना चाहिए। एक और खास बात के ऊपर ध्यान देना जरूरी होते है कि उर्वरक के संतुलित मात्रा में उपयोग करें। कई पैत किसान मन ज्यादा यूरिया डाल देते और फसल बहुत ज्यादा कोमल हरियर हो जाते। ऐसा स्थिति में फसल में कुछ कीट होते उमन के संख्या बढ़ जाते। एखर बर यूरिया और दूसर खाद के इस्तेमाल उर्वरक के इस्तेमाल हमन करथन तो माटी और फसल के जरूरत के हिसाब से ही हमन ला संतुलित मात्रा में करना चाहिए। तो किसान भाई हो हम यही कहो कि धान ला कीट से बचाए बर सबले पहली खेत के निगरानी करना जरूरी है। कीट के सही पहचान करें और जरूरत पड़े तभी कीटनाशक के इस्तेमाल करें। अगला भाग में हम बात करबो कि धान में कीट मन ला नियंत्रित करे बर नीम के जैविक उपाय के फेरोमोन ट्रैप और लाभदायक कीट के कौन ढंग से हम उपयोग कर सकते हैं। तब तक राम राम जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात, विषय था धान को कीटों से कैसे बचाएं, जानकारी दे रहे थे अभिनव गौरहा। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान।

वनवासी कोल भीलों के सौभाग्य से ही मानो श्रीराम का चित्रकूट आगमन हुआ है। उनके दर्शन पाकर सभी सनात हो गए हैं। वनवासियों का कहना है, हे नाथ, जहां जहां आपने चरण रखे हैं, वे स्थान अपनी समस्त प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों समेत धन्य हो गए हैं। अपने निवास के लिए भी आपने अत्यंत उपयुक्त स्थान चुना है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप आनंदित रहेंगे। हम लोग सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं तथा अन्य घातक प्राणियों से आपकी रक्षा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। हम आपकी सुख सुविधा के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब से लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम ने वन में निवास किया है, तब से ही ये स्थान मंगलदायक हो गया है। वृक्षों में फूल फल आने लगे हैं, उन पर लताओं ने मंडप तान दिया है। पशु पक्षी जगत नए उत्साह से जीवंत हो गया है। सभी आपसी वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे हैं।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, स्वर था रविंद्र साथी का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम नवविहान। चर्चा का विषय है अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन।

स्वागत है श्रोताओं आपका कार्यक्रम नवविहान में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने श्रोताओं को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में अवगत करवाते हैं, ताकि पात्र व्यक्ति इनका लाभ ले सकें और हम इनके बारे में जागरूक बन सकें। आज हम बात करेंगे शासन द्वारा शुरू किए गए अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के बारे में। श्रोताओं, इस मिशन का उद्देश्य है शहरी नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। देश में शहरीकरण की तेज रफ्तार के कारण शहरों में पीने के पानी, सीवरेज, जल निकासी की व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन और यातायात से जुड़ी कई समस्याएं आ रही हैं। इन्हीं के समाधान के लिए और शहरों को बेहतर बनाने के लिए ही भारत सरकार ने साल 2015 में ये मिशन शुरू किया। इस मिशन के द्वारा शासन ने इन उद्देश्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। घरों तक पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण पानी पहुंचाया जाए, वर्षा जल के पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था हो ताकि जगह जगह पानी का भराव न हो, गंदे पानी की निकासी और सीवेज ट्रीटमेंट की सुविधा को विकसित किया जाए। इसके अलावा शासन सार्वजनिक परिवहन और पदयात्रा और साइकिल से आवागमन के लिए सुविधाओं को बढ़ावा दे रही है। नागरिकों के लिए बेहतर, सुरक्षित और स्वस्थ शहरी वातावरण तैयार करना भी इस मिशन का उद्देश्य है। पेड़ पौधों के कटाव को रोककर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जल चक्र भी सुचारू रूप से चल सके और शहर की सुंदरता में भी वृद्धि हो सके। इस मिशन का दूसरा चरण अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ है। इसका लक्ष्य देश के शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज और जल संरक्षण की सुविधाओं को बेहतर बनाना है। श्रोताओं, इसके लिए घर घर तक नल

से साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सेप्टेज प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है ताकि नदियों और जल स्रोतों में प्रदूषण कम हो। तालाबों और शहर के जलाशयों को पुनर्जीवित करने के प्रयास हो रहे हैं। शहरों को सुंदर बनाया जा रहा है, इनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। श्रोताओं, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन न केवल शहरों के विकास में सहायक है बल्कि ये नागरिकों के जीवन को भी सुविधा संपन्न बना रहा है और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर कर रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अमृत मिशन एक स्वच्छ सुगम और गुणवत्ता युक्त शहरी भारत के निर्माण की दिशा में शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नव विहान, विषय था अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हो रहे हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

आपको अब रूबरू करवाते हैं आज के मुख्य कार्यक्रमों से। अब से कुछ ही देर बाद संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे 6:55 कर और हिंदी में समाचार 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार प्रभात 8 बजे, मॉर्निंग न्यूज सुबह 8:15 पर दिल्ली केंद्र से ही अनुप्रसारित किए जाएंगे। दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर अंग्रेजी में समाचार रात 9 बजे आपको सुनवाए जाएंगे। हिंदी प्रादेशिक समाचार सुबह 9:55 पर और 11:55 पर सुनिएगा आकाशवाणी रायपुर से। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 11 बजे और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5 बजे आप सुन सकेंगे।

कार्यक्रम आज सुबह रोजाना हमारे श्रोता सुनते हैं। सुबह 7:05 पर युवा जगत सुनेगा, शाम 5:35 पर आज की बात का विषय होगा हमारा जीवन और फोटोग्राफी। क्रम युवा पसंद और सवाल जवाब आप सुनेंगे, साथ ही सुन सकेंगे केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विषय में जानकारी, प्रस्तुति होगी नेमी चंद साहू की। कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:30 पर, बेरा के गोठ का विषय होगा पोषण वाटिका कुपोषण से मुक्ति। साथ ही सुनिएगा आकाशवाणी गांव में क्रम के अंतर्गत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के किसानों व कृषि विशेषज्ञ से की गई बातचीत। प्रस्तुति व संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन का होगा और रिकॉर्डिंग एवं संपादन हरीश माड़वा का।

गीत संगीत से जुड़े कार्यक्रमों की फहरिस्त में 7:30 पर सुन सकेंगे आप यादों के झरोखे से। छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का कार्यक्रम अमराई लेकर हाजिर होंगे 8:30 पर। आज आपको कार्यक्रम में सुनवाए जाएंगे आसना ओगरे, विज्ञान निधि ओगरे, प्यारेलाल विश्वकर्मा और संत राम भानु के गाए गीत। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद 10:00 आप सुन सकेंगे। प्रस्तुतकर्ता होंगी अंतरा चक्रवर्ती। चित्रपट संगीत का लीजिएगा आनंद 5:05 पर। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने सुन सकेंगे आप 6:20 पर और इस कार्यक्रम का शेष भाग सुनिएगा 7:00।

कार्यक्रम सुगम संगीत रात्रि 8 बजे आप सुन सकेंगे और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको गैर फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे अभिजीत सावंत के स्वर में। कार्यक्रम रजनीगंधा का लुत्फ उठा सकेंगे हमारे श्रोता रात्रि 8:15 पर। इन्हीं जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ।

0: FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:55 होने को हैं। अब आप संस्कृत में और 7 बजे हिंदी में समाचार सुनेंगे। इनका अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा।

0: तमिलनाडुराज्यस्य द्विदिवसीययात्रायै चेन्नईनगरं प्राप्स्यति। असौ श्वः चेन्नईनगरस्य समीपे कोवलम् इत्यत्र आयोज्यमाने दक्षिणभारतस्य मुख्यमन्त्रिणां सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। सम्मेलने तमिलनाडु, केरल, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी चेत्येतेषां प्रदेशानां मुख्यमन्त्रिणः भागं ग्रहीष्यन्ति। राष्ट्रीय परीक्षणाभिकरणेन स्वस्य परीक्षादलस्य व्यापकं पुनर्निर्माणं कृत्वा 600 पुरातनान् विशेषज्ञान् निष्कास्य तेषां स्थाने नूतनाः विशारदाः संगृहीताः। शिक्षामन्त्रालयेन सामाजिकान्तर्जाले पटले संसूचितं यत् परीक्षापत्राणां सूक्ष्मपरीक्षणं सुदृढं विधातुं एनटीए संस्थया चतुःस्तरीय प्रश्नपत्रपरीक्षणप्रणाली कार्यान्विता भविष्यति। वित्तमन्त्रालयेन संसूचितं यत् क्षेत्रीयग्रामीणबैंकसङ्घैः प्रवर्तमानवित्तवर्षस्य ऋणप्रदानक्षेत्रे तीव्रवृद्धिः अंकिता। मन्त्रालयानुसारं भारतीय रिजर्व बैंकस्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रणाल्याः अन्तर्गतं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकानां प्रदर्शनम् अतीव उत्कृष्टमासीत्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु, पूर्व मध्य प्रदेशे तथा उत्तराखण्ड राज्ये कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना पहली सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, उप जिलाधिकारी, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी की भर्ती के लिए ली गई परीक्षाएं शामिल हैं। वहीं सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्यात, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं। झारखंड सरकार की अधिसूचनाओं में कहा गया है कि अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। निर्वाचन आयोग ने देश की

चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा परिषदों के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किए जाने के बाद जारी की गई है। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम

0: की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किए जाने के बाद जारी की गई है। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दो दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत तब तक के लिए रोकने को कहा है जब तक ईरान किसी समझौते के लिए तैयार न हो जाए। अमेरिकी प्रशासन ने यह फैसला तब लिया है जब होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति और दोनों देशों के बीच जारी तनाव को लेकर अमेरिका और ईरान के द्वारा परस्पर विरोधाभासी बयान जारी किए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जा रहा था। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हो चुके हैं। आपकी खिदमत में पेश करते हैं प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

स्वागत सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आज सुबह में। आज रेडियो तरंगों के माध्यम से आप तक पहुंच रही है आवाज आपकी रेडियो मित्र प्रियंका बलानी की। आवाज जिस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, वैसे ही आज तकनीक ने इतना विकास कर लिया है श्रोताओं की हम अब कोसों दूर बैठे लोगों की सिर्फ आवाज ही नहीं सुन सकते बल्कि उन्हें देख भी सकते हैं। बिल्कुल, वीडियो कॉलिंग के जरिए हम एक दूसरे को देख सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं। जैसे दूर बैठे लोगों के चित्र हमारे मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रकट से हो गए हों। श्रोताओं, आजकल वीडियो कॉलिंग हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा बन चुकी है, लेकिन अगर हम इसके आविष्कार के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात आती है कैमरे से तस्वीरें लेने की। आखिर फोटोज कैसे ली जाती हैं, इनकी शुरुआत कब और कैसे हुई? आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है श्रोताओं। फोटोग्राफी ऐसी तकनीक और कला है जो हमारे जीवन के खूबसूरत पलों को, खास मौकों को, हमारी भावनाओं को यादों के रूप में संजो कर रखती है। आज के इस दिन साल 1839 को फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई डागेयर की फोटोग्राफी प्रक्रिया डागेरोटाइप को आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया था। लेकिन आज फोटोग्राफी से जुड़ी न जाने कितनी नई तकनीकें विकसित हो गई हैं, नए नए तरीके के कैमरे फोटोग्राफी के क्षेत्र में क्रांति सी ले आए हैं। आज लगभग हम सबके हाथ में कैमरा है मोबाइल फोन के रूप में, इससे हम जब चाहें तस्वीरें ले सकते हैं। श्रोताओं, युगों से तस्वीरों का हमारे जीवन में बहुमूल्य योगदान रहा है। तस्वीरों से हमें कई प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानने को मिलता है। देश दुनिया की संस्कृतियों की छवि हमें तस्वीरों में नजर आती है। देश और दुनिया का इतिहास कई चित्रों में कैद है। विश्व भर के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास के बारे में हम जान सकते हैं हर युग हर वक्त से जुड़ी इन तस्वीरों से। श्रोताओं, कई तस्वीरें विकास की गाथा को चित्रित करती हैं तो कई मानवता के लिए किए गए प्रयासों को

सहेज कर रखती हैं। फोटोज हमें सुख दुख, संघर्ष, पीड़ा, आपदाओं और मानवता की झलक दिखाते हैं। इनके द्वारा हम दुनिया के अलग अलग स्थानों और लोगों के संघर्षों और परेशानियों के बारे में भी जान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि लोगों ने कब कब संकट का सामना किया और उस वक्त किन किन के हाथ मदद के लिए आगे आए, किन लोगों ने मानवता के मूल्यों को समझा। श्रोताओं, ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए जिन्होंने विषम परिस्थितियों में दूसरों की मदद की और मानवता का परिचय दिया, आज के दिन को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिवस हमें दया, करुणा और सहयोग की भावना को अपनाने की प्रेरणा देता है। 19 अगस्त 2003 को बगदाद, इराक में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर बम से हमला हुआ था, जिसमें मानवीय सहायता कार्यों से जुड़े कई कार्यकर्ताओं की जान चली गई। उनकी स्मृति में ही संयुक्त राष्ट्र ने आज के दिन को मानवतावादी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। श्रोताओं, मानवता का परिचय किसी विशेष दिन दिया जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हमने मानव रूप में जन्म लिया है तो हर श्वास के साथ हमें मानव होने का परिचय देना होगा। हमारे जीवन काल का हर दिन, हर क्षण मानवतावाद का परिचय दे, तभी हमारा मनुष्य रूप में जन्म लेना सार्थक सिद्ध हो सकेगा।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: आई श्रोताओं, अब सुनते हैं आज की ट्रैफिक अपडेट्स।
2: सादर अभिवादन उमाशंकर पांडे का। प्रस्तुत है ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लगातार हो रही वर्षा के बीच संपूर्ण बिलासपुर जिले में कहीं मंद तो कहीं सामान्य गति से सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहन भाग दौड़ करते हुए जिले में यातायात व्यवस्था बनाए हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है ऐसे समय पूरी सावधानी के साथ और सीमित गति में चलें। साथियों, ये तो आप जान ही रहे हैं, हमारे बिलासपुर शहर में स्वचालित यातायात व्यवस्था संचालित है। इसका सीधा संबंध ITMS अर्थात इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से है। पूरे शहर में लगभग 500 बड़े ही ईमानदार कैमरे 24 घंटे सातों दिन अपलक सड़कों में नजरें गड़ाए हुए हैं। शहर की लगभग सभी सड़कों में इन कैमरों की नजर रहती है, इसलिए आप किसी भी वाहन में हो इन कैमरों की नजर से नहीं बच सकते। यही कारण है कि अब लोगों में यातायात के नियमों के प्रति चेतना आ रही है, किंतु ऐसे लोगों की संख्या कम है। जबकि यातायात के नियमों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदार होना होगा, अन्यथा ऊपर से देख रहा कैमरा किसी को माफ नहीं करता। नियमों या व्यवस्था के प्रति विपरीत जाने वालों जो स्वयं एवं आम लोगों के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, ऐसे लोगों पर की जाने वाली कैमरे की कार्रवाई उचित भी है। मित्रों, विडंबना इस बात की है कि हम सबके हितार्थ इतनी बड़ी योजना से भी कुछ लोग छल करने से नहीं चूक रहे हैं। आमतौर पर असामाजिक तत्व, गुंडे, मवाली या अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर पर काला टेप या चुंबक एक दो अंकों पर चिपकाकर अथवा बहुत पुराना टूटा फूटा नंबर प्लेट या घुमावदार लिखावट के अमानक नंबर प्लेट लगाकर चल रहे हैं, ताकि कैमरा इन वाहनों के नंबर का सही वाचन न कर सके और इसके आड़ में ये असामाजिक तत्व कहीं सिग्नल जम्प तो कहीं ओवर स्पीड या रॉन्ग साइड वाहन चलाना अथवा मोबाइल से बातें करते वाहन चलाते देखे जा रहे हैं, जिसके पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। अतः ऐसी गलती भूल कर न करें और हमेशा यातायात नियमों का पालन करें ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज

0: जी डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्रोताओं, आज हमने बात की विश्व मानवतावाद दिवस के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास रचित ये पंक्तियां मानवतावाद के सिद्धांत को भली भांति परिभाषित करती हैं। इनका अर्थ है कि दूसरों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। ऐसी ही कई रचनाएं हैं कवि तुलसीदास की, जिनमें दूसरों के प्रति दया, प्रेम, सेवा और सदाचार की भावना साफ दिखाई देती है। आज के दिन तिथि के अनुसार जन्मे थे देश के महानतम कवियों की श्रेणी में गिने जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास। श्रोताओं, साहित्य समाज का आईना तो होता ही है, लेकिन देखा जाए तो समाज का सबसे बड़ा शिक्षक, सलाहकार, पथ प्रदर्शक और शुभचिंतक भी साहित्य ही होता है। साहित्य हर युग से जुड़ी सभ्यता, रीति रिवाज, धारणाओं, परंपराओं, समस्याओं और समाधानों का संगम होता है। साहित्य के माध्यम से रचनाकार समाज को प्रगति की ओर ले जाने के प्रयास करते आए हैं। इन्हीं समाज के पथ प्रदर्शकों कवियों में से एक हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत कवि थे। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को अपनी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। श्रोताओं, इनकी रचनाओं में भक्ति भाव के साथ लोक मंगल की भी भावना निहित है। एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाए, कैसे परिवार और समाज में उत्तम व्यवहार किया जाए, ये संदेश देती हैं इनकी रचनाएं। श्री राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से इन्होंने सत्य, न्याय, कर्तव्य पालन और मर्यादा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस बारे में बताया। इसलिए ये कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास केवल भक्त कवि ही नहीं, बल्कि लोक मंगल और मानवीय मूल्यों के समर्थक साहित्यकार भी हैं। श्रोताओं, हर साहित्यकार का वास्तविक उद्देश्य जन कल्याण ही होता है। आज ही के दिन ऐसी ही एक और महान रचनाकार ने भारत भूमि पर जन्म लिया था, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्हें हिंदी के कबीर की उपमा भी दी गई है। इनके साहित्य में भारतीय संस्कृति, इतिहास, परंपरा और मानवतावाद का सुंदर समन्वय मिलता है। कबीर, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, अशोक के फूल और कुटज जैसी लोकप्रिय रचनाएं इनके साहित्यिक कोष में शामिल हैं। श्रोताओं, इनकी रचना शैली की सबसे बड़ी विशेषता मानवतावादी दृष्टिकोण और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रही है। अंततः यही कहा जा सकता है कि चाहे गोस्वामी तुलसीदास हों या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों के साहित्य में ही ज्ञान और मनोरंजन के साथ समाज और मानव कल्याण का संदेश है। साहित्य मनुष्य को अधिक मानवीय बनाने का साधन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस पंक्ति के साथ ही आज की इस चर्चा को हम देते हैं यहीं विराम।

गोस्वामी तुलसीदास रचित इन चौपाइयों के बाद लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 यानी कल स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर गीत शर्मा उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान रोपाई व्यासी में खरपतवार नियंत्रण। इस विषय से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665932106। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 20 अगस्त 2026 यानी कल शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकेंगे। सूचना समाप्त हुई।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है।

0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
2: श्रोताओं, आपसे होगी फिर मुलाकात इसी कार्यक्रम के साथ किसी और दिन। फिलहाल आज सुबह का आज का ये सफर यहीं समाप्त हुआ।

आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। लीजिए अब आनंद उठाइए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम यादों के झरोखे से का।

स्वागत सभी श्रोताओं का कार्यक्रम यादों के झरोखे से में। आज कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे हम कुछ गरजते कुछ बरसते गीत, कुछ रिमझिम बारिश की फुहारों से सजे तो कुछ मधुर पवन के शोर से दिल को प्रसन्न करने वाले गीत। आइए श्रोताओं, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं दो बीघा जमीन फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मन्ना डे, लता मंगेशकर और साथियों ने। शब्दकार शैलेंद्र हैं, संगीतकार हैं सलिल चौधरी।

दो बीघा जमीन फिल्म का गीत आपने सुना मन्ना डे, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। अगला गीत गीता दत्त और साथियों की आवाजों में है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है, ओपी नैयर का संगीत और फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

प्रेम पत्र, इस फिल्म का गीत आपने सुना सलिल चौधरी की तर्ज पर लता मंगेशकर और तलत महमूद के युगल स्वर में, रचना गुलजार की थी। आनंद उठा रहे हैं हमारे श्रोता इस वक्त बारिश से जुड़े भीगे भीगे गीतों का, कार्यक्रम है यादों के झरोखे से। अगला गीत आइए सुनते हैं परख फिल्म से, शैलेंद्र का लिखा गीत है, संगीत निर्देशक हैं सलिल चौधरी, स्वर है लता मंगेशकर का।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: इस संदेश से पहले शैलेंद्र का लिखा SD बर्मन द्वारा संगीतबद्ध गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त के युगल स्वर में। फिल्म का नाम था काला बाजार। आइए अब मिलकर आनंद उठाते हैं मिलन फिल्म के इस गीत का, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। आनंद बख्शी की शब्द रचना है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: शोर
1: पवन कर शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर शोर
1: पवन कर शोर।
0: हाँ

कार्यक्रम यादों के झरोखे से का अंतिम गीत जो बरस रहा है, गरज रहा है और सावन को संग ला रहा है, आइए आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में आनंद बख्शी की रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

0: श्रोताओं, सावन आया, हमें भिगाया और अब जाने को भी है, और हम भी सावन की तरह ही अनुमति ले रहे हैं इस कार्यक्रम से। आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया गीत, फिल्म का नाम था आया सावन झूम के। इसी के साथ कार्यक्रम यादों के झरोखे से यही संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज अब दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना पहली सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
6: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में

0: के सुझाव देगी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जाँच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार

0: एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुंचा। जांच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जांच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
2: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
1: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी ओडिशा में बाढ़

0: स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और महभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता, भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा। बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू, ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल

का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। सुबह के 8:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं आसना ओगरे, विज्ञान निधि ओगरे, प्यारेलाल विश्वकर्मा, संतराम भानु और साथी। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं आसना ओगरे और विज्ञान निधि ओगरे के गाए इस छत्तीसगढ़ी लोकगीत के साथ।

आसना ओगरे और विज्ञान निधि ओगरे के स्वर में आप सुन रहे थे ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत। कार्यक्रम अमराई में आइए अब सुनते हैं आसना ओगरे और साथियों का गाया ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

विज्ञान निधि ओगरी और व्यास नारायण के स्वर में आपने ये लोकगीत सुना। अब कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 यानी कल स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर गीत शर्मा उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान रोपाई, व्यासी में खरपतवार नियंत्रण। इस विषय से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 077752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 20 अगस्त 2026 यानी कल शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त श्रोता आनंद उठा रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का। कार्यक्रम है अमराई। आइए अब सुनते हैं प्यारे लाल विश्वकर्मा का गाया ये गीत।

आपने सुना प्यारे लाल विश्वकर्मा का गाया ये गीत। आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं संतराम भानु की आवाज में ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

संतराम भानु के गाए इस गीत के साथ ही छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का कार्यक्रम अमराई यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने को हैं। अब रिले किए जाएंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

जावेद अली की आवाज में आप सुन रहे थे पुष्पा द राइज पार्ट वन। फिल्म से ये गीत राखी बलम ने इसे लिखा, देवी श्री प्रसाद ने संगीत से सजाया। और आज है विश्व फोटोग्राफी दिवस, जो कि हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस में

विश्व फोटोग्राफी दिवस जो कि हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस में डेग्यूराइट फोटोग्राफी प्रक्रिया के पेटेंट की घोषणा की गई थी और फोटोग्राफी की इस तकनीक को लुई डिग्रे और जोसेफ नाइस फोर निप्स ने इजाद किया था, इसीलिए इसे डेग्यूराइट फोटोग्राफी कहते हैं। और तो जब साल 2010 में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत की गई तो इस तारीख को इसीलिए चुना गया। और फोटोग्राफी तो बहुत ही अच्छी चीजें मानी जाती है, क्योंकि अगर आप किसी याद को कैद करना चाहते हैं, कहीं आप घूमने जाते हैं या किसी खास उत्सव में आप शामिल होते हैं तो फोटोग्राफ आप अपने पास रखते हैं। बचपन की कितनी तस्वीरें हमारे पास है और हमारे जो पूर्वज हैं उनकी, उन्हें भी हम अपनी उनकी तस्वीरों में देख लेते हैं। लेकिन इन दिनों तस्वीर की तकनीक बदलती चली जा रही है और मोबाइल अब हमारे हाथ में आ चुका है और हम केवल यादों को कैद करने का माध्यम ही तस्वीर को नहीं बनाते बल्कि लगातार ढेर सारी तस्वीरें खींचते हैं जिन्हें देखने के लिए भी कई बार हमारे पास वक्त नहीं होता। क्योंकि पहले जिस तरह से चुनिंदा तस्वीरें खींची जाती थी और बैठकर एक साथ एल्बम में वो तस्वीरें देखी जाती थी और जब भी कभी सब हम सब मिलते थे, चाहे वो गर्मियों की छुट्टियां हों चाहे कोई भी मौसम हो, और जब भी कुछ ज्यादा लोग हम मिलके बैठते तो बस एल्बम निकाला जाता और याद की जाती वो सारी बातें कि उस तस्वीर को खींचने से ठीक पहले क्या हुआ था, क्यों किसी ने ऐसा अजीब सा मुंह बनाया हुआ है, ये क्यों कोई हंस रहा है, किस तरह के कपड़े किसी ने पहने हैं, वो कपड़े कहाँ से लाए गए थे, इस तरह की ढेरों बातें ढेरों यादें ताजा होती हैं। लेकिन इन दिनों जब हजारों फोटो हम खींचते हैं लगातार, बल्कि एक ही दिन में हम पता नहीं सैकड़ों फोटो तो हम खींच ही लेते हैं, तो उन्हें देखने का धैर्य भी अब खोता जा रहा है। आपका क्या मानना है इस बारे में हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं गीत।

0: सनम तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नीति मोहन, अकाशा सिंह और दर्शन रावल की आवाजें, समीर अंजान के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय कहा हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और बात हो रही है विश्व फोटोग्राफी दिवस की। तो ये बताइए कि क्या आप आज के इस दिन को मनाने के लिए सेल्फी लेने वाले हैं या किसी की फोटो खींचने वाले हैं या शेयर करने वाले हैं अपनी कोई बेहतरीन तस्वीर या अपनी खींची हुई कोई खूबसूरत तस्वीर? ये आप सोचिए, तब तक ये गीत भी सुन लीजिए।
4: जट लटक मटक लचक मचक लचक मचक चाल चलत जा। ए छोरा गांडा।

0: सत्यमेव जयते टू का ये गीत आपने सुना जारा एस खान और जैस मानिक की आवाजें, जैस मानिक और तनिष्क बागची के बोल, उन्हीं का संगीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रूमी और तनिष्क बागची की आवाजें, तनिष्क बागची का संगीत, नीरज राजावत के बोल। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक, और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। सुनिधि चौहान और शाश्वत सिंह की आवाजें, अमिता भट्टाचार्य के बोल, फिल्म तू झूठी मैं मक्कार।

हर टेंशन को झटक कर झूमते नाचते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। और हाँ, दिन भर में जहां भी रहिए, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा। कार्यक्रम चित्रलोक में आज के लिए बस इतना ही।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
3: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
3: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
4: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है जाने माने संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी पर।

खय्याम। फिल्म उद्योग में ये नाम एक बेमिसाल संगीतकार का नाम है, एक ऐसा संगीतकार जिसकी फिल्मोग्राफी में एक भी गाना ऐसा नहीं है जो उनके स्टैंडर्ड से कम हो। एक ऐसा संगीतकार जिसने हमेशा हर गाने में अपना 100% दिया।

18 फरवरी 1927 को नवा शहर पंजाब में मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी का जन्म हुआ था। बचपन से ही संगीत का शौक था।

और इस शौक के चलते ही एक ख्वाब आंखों में पलने लगा था। ये ख्वाब था कुंदनलाल सहगल की तरह गाना और फिल्मों में एक्टिंग करना। जी हाँ, खयाम कुंदनलाल सहगल की तरह एक्टर और सिंगर बनना चाहते थे। खयाम के पिता को साहित्य, कविता और संगीत से लगाव था। वो अपने बच्चों को लेकर जलंधर जाते और उन्हें फिल्में भी दिखाया करते थे। यहां तक कि उन्होंने अपने बच्चों के भीतर देशभक्ति का जज्बा भी भरा था। जब नवांशहर से जलंधर ट्रेन जाती तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता खटकर कलां। यहां ट्रेन रुकती तो पिता अपने बच्चों से कहते, इस गांव को सलाम करो क्योंकि ये शहीद भगत सिंह का पैतृक गांव है। और बच्चे ऐसा ही करते। खयाम के भीतर देशभक्ति का जज्बा इस बचपन से आया था। इसका क्या असर हुआ ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं। फिलहाल एक दिलचस्प किस्सा। 11 बरस की उम्र थी खयाम की। संगीत सीखने का जुनून बहुत ज्यादा था। वो किसी को भी बताए बिना जलंधर से बिना टिकट ट्रेन में दिल्ली भाग आए। दिल्ली में उनके चाचा रहा करते थे। चाचा के पास पहुंचे और उन्हें जब सारी बात बताई तो वो बहुत गुस्सा हो गए। वहां उनकी दादी मौजूद थीं, जिन्होंने चाचा को शांत करवाया। संगीत के इस शौक को देखते हुए चाचा ने खयाम को हुस्न लाल और भगत राम की निगरानी में रखवा दिया, जहां खयाम ने 5 बरस संगीत सीखा। इस तरह से हुस्न लाल और भगत राम खयाम के पहले संगीत गुरु हुए। 17 बरस की उम्र होते होते खयाम एक बार फिर घर से भाग निकले। ये घर से दूसरी बार भागना था।

इस बार वो दिल्ली नहीं आए बल्कि सीधे मुंबई आ गए। थोड़े दिन संघर्ष किया और उन्हें ये समझ में आया कि अभी उनकी उम्र बहुत कम है और ये सही वक्त नहीं है मुंबई में स्ट्रगल करने का, इसलिए खयाम वापस लौट गए। संगीत के इस जुनून को देखते हुए किसी दोस्त ने उनकी मुलाकात चिश्ती साहब से करवाई। चिश्ती साहब यानी गुलाम अहमद चिश्ती, जो एक संगीतकार थे और चिश्ती बाबा के नाम से मशहूर थे। खयाम लाहौर में उनसे मिलने पहुंचे, उनसे कुछ गाने को कहा गया। खयाम ने जो गाना सुनवाया उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर चिश्ती बाबा ने उन्हें अपना सहायक बना लिया एक शर्त पर। शर्त ये थी कि रहने और खाने की सहूलियत मिल जाएगी पर पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि पैसा मिलता नहीं था इसलिए पैसे की किल्लत हुई तो अपने भाई के पास जा पहुंचे। भाई का एक फलता फूलता ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। जब इस स्थिति के बारे में खयाम ने भाई को बताया तो बड़े भाई ने एक जोरदार तमाचा खयाम को रसीद कर दिया। उस रात खयाम सो न पाए, करवटें बदलते रहे और अपनी जिंदगी के बारे में सोचते रहे। आखिरकार उन्होंने एक फैसला किया। सन 1943 में खयाम फौज में शामिल हो गए। यहां एक गाना आपको सुनवाते हैं। जब भारत जंग से मुब्तिला था, जब हौसला पस्त हो रहा था, तब जानिसार अख्तर ने देश का हौसला बढ़ाने के लिए एक गीत लिखा था और इसे खयाम ने स्वरबद्ध किया था।

फौज में रहते हुए भी ख्वाब में उन्हें कुंदनलाल सहगल दिखते, अपने आराध्य, अपने हीरो। मुंबई उनको पुकारता था। आखिरकार 3 बरस फौज की नौकरी करने के बाद खयाम ने फौज से इस्तीफा दे दिया, वापस चिश्ती बाबा के पास चले गए। यहाँ जाने माने निर्देशक बीआर चोपड़ा ने चिश्ती बाबा से जोर दिया कि आपको खयाम को पैसे देने चाहिए। इस तरह से खयाम की तनख्वाह तय हो गई 125 रुपया माहवार। पहली बार खयाम के जहन में ये बात आई कि संगीत से पैसा भी मिल सकता है और इज्जत भी मिल सकती है। सन 1947 में खयाम चिश्ती बाबा के सहायक रहमान से मिलने के लिए लाहौर से मुंबई आए। यहाँ उनकी मुलाकात अपने पुराने गुरुओं से हुई, हुस्नलाल भगतराम, और उन्होंने पहली बार खयाम से एक गाना गवाया और इस तरह से खयाम

गायक बन गए। यहीं रहमान के साथ मिलकर उन्होंने जोड़ी बनाई और ये जोड़ी शर्मा जी वर्मा जी के नाम से संगीत देती रही। जब अगस्त में भारत आजाद हुआ तो रहमान पाकिस्तान चले गए। शर्मा जी वर्मा जी की जोड़ी टूट गई। आखिरकार खय्याम शर्मा जी के नाम से संगीत देते रहे। इसी दौर का गीत है सन 1948 में आया बीवी फिल्म का, मोहम्मद रफी का गाया ये गीत।

इस दौर में खय्याम ने प्यार की बातें, बीवी और पर्दा जैसी फिल्मों में संगीत दिया। समय बीतता चला जा रहा था। आखिरकार सन 1952 आया जब जिया सरहदी ने उन्हें फिल्म फुटपाथ के लिए साइन किया। मजरूह सुल्तानपुरी, अली सरदार जाफरी और चंदूलाल शाह जैसे लोगों ने जोर दिया कि इस फिल्म का संगीत उन्हें शर्मा जी के नाम से नहीं देना चाहिए बल्कि अपना असली नाम रखना चाहिए, मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी। अब इतना लंबा चौड़ा नाम तो फिल्मों में चलता नहीं, इसलिए अपने नाम में से खय्याम ने खय्याम शब्द को चुना और आगे के करियर में उन्होंने खय्याम के नाम से ही संगीत दिया। यानी फुटपाथ वो पहली फिल्म थी जिसमें बतौर संगीतकार उनका नाम आया खय्याम। इस फिल्म में दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। अली सरदार जाफरी और मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत खूब कामयाब हुआ था।

ये कामयाबी का पहला स्वाद था। खय्याम कामयाब होने के बावजूद ज्यादा फिल्में नहीं हासिल कर पाए, पर यूं था कि मुंबई में उनके पैर जम गए थे। सन 1958 में राज कपूर ने फिल्म फिर सुबह होगी के लिए शंकर जयकिशन की बजाय खय्याम का चुनाव करवाया। साहिर लुधियानवी ने इस फिल्म के गाने लिखे। दोस्तोवस्की के उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर बनी इस फिल्म का संगीत खूब चला और खय्याम की खूब ख्याति हुई।

सन 1964 में फिल्म शगुन आई। साहिर लुधियानवी के गीत इस फिल्म में खयाम साहब की शरीक हयात जगजीत कौर ने कुछ गाने गाए।

दिक्कत ये थी कि खय्याम साहब के गाने तो बड़े मशहूर हुए, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं और फिल्म जगत में ये बात चल निकली कि खय्याम अनलकी हैं। जिन फिल्मों में वो संगीत देते हैं वो अमूमन चलती नहीं हैं। बहुत बरस तक खय्याम साहब के पास काम नहीं था, जबकि उनके काम की बहुत तारीफ होती रही थी। सन 1976, यश चोपड़ा ने जमाने भर के विरोध के बावजूद फिल्म कभी कभी के लिए खय्याम को साइन किया। कभी कभी खय्याम के करियर का एक माइलस्टोन बन गई।

कभी कभी सुपरहिट हुई और इसके बाद आई खयाम के करियर की ज्यादातर फिल्में। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों के गाने सुने जाएं। फिल्म त्रिशूल, खयाम की शैली से बिल्कुल अलग गाना।

सागर सरहदी की फिल्म बाजार में खयाम ने जैसे अपनी रूह को निचोड़ दिया था।

मुजफ्फर अली ने अपनी फिल्म बनाई उमराव जान और इसके लिए खय्याम को चुना गया। खय्याम ने इस फिल्म में अपने पूरे हुनर से काम लिया।

फिल्म उमराव जान के लिए खय्याम को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। सन 1981 में जब यश चोपड़ा ने फिल्म सिलसिला का संगीत देने के लिए खय्याम को आमंत्रित किया तो वो इस फिल्म की कहानी से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी। ये खय्याम के उसूल थे जिनसे वो कभी समझौता नहीं करते थे। सन 1983 कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान, इस फिल्म के लिए हबशी की आवाज मिल नहीं रही थी। उन्होंने बहुत सारे गायकों के ऑडिशन लिए और आखिरकार इस ऑडिशन में कामयाब हुए विविध भारती के हमारे पूर्व सहयोगी कब्बन मिर्जा, और आया ये कालजयी गाना।

खयाम की फिल्मोग्राफी अपनी क्वांटिटी में भले कम हो लेकिन क्वालिटी में खयाम का कोई जवाब नहीं। उनकी फिल्मोग्राफी में एक भी फिल्म और एक भी गाना ऐसा नहीं मिलता जिसमें कोई समझौता हो। वो हमेशा अपना 100% अपनी हर फिल्म और हर गाने में उतारते रहे। सन 1980 में आई चंबल की कसम।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त 9:55 हो रहे हैं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, अब आप सुनेंगे।

0: प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटा दिया है। मुख्यमंत्री ने गांव से लेकर राज्य स्तर तक मजबूत युवा नेटवर्क विकसित करने पर दिया जोर। और आज से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में आ सकती है कमी, हालांकि उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर आज भी भारी बारिश की दी गई है चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटा दिया है और नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और रचनात्मकता विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत हैं। वे कल रायपुर में माय भारत की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को माय भारत से जोड़ने और स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, कौशल विकास तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम से राज्य स्तर तक मजबूत युवा नेटवर्क विकसित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बस्तर के युवाओं को भी माई भारत से जोड़कर उन्हें प्रतिभा और नेतृत्व के नए अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में 6,60,000 से अधिक युवा माई भारत से जुड़ चुके हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कल केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस के लिए द्वितीय चरण की भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में सीबीएसई ने बताया कि उम्मीदवार examinationservices.nic.in के माध्यम से अपने आवेदन पोर्टल पर लॉगिन करके अपना परिणाम देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ श्रोता मंच की ओर से भिलाई में आज से 2 दिवसीय अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सभागार में आयोजित उद्घाटन समारोह में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ के संयोजक अशोक बजाज करेंगे। वहीं कल 20 अगस्त को भिलाई के सिविक सेंटर स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में देशभर से 500 से ज्यादा रेडियो श्रोता शामिल होंगे। सुकमा जिले के कोंटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 308 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 1,54,00,000 रुपए से अधिक है। ये गांजा नमक की बोरियों के नीचे छिपा कर लाया जा रहा था। दोनों आरोपी राजस्थान निवासी बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। सूरजपुर जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। सड़कों के बहने और कई कच्चे मकानों के गिरने की खबर है। कांतिपुर गांव में सड़क पर बनी पाइप पुलिया तेज बहाव में बह गई है। वहीं रायगढ़ जिले में केलो नदी का जलस्तर बढ़ने पर सोमवार रात को केलो डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। पुणे में 16 से 21 अगस्त तक आयोजित की जा रही 5वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के 14 वर्षीय युवा खिलाड़ी एडम अमीन रिची ने कांस्य पदक जीता है। एडम ने कैडेट वर्ग के 61 किलोग्राम वर्ग में ये मेडल हासिल किया। उच्च शिक्षा संचालनालय ने प्रदेश के सभी शासकीय कॉलेजों में रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटा दिया है। मुख्यमंत्री ने गांव से लेकर राज्य स्तर तक मजबूत युवा नेटवर्क विकसित करने पर दिया जोर। और आज से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में आ सकती है कमी, हालांकि उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर आज भी भारी बारिश की दी गई है चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। FM बैंड 103.2 MHz।

0: बात्स पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर से। 10 बजे हैं, लीजिए अब आनंद उठाइए फरमाइशी फिल्मी गीतों के फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद का। प्रस्तुत करता है अंतरा चक्रवर्ती।
1: हेलो आपकी पसंद।
2: दोस्तों, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। इस खूबसूरत शेर को लिखा है महशर आफरीदी साहब ने, और इसी मोहब्बत के साथ हम भी यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश की एकता और अखंडता इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में विविधता में भी एकता के दर्शन होते हैं। श्रोताओं, सावन के सुहाने मौसम में हरेली पर्व के साथ ही त्योहारों की झड़ियां भी शुरू हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में हम तमाम अलग अलग तरह के त्योहार मनाने वाले हैं, तो चलिए दिलों में खूब सारा उमंग और तरंग भरकर हम चले आए हैं उसी कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है हेलो आपकी पसंद। तो हेलो आपकी पसंद के एक नए अंक के साथ स्वीकार कीजिए आपकी अपनी अंतरा का अनुरागी नमस्कार। और चलिए इस वक्त जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता के इस पहले कॉल के साथ। हेलो,
3: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासा कालवी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
2: जी इंद्रभान जी नमस्कार।
3: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, दूसरी प्लेट में हूँ मैडम। यहाँ खूब पानी आ रहा है और आपका कार्यक्रम में छाता ओढ़ के बात कर रहा हूँ मैडम। पानी तो एकदम जबरदस्त गिर रहा है।
2: अरे वाह, मैं देखिए ये मौसम भी है बारिश का और अभी तो फसलों के लिए जरूरी भी है थोड़ा पानी। बहुत सारे त्योहार हमने मनाए अभी
3: जी,
2: और आने वाले दिनों में भी बहुत सारे त्योहार मनाने वाले हैं
3: जी।
2: राखी है, उसके बाद जन्माष्टमी है, विश्वकर्मा पूजा है,
3: पूजा है, गणेश पूजा है
2: जी। हरेली से शुरू होती है चीजें,
3: लाइन लगी है।
2: अच्छा भी लगता है ना
3: जी,
2: जीवन में आनंद आ जाता है। कौन सा गीत सुनेंगे बताइए?
3: आज मैं सुनूंगा मैडम, फिल्म का नाम है पानी तो गिर रहा है, तो आज पानी से ही संबंधित गीत सुनूंगा। फिल्म का नाम है बरसात और पुराना गाना है ना, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तोरा इंतजार है, गायिका लता मंगेशकर। ये गीत है मैडम।
2: आपके पसंद के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आप हमसे जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका।
3: मेरे को लगता पहला काल मेरा ही लगा है, जरूर सुना दीजिएगा मैडम। धन्यवाद। पानी भी गिरा, छाता ओढ़ के बात भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं पानी से अपना मोबाइल को भी बचा रहा हूँ।
2: शुक्रिया
3: जी मैडम।

0: हेलो मैम।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
0: नमस्कार मैम, मेरा नाम छोटू चक्रधारी है, करगी रोड कोटा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ।
1: छोटू जी, बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम।

0: हेलो मैम।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
0: नमस्कार मैम, मेरा नाम छोटू चक्रधारी है, करगी रोड कोटा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ।
1: छोटू जी, बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
0: धन्यवाद मैम।
1: छोटू जी, आपसे पहली दफे बात हो रही है हमारी?
0: यस मैम, पहली बार लगा इस कार्यक्रम में।
1: अच्छा, क्या करते हैं छोटू जी आप?
0: अपना छोटा सा कार्य है सिलाई का, इसी में लगे रहते हैं और रेडियो कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
1: आकाशवाणी बिलासपुर से प्रसारित कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
0: सभी कार्यक्रम तो नहीं सुन पाते मैम, लेकिन हाँ कुछ कार्यक्रम है इसको सुन लेते हैं, जैसे समाचार हो गया और ये फोन कार्यक्रम ही वाला और कार्यक्रम उसको सुन लेते हैं, बाकी तो सभी कार्यक्रम सुन पाना ऐसा मुमकिन नहीं होता है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप अपना काम कर रहे हैं और हमें फोन भी लगाया है आपने। कौन सा गीत सुनेंगे बताइए?
0: कच्चे धागे का टाइटल सॉन्ग सुना दे।
1: ठीक है, हम आपके पसंद के गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, आप हमसे जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका।
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
1: नमस्कार मैम, अतीक खान बोल रहे।
0: कहाँ से बोल रहे हैं अतीक भाई?
1: मैं हम सागर से बोल रहे हैं, सागर।
0: अच्छा, तो सागर के बारे में बताइए, वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मैम मौसम कल पानी गया था, मैम आज मौसम साफ है। हालांकि पानी, हालांकि मैम पानी कमी गिर रहा है, इस बार बारिश कम हो रही है।
0: तब तो फसलें प्रभावित होंगी।
1: जी जी बिल्कुल मैम,
0: फसलों के लिए तो अभी पानी की बहुत आवश्यकता है।
1: जी जी।
0: अच्छा अतीक भाई, आप क्या करते हैं?
1: मैम हम गाड़ी चलाते हैं, मेरे पास गाड़ी है, लोडिंग गाड़ी। हाँ मैम, वो चलाते गाड़ी चलाते।
0: अरे वाह, गाड़ी चलाते चलाते आप रेडियो भी सुनते हैं और मौसम का और सफर का आनंद भी लेते हैं।
1: जी बिल्कुल मैम।
0: बढ़िया, नज़ारे भी इन दिनों खूबसूरत हैं प्रकृति के, है ना? चलिए, आज कौन सा गीत सुनेंगे बताइए।
1: मैम हमें आज गाना सुनना है, बाजीगर मूवी का सुनना है। गाने के बोल मैम यही रहेंगे, बाजीगर में बात।
0: ठीक है, आपके पसंद के गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमसे जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं मेरे भाई?
1: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: प्रेम भाई बहुत स्वागत है आपका।
1: जी थैंक यू, कैसे हैं आप?
0: एकदम बढ़िया हूँ, इस वक्त अपने श्रोताओं से बात कर पा रही हूँ तो मन और अच्छा महसूस कर रहा है।
1: जी मैं बताना चाहूँगा, मैं भी आप ही की तरह बहुत खुश हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मेरी बात हो रही है। जी बिल्कुल।
0: हाँ, एक अदृश्य दुनिया और जाने पहचाने से हमारे भाई बंधु जब तरंगों के माध्यम से जुड़ते हैं तो वाकई बहुत खुशी होती है।
1: जी जैसे ही हम किसी कार्यक्रम को सुनते हैं या मोबाइल ऐप पर आपकी आवाज सुनते हैं, सीधा समझ जाते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हमसे बात कर रहे हैं या हमारे लिए कार्यक्रम पेश कर रहे हैं।
0: जी प्रेम भाई, वाकई हम भी बहुत शिद्दत से, मेहनत से और मोहब्बत से आप सभी सुनने वालों के लिए कार्यक्रम बनाते हैं और पेश करते हैं।
1: इसीलिए तो आकाशवाणी का परिवार दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और मोबाइल ऐप पर आने की वजह से यूँ समझिए कि हर राज्य के कार्यक्रम हमें सुनने को मिलते हैं और पूरे भारतवर्ष का आकाशवाणी केंद्र यूँ समझिए कि बहुजन हिताय का नारा अब सफल होने लगा है।
0: बिल्कुल, वाकई हमारा परिवार काफी बढ़ गया है ऐप के आने से। बहरहाल ये बताइए कि उज्जैन का मौसम कैसा है?
1: जी मौसम काफी अच्छा है, यहाँ अभी सुबह से अच्छी बारिश हुई आधे घंटे से। और आपको बताऊँ, महाकालेश्वर बाबा के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से कांवड़ यात्री आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और बाबा को अपने अपने यहाँ का लाके जल चढ़ा रहे हैं।
0: सही बात है, सावन का महीना है, महाकाल की धरती से आपने फोन लगाया है, हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपसे बात

0: पा रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, पूरा मतलब आपको बताऊँ, महाकाल लोक से लगाकर महाकाल मंदिर से 10-10 किलोमीटर दूर तक मतलब महाकाल के जयकारे लग रहे हैं।
0: क्या बात है, वहाँ की शोभा तो भाई फिर अनोखी होगी इस वक्त, है ना?
1: जी बिल्कुल अनोखी है, और हम तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमें स्वर्ग कहीं है तो महाकाल मंदिर में है, महाकाल लोक में है, या महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के जितना भी एरिया है, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे लिए स्वर्ग यही है।
0: देखिए भारतवर्ष आस्था, परंपरा, प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का देश है ना, तो मौसम चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम हर त्योहार को एक साथ मनाते हैं और यही चाहते हैं कि देश में एका रहे, हम सब एक होकर देश के प्रति अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और इसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर भी रहें, है ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी, जी कौन सा गीत सुनेंगे इस वक्त बताइए?
1: जी फिल्म का नाम तो मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन गाने के बोले जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया।
0: आपकी कसम फिल्म का गीत है और हम इस गीत को आपके लिए आप तक पहुंचा रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: धन्यवाद, आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
0: शुक्रिया आपका भी।
1: जी।

0: हेलो
1: हेलो, आपकी पसंद।
0: हेलो, आपकी पसंद में आपका फोन लग गया है। कौन बोल रहे हैं मेरे भाई?
1: हाँ दीदी, मैं ग्राम मुंडा टोला विजला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम बोल रहा हूँ।
0: स्वागत मेरे भाई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी।
0: जी बताइए, बालोद के बारे में बताइए, क्या कुछ नया चल रहा है इस वक्त जीवन में, इसके बारे में भी बताइए।
1: और बालोद जिले में तो मौसम खुशनुमा है और झमाझम बारिश हो रही है और वही खेती बाड़ी का काम चल रहा है दीदी, जोर शोर से बढ़िया।
0: अच्छा, आपके पास
1: जी
0: खेत हैं?
1: जी
0: क्या क्या लगाए हैं इस वक्त?
1: वही धान का फसल लेते हैं दीदी जी, मुख्य रूप से। तो
0: और सब्जी वगैरह की खेती नहीं होती है?
1: नहीं नहीं सब्जी वगैरह की नहीं करते दीदी।
0: अच्छा, धान के समय धान, गेहूं के समय गेहूं, है ना?
1: जी।
0: तो ये जब धान की जो फसल है, जब पूरी तरह तैयार हो जाएगी, फिर मंडी तक आपको जाना पड़ेगा?
1: हाँ हाँ दीदी, मंडी जाना पड़ता है।
0: अच्छा, और धान कटाई के बाद जो उसका जो एक पूरा प्रोसेस होता है, सफाई का और पूरी दानों को अलग करने का, चावल के दानों को अलग करने का, पूरी प्रक्रिया आपके गांव में ही संपन्न होती है?
1: हाँ दीदी, क्या मशीन लाते हैं तो मशीन में कटवाते हैं तो हो जाती है पूरी।
0: अच्छा अच्छा, वही जानना चाह रहे थे हम। चलिए, अच्छी बात है। कृषक भाई बंधु बारिश का आनंद लें, फसलों को ज्यादा से ज्यादा पानी मिले, क्योंकि धान के फसल की खासियत है कि भाई पानी की अधिकता होगी तभी वो लहलहा कर अपना पूरा स्वरूप प्राप्त करेंगे। हमारी तो दुआ है सब अच्छा हो, मुनाफा कमाए हमारे भाई बंधु। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: क्या है दीदी, अब सावन का महीना अंतिम पड़ाव पर है तो मिलन फिल्म है क्या मुकेश जी की आवाज में, सावन का महीना पवन करे शोर।
0: जी
1: जी जी,
0: बिल्कुल, आपके पसंद के गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप हमसे जुड़े, बहुत सारा शुक्रिया।
1: आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी।

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार,
1: मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था मैडम, उमरिया मध्य प्रदेश।
0: उमरिया हमारा भी जाना हुआ है, बहुत अच्छी जगह है, प्राकृतिक परिदृश्यों से परिपूर्ण वो एक ऐसा शहर है जो हमेशा आकर्षित करता है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बताइए संतोष भाई, क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं वार्ताकार हूँ आकाशवाणी स्टूडियो शेड्यूल पर, जो कि एफएम बैंड 102 मेगाहर्ट्ज़ पर उपलब्ध होता है, और अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में जाकर वार्ता रख पाता हूँ मैडम।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है कि आज शेड्यूल के किसी वार्ताकार से हमारी बातचीत हो रही है।
1: सुनहरे पन्नों की दास्तान हमेशा याद दिलाती है, सावन का यह मौसम एक रंगीन नजर आती है, एहसासों की बूंदे लगती है यूं ही झड़ने, जब पुष्पों से खुशबू आती है, एक सहजता और सरलता का प्रभाव लाता है आकाशवाणी बिलासपुर अपनी चहकती हुई आवाजों के साथ। आकाशवाणी बिलासपुर और आप जैसी वरिष्ठ उद्घोषिका कार्यक्रम इस फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से हर किसी के दिल को गुदगुदा देती हैं।
0: क्या बात है, आज तो मतलब पूरा दिन ही बन गया। हमारे श्रोता भाई बंधु

0: करते हैं, उनसे हमेशा जुड़ने की और जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। और हमारे छोटे छोटे भाई बहन जब हमारे लिए इतना प्रेम तरंगों के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं ना, संतोष भाई, तो वाकई कह रही हूँ, आंखें गीली हो जाती हैं, मन हरा हो जाता है और अंदर आत्मा से सिर्फ दुआएं निकलती हैं कि ये तरंगों का साथ, ये रेडियो का सफर बिल्कुल अनवरत यूं ही चलता रहे, हम रहे ना रहे, लेकिन हमारी आकाशवाणी हमेशा जीवित रहे, तरंगित रहे, है ना?
1: जी बिल्कुल मैम, वाणी की ही मिठास होती है। अब दूर बैठा कोई व्यक्ति आपको सुन रहा है, खास करके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, रेडियो का ज्यादातर सहारा लेते हैं। समाचार की बुलेटिन एक ऐसी सुर्खी होती है जो सीधे सीधे हमारे दिल को छू जाती है। समाचार के बुलेटिन होता है तो उसमें पता चलता है कि समाज में क्या अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है और सुझाव भी जानने को मिलता है, 15 अगस्त का विवरण भी सुनने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मैडम।
0: जी जी, ये बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे?
1: जी मैम, मुझे आप सुनवाइएगा, मूवी का नाम है पाकीज़ा।

0: तम है आशिकाना।
1: बहुत बढ़िया, अपने भीतर के इस उमंग को, तरंग को, उत्साह को आप जीवन पर्यंत यूं ही जिंदा रखिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: बिल्कुल मैडम, मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और आकाशवाणी बिलासपुर से ईमेल वेस्ट जो प्रोग्राम आते हैं वो बहुत ही लाजवाब होते हैं और आपकी वाणियाँ बहुत ही मिठास होती है। पूरा परिवार इस कार्यक्रम का आनंद उठाता है।
1: जी बहुत शुक्रिया आपके पसंद के गीत, लीजिए सुनिए।

0: जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
1: नमस्कार मैम, मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक बात कर रहा।
0: जी अशोक भाई, आपके पीछे ट्रांजिस्टर चल रहा है।
1: हाँ बंद कर दिया। कैसे हैं मैम आप?
0: आवाजें बहुत तेज आ रही हैं। मैं अच्छी हूँ।
1: मौसम कैसा है यहाँ भी? मौसम सुहावना है, बारिश हो रही।
0: छत्तीसगढ़ में तो अच्छी बारिश हो रही है और अभी अभी हमने हरेली का त्योहार मनाया है। 15 अगस्त को इतने खूबसूरत ढंग से हमने मनाया है।
1: हमने भी मनाया जाए मैडम जी, अब तो बहुत सी यादें हैं 15 अगस्त की। ऑफिस में भी झंडा फहराया, कई कुछ चांस मिले हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: तो गाना सुनवा दीजिए, देशभक्ति सुनवा दीजिए।
0: बताइए।
1: ऐसा देश है मेरा, बीत जा रहा।
0: जरूर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार मैम,
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
1: अशोक कुमार साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारेडीह है, जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से।
0: बहुत स्वागत अशोक भाई आपका। मुझे लगता है आपसे मेरी पहली दफे बात हो रही है।
1: बिल्कुल, हमें भी ऐसा लग रहा है कि आपसे बिल्कुल पहली बार बात हो रहा है, तो हम भी जानना चाहेंगे कि आप कौन बोल रहे हैं।
0: मैं अंतरा बोल रही हूँ।
1: हमें भी लगा कि बिल्कुल पहली बार बात हो रहा है ना, इसलिए तो हमें भी आपकी आवाज पहचान नहीं पाए।
0: चलिए, देर आए दुरुस्त आए, हम तो यही कहेंगे। अच्छा लग रहा है।
1: लेकिन आए तो जरूर,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आना ही है।
1: पराया पराया ना, सभी उद्घोषक उद्घोषिका की आवाज हम पहचान लेते हैं, क्योंकि नियमित रेडियो सुनते हैं, इसलिए ना बहुत हम अंदाज से आवाज से पहचान लेते हैं, मतलब उद्घोषक भाई बोल रहा है ऐसा करके।
0: क्या बात है, आकाशवाणी बिलासपुर का आकर्षण ऐसा है कि आना ही है श्रोताओं को, क्योंकि हम इतनी मोहब्बत इतनी शिद्दत से उनके लिए कार्यक्रम जो लेकर आते हैं। और मेरे जैसे अगर कोई उद्घोषक या उद्घोषिका भाई बंधु थोड़े से छिपे हुए हैं, थोड़े से अभी तक पहुंच नहीं पाए अपने दोस्तों तक, तो ये भी एक अपने आप में आकर्षण का ही केंद्र है कि बीच बीच में हम आए और आपसे कनेक्टिविटी अपनी बढ़ाते चले, है ना?
1: बिल्कुल, और सभी को समय समय पर आना चाहिए ताकि सभी से पहचान हो और सभी से बातें होते रहे।
0: हमारी कोशिश भी यही होती है प्रत्येक कार्यक्रम को लेकर। चलिए, क्या कुछ नया चल रहा है जीवन में बताइए।
1: जी नया तो पड़ाव ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि हम जैसे हैं वो तो बिल्कुल बदलाव की करियर में हमेशा आदमी रहता है, तो बदलाव में यही है कि हम अच्छे से अच्छे बच्चों को पढ़ा लिखा के एक उनको नया जिंदगी दें हम, ताकि आगे चल के पढ़ाई लिखाई में कोई कमी ना हो और कोई ऐसा तरक्की करे जो पढ़ाई के क्षेत्र के साथ साथ में अपने जीवन का करियर में अच्छा से अच्छा काम कर सके। शिक्षा यही हमारा सोच है बच्चों के लिए।
0: देखिए, शिक्षा ही वो पूंजी है जिससे हम अपने स्वास्थ्य को, समाज को, परिवार को बहुत बेहतर बना सकते हैं।
1: किसी के पास उसका कोई बंटवारा नहीं होता, एक शिक्षा ही ऐसा दौलत है जो कभी बंटवारा नहीं होता,
0: तो ये एक ऐसी पूंजी है दिनों दिन बढ़ती है।
1: बांटने पर और बढ़ता है लेकिन कम नहीं होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे विचारों के साथ आपने अपनी बात रखी है। आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: अब पर्व चल रहा है मैम, अब रक्षाबंधन आने वाला है, प्रायः एक हफ्ता में हमारे नजदीक है, हमें इंतजार है उसकी, तो हमें कोई भी ऐसा गीत सुनाइए जो रक्षाबंधन संबंधित गीत हो। एक बात और बताना चाहेंगे कि हम पर्व के हिसाब से ही कभी भी गीत पसंद करते हैं, तो समय के अनुसार से ही गीत पसंद करते हैं।
0: तो भाई बहन पर केंद्रित हम कोई मीठा सा गीत आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: जी जी
0: धन्यवाद।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: हेलो।
2: हेलो, आपकी पसंद।
0: हेलो, आपकी पसंद में आपका फोन लग गया है। कौन बोल रहे हैं मेरे भाई?
2: मैं देवरी भाटापारा से गनूरा रजक बोल रहा हूँ, अंतरा दीदी नमस्कार।
0: वाह क्या बात है, नमस्कार। आपके पत्र, आपके ईमेल लगातार हम तक पहुँचते हैं, बहुत खुशी की बात है। आज आपसे बात हो रही है।
2: जी जी जी जी जी,
0: बताइए कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं, और अभी हम लोग का गांव में सौनाही रामायण का कार्यक्रम चल रहा है सावन सोमवार को, और पंडवानी का भी कार्यक्रम चलाते हैं हम लोग। हमारे भाई सहदेव रजक है, वो गायक है, उसके साथ में रागी का काम करता हूँ।
0: देखिए, पंडवानी का जिक्र आता है तो अनायास ही तीजन अम्मा की याद हमें आने लगती है।
2: जी जी जी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में तीजन बाई के ही माध्यम से देश विदेश में हमारे यहाँ का जो महाभारत पंडवानी का कार्यक्रम फैला है।
0: और बड़ा दुर्भाग्य है कि बीते कुछ दिनों में हमने ऐसी उम्दा कलाकार को खोया है।
2: क्या तीजन बाई कपाली शैली में गाती थी, हम लोग वेदमती शैली में गाते हैं, हम लोग जो वेद शास्त्र है ना, शास्त्र सम्मत में गाते हैं हम लोग।
0: अच्छा अच्छा, चलिए आप बधाई के पात्र हैं, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
2: चूंकि सावन का महीना चल रहा है और रक्षाबंधन भी आने वाला है, और उसके बाद में 20 अगस्त को हमारा श्रोता सम्मेलन भिलाई में होने वाला है, तो सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन और हमारे श्रोता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी रक्षाबंधन के पावन पर्व मेरे को चंबल की कसम फिल्म का एक गीत सुनाए दीदी।
0: बिल्कुल, आपके पसंद के गीत हम आप तक पहुँचा रहे हैं, आप हमसे जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।

श्रोताओं, ये था आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत, और इस अंतिम गीत के साथ ही हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि हर मंगलवार सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच हमें रहता है आपके फोन कॉल्स का बेसब्री से इंतजार। तो अपने दिल की बातों को हमसे साझा करने के लिए और अपने मनपसंद गीतों को सुनने के लिए आप हमें हमारे इन नंबरों पर कॉल लगा सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए, हमारे नंबर है मित्रों 2665 91 और 2665 92। याद रखिए, इन नंबरों को डायल करने से पहले आप बिलासपुर का स्टडी कोड अवश्य लगा लें। बिलासपुर का स्टडी कोड है 07752। और अब चलते चलते 20 अगस्त को होने वाले श्रोता सम्मेलन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी श्रोता साथियों को। हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे मित्रों कि सफर से लौटें

0: जमीन चूमते हैं, वतन के बेटे हैं, मां की जमीन चूमते हैं, हमारे भारतवर्ष की आन बान और शान यूं ही बनी रहे, हमारे और आपके बीच में मोहब्बत का ये चिराग हमेशा जलता रहे। इसी नोट पर दीजिए विदा आपकी अपनी अंतरा को। नमस्कार।
1: हेलो, आपके पास है?

0: आप सुन रही थी फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। प्रस्तुतकर्ता थी अंतरा चक्रवर्ती।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं लीजिए अब सुनिए आज की ट्रैफिक अपडेट।
4: सादर अभिवादन उमा शंकर पांडे का। प्रस्तुत है ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लगातार हो रही वर्षा के बीच संपूर्ण बिलासपुर जिले में कहीं मंद तो कहीं सामान्य गति से सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहन भाग दौड़ करते हुए जिले में यातायात व्यवस्था बनाए हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है ऐसे समय पूरी सावधानी के साथ और सीमित गति में चलें। साथियों ये तो आप जान ही रहे हैं हमारे बिलासपुर शहर में स्वचालित यातायात व्यवस्था संचालित है। इसका सीधा संबंध ITMS अर्थात इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से है। पूरे शहर में लगभग 500 बड़े ईमानदार कैमरे 24 घंटे सातों दिन अपलक सड़कों में नजरें गड़ाए हुए हैं। शहर की लगभग सभी सड़कों में इन कैमरों की नजर रहती है, इसलिए आप किसी भी वाहन में हो इन कैमरों की नजर से नहीं बच सकते। यही कारण है कि अब लोगों में यातायात के नियमों के प्रति चेतना आ रही है, किंतु ऐसे लोगों की संख्या कम है। जबकि यातायात के नियमों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदार होना होगा, अन्यथा ऊपर से देख रहा कैमरा किसी को माफ नहीं करता। नियमों या व्यवस्था के प्रति विपरीत जाने वालों जो स्वयं एवं आम लोगों के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, ऐसे लोगों पर की जाने वाली कैमरे की कार्रवाई उचित भी है। मित्रों विडंबना इस बात की है कि हम सबके हितार्थ इतनी बड़ी योजना से भी कुछ लोग छल करने से नहीं चूक रहे हैं। आमतौर पर असामाजिक तत्व, गुंडे, मवाली या अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर पर काला टेप या चुंबक 1-2 अंकों पर चिपका कर अथवा बहुत पुराना टूटा फूटा नंबर प्लेट या घुमावदार लिखावट के अमानक नंबर प्लेट लगाकर चल रहे हैं, ताकि कैमरा इन वाहनों के नंबर का सही वाचन न कर सके और इसके अड़ में ये असामाजिक तत्व कहीं सिग्नल जंप तो कहीं ओवर स्पीड या रॉन्ग साइड वाहन चलाना अथवा मोबाइल से बातें करते वाहन चलाते देखे जा रहे हैं, जिसके पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। अतः ऐसी गलती भूल कर न करें और हमेशा यातायात नियमों का पालन करें ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये थे आज की ट्रैफिक अपडेट्स। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। 11 बजने को हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं
2: घड़ी की सुइयां।

0: कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
0: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
0: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
0: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
1: श्रोताओ एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: जी
1: श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
0: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओ, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी श्रोताओ, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
0: जी।
1: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं।
0: जी।
1: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया। धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओ, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
0: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
1: आशा है श्रोताओ कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द और वो शब्द है खाकी। श्रोताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
0: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
1: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी।
0: जी।
1: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
0: जी।
1: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
0: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
1: श्रोताओ, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
0: जी।
1: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
0: जी।
1: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
0: जी।
1: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
0: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
1: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
0: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
1: मार्केटिंग गुरु
0: या म्यूजिक गुरु।
1: श्रोताओ, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
0: जी, तो प्रिय श्रोताओ, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं, तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया

0: अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार

0: सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो जरूर करें। यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: जी
0: श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम नदी का सफर।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जलप्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कल कल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती है।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार है जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला है। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ, तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी नदी का सफर।
2: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
3: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी, नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
2: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
4: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
5: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख में चौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
4: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
5: अच्छा,
2: वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
3: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
5: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?
2: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
4: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है।

0: डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
1: वो खुशी खुशी बहने लगी।
2: देखो देखो देखो देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
1: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
3: सखी अब हम सब मिलकर बहेंगी, हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
3: हाँ।
1: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
3: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
1: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
3: हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
1: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
0: कूद जाओ ना।
3: कूद जाऊं?
0: डरो मत।
3: हाँ?
0: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
3: अच्छा तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
1: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
5: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
1: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
3: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों

0: की प्रदूषित नालियां तक मुझमें बहा देते हैं और मैं बीमार हो जाती हूँ।
1: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
2: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
0: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
2: पुत्री तू बहती रही, इसीलिए जीवन चलता रहा।
0: अच्छा,
2: तू रुकती तो हाँ? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
0: मैं चलती रहूंगी। हाँ, मैं हमेशा चलती रहूं।
1: चरैवेति, यही तो जीवन है।
3: चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलेन केलर।
1: हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलेन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलेन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलेन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
4: आओ हेलेन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से

0: हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे दोस्त हूं ना तुम्हारी। शाबाश।
1: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
0: हेलन, आओ आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया।
2: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
0: अरे ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलन, हेलन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे हाँ। अच्छा अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो मैं लिख रही हूँ, पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी, पानी। हाँ नी, हाँ पानी। एक बार फिर कोशिश करो। हाँ
1: यूं शुरू हुआ हेलन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
2: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहाँ तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
0: मिसेस केलर
3: जी,
0: हेलन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
3: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: ma tu ma cha pia no
1: Helen, शाबाश Helen, Miss Sullivan, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं?
2: अरे नहीं नहीं मिसेस केलर,
1: मेरी बच्ची अब थोड़ा सुन सकती है और बोल भी सकती है मिस सलीमन।
2: हाँ मिसेस केलर, हाँ
1: Helen बोल सकती है।

0: अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेडक्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मे समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आईं। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: '64 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर। और श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का। ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। आइए अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुझे बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपके आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती।

0: फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा, आज फिर सीने में उलझी हुई वजनी सांसें फट के बस टूट ही जाएंगी, बिखर जाएंगी, आज फिर जागते गुजरेगी तेरे ख्वाब में रात, आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। कहां छुपा दी है रात तूने, कहां छुपाए हैं तूने अपने गुलाबी हाथों के ठंडे भाए, कहां हैं तेरे लबों के चेहरे, कहां है तू आज, तू कहां है, ये मेरे बिस्तर पे कैसा सन्नाटा सो रहा है।
1: ये था गुलजार का स्वर।

0: तुलसी कुमार और जुबिन नौटियाल की आवाजों में आप सुन रहे थे ये नॉन फिल्म एल्बम से गीत।
1: अभी रिले किए जा रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 11:55 होने को हैं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से होंगे।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 न्यायिक अधिकारियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। सुकमा जिले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर करीब 1,54,00,000 रुपए का गांजा जब्त किया। और आज से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में आ सकती है कमी। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर आज भी भारी बारिश की दी गई है चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जज के तौर पर नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कॉलेजियम की 18 अगस्त को हुई बैठक में इन 3 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव विकास सुशील की अध्यक्षता में कल रायपुर में राज्य स्तरीय

सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अधिक दुर्घटनाओं वाले रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, बलौदाबाजार, सरगुजा और बस्तर जिलों में दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण कर विशेष कार्य योजना बनाने को कहा गया। मुख्य सचिव ने ब्लैक स्पॉट के सुधार, आवारा पशुओं की समस्या पर कार्रवाई और सड़क निर्माण के दौरान ही बेहतर डिजाइन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल ने अपने हितग्राहियों को दांडिक ब्याज में 50% छूट देने की घोषणा की है। ये छूट मंडल की सभी योजनाओं में निर्मित और निर्माणाधीन आवंटित संपत्तियों पर लागू होगी। पात्र हितग्राही संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कर इस छूट का लाभ ले सकेंगे। विशेष आवासीय योजना के OTS 1 और OTS 2 में आवंटित संपत्तियां इसके दायरे से बाहर रहेंगी। इसके अलावा लंबित जल प्रदाय शुल्क के सरचार्ज में भी एकमुश्त भुगतान पर 50% छूट दी जाएगी। उच्च शिक्षा संचालनालय ने प्रदेश के सभी शासकीय कॉलेजों में रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। उच्च शिक्षा संचालनालय के आयुक्त ने प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, राजकीय विश्वविद्यालय, प्राचार्य और सभी शासकीय महाविद्यालयों को पत्र जारी कर चालू शैक्षणिक सत्र में प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सुकमा जिले के कोंटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 308 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 1,54,00,000 रुपए से अधिक है। ये गांजा नमक की बोरियों के नीचे छिपाकर लाया जा रहा था। दोनों आरोपी राजस्थान निवासी बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। सूरजपुर जिले में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। सड़कों के बहने और कई कच्चे मकानों के गिरने की खबर है। कांतिपुर गांव में सड़क पर बनी पाइप पुलिया तेज बहाव में बह गई। वहीं रायगढ़ जिले में केलो नदी का जलस्तर बढ़ने पर सोमवार रात को केलो डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। जशपुर जिले में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और उत्तरजीविता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ किया गया है। ये अभियान 18 अगस्त से 24 सितंबर तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 न्यायिक अधिकारियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। सुकमा जिले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर करीब 1,54,00,000 रुपए का गांजा जब्त किया। और आज से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में आ सकती है कमी। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर आज भी भारी बारिश की दी गई है चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर से। दिन के 12 बज चुके हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।
1: वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है।
2: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
3: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि देश के 99.6% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है।
4: टुडे आवर रेलवे नेटवर्क इज

0: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मकाऊ के लियोन योक चोंग और एनजी वेंग ची को हराया। क्वार्टर फाइनल में ध्रुव और तनिषा का मुकाबला चीन की जोड़ी चेंग फांग हुई और गुआ शिनवा से होगा। भारत के साथ गोल में क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया गया। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 342 अंक गिरकर 76,893 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 24,051 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। फिल्म है दिले नादान, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें, नक्श लालपुरी के बोल, खयाम का संगीत। आज संगीतकार खयाम की याद का दिन है।

चंबल की कसम, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे खयाम का संगीत था। आइए सुने आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गीत सुलक्षणा पंडित की आवाज में। नक्शलालपुरी के बोल खयाम का संगीत।

0: अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: कभी कभी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे खयाम का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम

इसको खेल समझे हो मगर एक दिन दिखा देंगे मोहब्बत की।

0: एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाजें थी। मखदूम मोहिउद्दीन के बोल थे खयाम का संगीत था, फिल्म थी बाजार। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, तोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, CID, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम मेरे साथ, यानी रेडियो सखी के साथ। अब वो जो इबारत है वो मैं पढ़ के सुना दूं, क्योंकि बहुत सारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं है, तो उन्हें भी पता चल जाए कि आज की इबारत क्या है और इबारत से जुड़े हुए शब्द, मतलब इसमें जो शब्द होते हैं उनसे जुड़े गाने आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं। चांदनी रात बहुत खामोश थी, आकाश पर चांद और तारे चमक रहे थे। खिड़की के पास बैठी वो देर से दूर उसी तारे को देख रही थी। जाने क्यों उसे लगता था कि उस चमक में कोई पुरानी याद छिपी है। टेबल पर एक तस्वीर रखी थी, तस्वीर में दो लोग थे, कभी बहुत पास आज बहुत दूर। उसने गुनगुनाया, आप यूं फासलों से गुजरते रहे। उन दिनों का दीवानापन भी कितना अजीब था। एक आवाज पर दिल धड़क उठता था, एक नजर पूरी रात जगा देती थी, फिर न जाने कब रंजो गम ने प्रेम की जगह ले ली। वो तस्वीर उठाकर देर तक देखती रही, मन ही मन जैसे कोई गीत बज उठा, चोरी चोरी कोई आए चुपके चुपके, काश कोई सचमुच आ जाए, दरवाजे पर दस्तक दे और कहे कि इतने वर्षों की दूरी शायद बस एक भूल थी। मगर दरवाजा खामोश था, सिर्फ हवा पर्दों को हिला रही थी। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया, आप और हम या तुम और हम, कभी यही तो एक पूरी दुनिया थी। अब तस्वीर में बची दो मुस्कुराती आंखें थी और उन आंखों के पीछे छिपी एक अधूरी कहानी। तभी उसकी नजर फिर उस तारे पर गई, वो अब भी चमक रहा था। उसे लगा शायद प्रेम कभी खत्म नहीं होता। लोग दूर चले जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, तस्वीरें पीली पड़ जाती हैं, लेकिन किसी रात किसी अकेली खिड़की के बाहर वही प्रेम एक तारे की तरह टिमटिमाता रहता है। उसने तस्वीर को वापस मेज पर रखा और धीमे से कहा, इस तरह तोड़ा मेरा दिल कि अब दर्द भी तुम्हारी याद जैसा प्यारा लगता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, आप भी चाहें तो बुन सकते हैं कहानी, लेकिन साथ में जरा वो जो तारों वाली बात है कि उसकी नजर फिर उस तारे पर गई। तो बचपन में बहुत सारे तारे देखते थे एक साथ आंगन में लेटकर चारपाई पर, ऐसा ही एक गाना भी है गुलजार साहब का लिखा हुआ। बहरहाल वो गाना तो याद कीजिए, लेकिन तारों वाले गाने तो बहुत सारे आपको लिखने ही है, साथ में वो याद साझा कीजिए कि जब तारे गिनते थे तो आसमान में तारे गिनते गिनते संख्या भूल जाते थे और तारे वहीं के वहीं रह जाते थे। तो कई बार सप्तऋषि तारा और तारों के कई नाम हम गिनाते थे, ध्रुव तारा, वो देखो वो ध्रुव तारा है, वो सप्तऋषि तारा। तो ऐसी कोई याद है तो वो जरूर साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चलिए अब गानों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहेलियों का। पहेलियां भी तो बूझनी है, जरा बताइएगा कि किस फिल्म का ये गाना है और गीतकार का नाम क्या है। संगीतकार का नाम तो आप बूझ चुके हैं, आज उनकी याद का दिन है जिन संगीतकार का ये गाना है। वैसे बूझिए आप गीतकार संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम। पहली आसान तो है ना, ये गाना तो आप पहले बहुत बार सुन चुके हैं।

शंकर हुसैन फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, जानिसार अख्तर के बोल थे, खयाम का संगीत था। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना है, सही जवाब दिया है। बहुत सारे श्रोताओं ने शब्द लिखे हैं, चांदनी, फासले, रात, रंजुगम, चोरी चोरी, तुम और हम, आंखों, मौसम, याद हो सकते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने तारे से जुड़े हुए बहुत सारे गाने लिखे हैं, तारे से जुड़े हुए अनुभव नहीं साझा किए हैं। और चांदनी रात की एक खूबसूरत बात होती है, जब चांदनी रात में घूमने निकलते हैं तो उसका कुछ अलग ही आनंद होता है। उससे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें होंगी, वो भी आप साझा करते रहिए। अब हम, आपने क्या लिखा है वो हम बताते चलते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम में कई बार सुबह आने से पहले ही रात बहुत अंधेरी लगने लगती है, और खासकर तब जब हमें अपने प्रेम का इंतजार हो। प्रेम जब एक तरफ से कम होने लगे तो सबसे पहले मन स्वीकार करने से इनकार करने लगता है, और हम तरह तरह के ख्याल में डूब जाते हैं। प्रेम में इंतजार का कोई आकार नहीं होता, वो तो हवा में घुल जाता है, आंखों में ठहर जाता है। कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। वो दिल तोड़ कर चला गया, लेकिन क्या इस तरह जाने से प्रेम खत्म हो गया? प्रेम बड़ी गहरी चीज है। प्रेम में आकर्षण तो वक्ति है, फर्क इतना है कि तुम प्रेम में कितने गहरे तक डूबे हो। बात बहुत साधारण है, ऐसा क्यों होता है जब कोई एक प्रेम के सहारे सदियां बिताने का मादा रखता है और दूसरा दिल तोड़कर चला जाता है? लेकिन इसमें बड़ा कौन होता है, दिल तोड़कर चला जाने वाला या जो आखिर तक प्रेम करता रहता है, जरा ये भी बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज दोपहरी दो प्रेमियों की दोपहरी होगी, जहां उनके मिलने बिछड़ने के किस्से होंगे, उनके रोमांस की बातें होंगी, गिले शिकवे होंगे। चांदनी रात में अकेला कोई महबूब की तस्वीर सीने से लगाए तरह तरह के सवाल जवाब कर रहा होगा। उसका गया महबूब अब तक आया नहीं, फिर क्या वो अब नहीं आएगा? आखिर कब तक कोई एक तारे में महबूब की आकृति तलाशती रहेगी? क्या वो सचमुच नहीं आएगा? ये तो आपको बताना है कि वो महबूब आएगा, दरवाजे पर जो दस्तक हुई थी सचमुच कोई आया या नहीं। बहरहाल चलिए आगे बढ़े, और अब आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम। फिल्म है नूरी, और इसमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं आज की इबारत के, बताइए, और साथ में हीरो हीरोइन का नाम बूझिए।

नूरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़, जानिसार अख्तर के बोल खयाम का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने इसका जवाब सही दिया है। फारूक शेख और पूनम ढिल्लन इस फिल्म में होते हैं हीरो हीरोइन, और बहुत जल्द जवाब हमारे श्रोताओं ने दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये दिलकश चमकते सितारे भला किसे नहीं सुहाते हैं, बचपन से ही ये दिलों को लुभाते हैं, टूटते हुए तारे मन में एक सवाल सा जगाते हैं कि टूट के आखिर कहाँ तलक जाते हैं। ये भी बताइएगा कि बचपन में जब तारों भरी रात में जागकर देखते थे आंगन में खाट डालकर, तो कौन कौन से तारे आप गिनते थे, उन तारों के नाम अगर याद है तो बताइएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर दिल तोड़ने का किसी की भलाई के लिए है तो वो बड़ा है, वरना तो अंत तक निभाने वाला सही है। देखो ना ममता जी, आटे वाले हाथ धोकर लिखना पड़ रहा है, क्या बात है भाई। ये तो आपका जुनून है और आपका प्यार है, खुलूस है, मोहब्बत है विविध भारती के प्रति जो ऐसा करवा रहा है, और हमें ये जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि कमेंट लिखने के लिए, टिप्पणी लिखने के लिए आपको हाथ धोना पड़ा। कोई बात नहीं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहाँ हीरोइन आटा गूंथ रही है और दरवाज़ा बेल बजती है, घंटी बजती है, तो बाल पीछे करती है और आटा बाल में लग जाता है, लट में। वो कौन सी फिल्म है अगर याद है तो ज़रा नाम लिखिएगा। बहरहाल हम आपकी टिप्पणी एक दो और पहुंचा दें आप तक। एक श्रोता ने लिखा है कि आज खयाम साहब के खूबसूरत गीतों से सजा है आज का सुरीला सफर, बहुत आनंद आने वाला है, आज सुबह से उनके गीत बज रहे हैं। असल में खयाम साहब के गीत तो सुन रहे हैं, सुरीला सफर को हमने अब एक अलग रंग दिया है, इसलिए खयाम साहब के साथ साथ उन्हें तो हमने याद किया ही, साथ में और भी तमाम गाने शामिल किए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि खयाम शब्दों की गहराई को समझते थे, उनके गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि बेहतरीन शायरी और साहित्य का एहसास कराते थे। शास्त्रीय और लोक संगीत का मेल उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का अनूठा संतुलन बनाया। कम शोर ज्यादा सुकून उनकी धुनों में, और पश्चिमी या भारी शोर की बजाय ठहराव, खामोशी और रूहानी मिजाज होता था। अब हम आपको चोरी चोरी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं जिसमें चांदनी है, चांदनी रात है, और साथ में एक पहेली हम पूछ रहे हैं आपसे। इस पहेली को आप देखते हैं कि बूझ पाते हैं कि नहीं। कौन सा एक गीत है जिसमें चांदनी रात है, इतराना है, खुद से शर्माना है और ऐसे शब्द हैं, फिर देखा है ये शब्द भी है, नीला अंबर शब्द है। आपको गाने के बोल अगर याद आए तो लिखिए, फिल्म का नाम लिखिए, हीरो हीरोइन कौन थे ये भी आपको ही लिखना है। जरा याद कीजिए, फिर से दोहरा देते हैं हम आपको, जिसमें चांदनी रात है एक गाना, अभी एक गाना सुनवाए।

की चोरी चोरी फिल्म का, जिसमें चांदनी रात है। इसके अलावा एक गाना और है जिसमें चांदनी रात है, खुद से शर्माना है, और देखा है कई बार नीला अंबर शब्द है, और आज की यादों की महफिल कार्यक्रम में वो गाना हमने आपको सुनवाया भी था। चलिए सुनते हैं ये गाना। चोरी चोरी कोई

कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण बीच में विघ्न आया, इसके लिए हम माफी आपसे चाह रहे हैं। चोरी चोरी फिल्म का गाना ये रहा। आपको बूझना है गीतकार का नाम।

चोरी चोरी फिल्म का गाना था और इसमें चांदनी है, मधुर चांदनी है, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे पहेली का जवाब बिल्कुल सही दिया है। हमारी पहेली ये थी कि कौन

सा ऐसा गीत है इस गाने के अलावा जिसमें चांदनी रात है, इतराना है, खुद से शर्माना है और देखा है नीला अंबर शब्द है। हमारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दे डाला है इसका। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, फिल्म दिले नादा, और इसमें हीरो हीरोइन जया प्रदा और राजेश खन्ना होते हैं। और बहुत ज़्यादा तादाद में इसका जवाब आया है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपने पहचान लिया। और हमने आपसे पूछा था कि वो हीरोइन है जो आटा लगा है हाथ में, दरवाज़ा खोलने जाती हैं और वो बालों में लग जाता है, लट में उनके आटा लग जाता है, तो हमारी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है बॉबी, फिल्म बॉबी में डिम्पल हैं, बेसन से सने हुए हाथ से ऋषि कपूर के लिए दरवाज़ा खोलती हैं। क्या बात है भाई, बहुत सारी फिल्में आपने देख रखी हैं और जानकारियाँ बहुत समृद्ध है, हम भी समृद्ध हो रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि 1955 में बचपन में जब गर्मियों के दिन बस एक तारे पर सबसे पहले खाट पर सोने जाते थे, वो सबसे चटक चमकने वाला तारा रहता था, उसे हम जरूर बचपन में देखते। और जब कोई तारा भागता यानी चलता था तो हम सब भाई बहन मिलकर कहते, देखो तारा भाग रहा है, कुछ देर बाद वो गायब हो जाता था। और कई श्रोताओं ने ये तारा वो तारा गाने के बोल लिखे हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने ये जवाब दिया है बॉबी, फिल्म बॉबी में डिम्पल होती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है चिट्ठी ने कोई संदेश न जाने कहाँ तुम चले गए। और फिर एक श्रोता ने लिखा है चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, खुद से शर्माते हुए, ये गीत है फिल्म दिले नादा का, राजेश खन्ना और जया प्रदा। और एक श्रोता ने लिखा थोड़ी सी बेवफाई, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है। मतलब हमारे श्रोताओं ने इस पहेली का जवाब बिल्कुल सही दिया, सही सही दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में छत पर चारपाई डालकर हम सोते थे, हमारी मम्मी हमें तारों के बारे में बताती थी और बताती थी कि ये सप्तऋषि तारा है, ये ध्रुव तारा है, उनके बारे में मैं एक तारे कैसे बने ये भी बताती थी कि तारे कैसे बने, सुनकर मैं रोमांचित हो जाता था। अब वो दुनिया नहीं रही, अब भी छत है, आंगन है, लेकिन वक्त नहीं है तारों को देखने के लिए, क्योंकि अब एक दुनिया है, वो है स्क्रीन की दुनिया, मोबाइल की दुनिया, कंप्यूटर की दुनिया, उसी में आप सब कुछ देख लेते हैं, तो कुदरत के पास जाने के लिए वक्त ही नहीं है। तो आप जरा याद कीजिए और बताइए कि पिछले दिनों आसमान के तारे को आपने कब देखा था, आसमान में निकलते हुए चांद को कब देखा था, कब आप चांद से बतियाए थे। अगर आपको तारीख नहीं आती तो ये बता सकते हैं कि पिछले हफ्ते, पिछले महीने, बताइएगा ईमानदारी से। अब बाजार फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और साथ में संगीतकार का नाम भी। इबारत का कौन सा शब्द इसमें आ रहा है?

0: बाजार फिल्म की ये गजल थी, भूपेंद्र की आवाज, बशर नवाज के बोल थे, खयाम का संगीत था। संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही बताया है और ये भी बताया है हमारे श्रोताओं ने, बाजार में नसरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, स्मिता पाटिल और फारूक शेख। और एक श्रोता ने लिखा है कि कल रात ही हमने तारे का नजारा देखा, जब दुकान मंगल कर दी तो मैंने देखा मौसम साफ है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 1981 में फिल्म उमराव जान, 1982 में बाजार और 83 में रजिया सुल्तान, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जो फिल्में नहीं बल्कि धुनों का महाकाव्य हैं। और सभी और भी श्रोताओं ने लिखा है फिल्म बाजार का बेहतरीन गीत भूपेंद्र की आवाज बहुत अच्छी लग रही है। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि इस इबारत से याद शब्द से ही गाना था। और एक श्रोता ने लिखा है कि 16 आने सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, मुझे बनारस से अपने गांव आजमगढ़ जाना होता है, तभी मैं निकलते हुए सूरज को देख पाता हूँ और हमें 2 महीने हो गए निकलते हुए सूरज को देखे हुए। क्या बात है, बड़ी ईमानदारी से आपने अपनी बात कह दी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। एक श्रोता ने लिखा है कि करोगी याद तो हर बात याद आएगी, परीक्षा देते समय ये बात क्यों याद नहीं आती है। भाई ठीक से पढ़ेंगे तो याद आएगी ना, तो ध्यान से पढ़िए। जैसे कि गाने ध्यान से सुनते हैं और याद आ जाती है, फिल्म के सीन याद आ जाते हैं, वैसे आपको पाठ्यक्रम की बातें भी याद रहेंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही सावन की बौछार जैसे महसूस कर रहे नजर आ रहे हैं, जो दिल को सुकून पहुंचा रहे हैं, पानी की बूंदें छमछम करती हैं जो इस कार्यक्रम को रंगारंग बना रही हैं, ये बरसात का मौसम बहुत कुछ बयां करती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो मेलोडियस सॉन्ग आज हम सुन रहे हैं, वही गीत हम उन दिनों अपने रूफ, अपने छत पर, घर की छत पर सुना करते थे रेडियो ट्रांजिस्टर के साथ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लग रहा जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि चांद तारे तो रोज ही देखते हैं रात को, आकाश में चांद तारे न दिखे तो लगता है कि आज बारिश फिर आएगी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल चांद तो कभी कभी दिख जाता है पर तारे एकदम से नहीं दिखते, बादल बहुत रहते हैं। बचपन वाली बात भी बताइए कि जब तारों को लेकर पहेलियां बूझी जाती थी कि ये कौन सा वाला तारा है, और अगर कोई गलत बताए तो शर्त लगती थी, फिर कुछ पैसों की शर्त लगती थी या फिर कुछ काम करने की शर्त लगती थी कि अगर गलत जवाब दिया तो वो कल फिर कोई काम सौंप दिया जाता था कि ये हिस्सा, अलमारी का हिस्सा साफ सफाई करोगे या आंगन बुहारोगे, या ये सजा भी होती थी। तो इस तरह की कोई याद आपके जहन में है तो ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल माया फिल्म का गाना सुनिए और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।
1: तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन

माया फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें थी। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सलील चौधरी का संगीत था। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और एक श्रोता ने लिखा है कि जब छोटे थे तो दीदी के गांव जाया करते थे। छत पर खटिया डालकर तारे गिना करते थे और आपस में चाची की लड़कियां हम सब बहनें मिलकर ये कहती थी कि तूने कितने तारे गिने। आज वो दिन है कि तारे आसमान पर दिखाई नहीं देते, गिने या देख भी ले तो ऐसा लग रहा है कि बरसों बीत गए तारे नजर आए हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि जो पिछला गाना सुनवाया था याद को लेकर और अभी तस्वीर को लेकर ये गाना सुनवाया है। और जब बात तस्वीर की चली है तो तस्वीर से जुड़ा हुआ और कौन सा गाना इस वक्त आपके जहन में गूंज रहा है? हो सकता है आपका वो गाना यहाँ पर हम बजा दें अभी तुरंत। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहले हमारी नानी जी हमेशा तारा देखकर ही शाम का खाना खाती थी। तारे को पहले दर्शन करके, तारीख को पहले दर्शन करके उसका भोग लगाकर खाती थी। भाई चांद को देखकर खाना खाने की परंपरा के बारे में हमें पता है कि जब कोई व्रत त्यौहार होता है, कोई खास त्यौहार जैसे करवा चौथ का व्रत है, तो महिलाएं चांद देखकर खाना खाती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि छोटे छोटे तारों के साथ चांद बड़ा ही अपना लगता है। हमें बहुत सारी बातें हम याद करते हैं चांद से जुड़ी हुई, पर वो हमारी बातों का जवाब नहीं देता। चांद से बहुत सारी बातें पूछते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देता, बस महसूस जरूर होता है कि वो हमें सुन रहा है। पर कभी तो एक छोटा ही सही जवाब देना चाहिए ना। हम रोज देखते हैं कि

मगर कई दिनों से हमें चांद दिखा ही नहीं। कल ही हम आसमान में देखकर आसमान से पूछ रहे थे कि हमारे चांद को कहाँ छुपा रखा है। भाई चांद से तो सभी बतियाते हैं, बचपन में तो चांद के जो चांद में परछाई दिखती है, लोग कहते थे कि कोई वो बुढ़िया है जो सूत काटती है, और कई गानों में भी कई कविताओं में भी ये बात आती है। तो चांद से जुड़ी हुई तो बहुत सारी बातें हैं हमारे जहन में, बहुत सारी पहेलियां हैं। आपके जहन में कौन सी बात है वो आप साझा कीजिए। हाँ, तो आपने तस्वीर वाला गाना याद किया क्या जो हम सुनवाने जा रहे हैं? कहीं यही गाना तो आपने नहीं याद किया, या कोई और गाना हो तो वो भी बताइए। और ये गाना सुनते सुनते जरूर बताइए कि किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है सावन को आने दो।

सावन कुमार ने दो फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, अरुण गोविल और जरीना वहाब। हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और तस्वीर से जुड़े हुए गाने गानों के बोल भी लिखे। तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, ये बोल कई श्रोताओं ने लिखा है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। और सावन

को आने दो फिल्म का नाम था, हमारे श्रोताओं ने बताया है। और फिर एक श्रोता लिख रहे हैं तस्वीर बनाता हूँ, फिर एक श्रोता लिख रहे हैं कि दूर गगन की छांव और खुले आसमान के नीचे रहने वाले को ही पता होता है कि तारों को गिनना और अंधेरी रात में चांद देखने का मजा ही अलग होता है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर तेरे दिल मेरा बहला न सकेगी, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाने के बोल यही लिखे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा कि सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, और चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। मतलब इबारत से जुड़े हुए ये गाने लिख रहे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि आज की इबारत में खयाम के संगीत सा ठहराव है, चांदनी रात की खामोशी, खिड़की के बाहर टिमटिमाता तारा, मेज पर रखी पुरानी तस्वीर और बरसों बाद भी धड़कती हुई एक अधूरी कहानी। एक श्रोता ने लिखा है कि खयाम शब्दों की गहराई को समझते थे, खयाम साहब के जो गाने हमें हमने सुनवाए उसके लिए इन्होंने लिखा है कि उनके गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि बेहतरीन शायरी और साहित्य का एहसास कराते थे। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं, महबूब की मेहंदी फिल्म से। आपको पूछना है कौन है हीरो कौन है हीरोइन, और साथ में एक पहेली और शामिल है कि ऐसा ही एक गाना है मुकेश की आवाज में, कौन सा गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, और शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म का नाम आपको बूझना है। तो एक ये पहेली होगी, दूसरी पहेली कि कौन है हीरो हीरोइन इस गाने में।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना था और हीरो हीरोइन का नाम हमने पूछा था, राजेश खन्ना, लीना चंदावरकर। और एक पहेली और पूछी थी जो ये थी कि मुकेश की आवाज में एक और ऐसा ही गाना है, ऐसा नहीं मतलब जिसमें दीवानापन शब्द आता है, और उसमें फिल्म का नाम हमने पूछा।

का था और गाने के बोल मुकेश की आवाज में गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है। गाने के बोल बताइए फिल्म का नाम। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। हिंट के लिए हमने आपको ये बता दिया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत दिल को छू लेने वाली है। ये बात हमारे कई श्रोताओं ने लिखी है। आप सभी से एक गुजारिश है कि आप प्रार्थना करें कि मैं जल्द ही भारत आ सकूं और विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपके दर्शन कर सकूं। क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विदेश से अपने देश में लौटना चाहते हैं और ये मेरा बहुत बड़ा सपना है। ये लिख रहे हैं, आपका सपना पूरा हो, हम शामिल हैं आपकी इस दुआ में। और हमारे और भी श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो जिम्मेदारियों का बोझ है, पहले हम तारे गिनते थे, आसमान साफ होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब छोटे भाई बहन एक साथ खेलते थे तो बोलते थे ये हिस्सा तारे का मेरा है, फिर हम आपस में एक दूसरे से कहते थे कि मेरी तरफ के तारे ज्यादा हैं, फिर करते करते लड़ाई हो जाया करती थी। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गर्मियों के दिन में गाँव जाने पर जब छत पर सोते थे तो बीच रात में अजिया माँ काकी को उठाने लगती थी, सात डरिया सप्तऋषि दिखाई दे रहा है, भोर होने वाला है। क्या बात है भाई, तब तारों से चांद से ही समय का अनुमान लगा लिया जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में चांदनी रात की खामोशी है, खिड़की के बाहर टिमटिमाता तारा, मेज पर रखी पुरानी तस्वीर वर्षों बाद धड़कती है। तो जो मैंने इबारत लिखी है उसकी समीक्षा इन्होंने कर दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम में दीवानी प्रेयसी, चांद तारों में प्रियतम की तस्वीर देख उसका इंतजार कर रही है, दिल में उठा दर्द आंखों से बयां हो रहा है। कौन सा गाना आपने सोचा था कि अब बजेगा ये, जिसमें इबारत में कौन सा शब्द आता है ये भी बताइएगा। फिल्म शगुन, आपको पहचाननी है आवाज किसकी है, किसकी आवाज में ये गाना है और संगीतकार का नाम भी। संगीतकार और जिनकी आवाज है उनसे एक खास रिश्ता भी है, जरा बताइएगा।

0: एक सवाल और पूछा था कि जो संगीतकार हैं और गायिका हैं, इनका खास रिश्ता था, इसके बारे में हमारे श्रोताओं ने नहीं बताया। इसके जवाब का भी हमें इंतजार रहेगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि मजबूरी से दिल तोड़कर चले जाने वाले उस सपनों के सौदागर का प्रेम धागा इतना पक्का था कि प्रियतमा के रूह में सदा के लिए फंस गया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि ममता जी आज की अधूरी इबारत को पूरा नहीं करेंगी क्या? भाई, ये तो इबारत को पूरा तो आपको करना था, हमने तो आपसे ही पूछा है शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में, कि अंत क्या चाहते हैं आप, कि वो जो दरवाजे की दस्तक हुई थी वो आ जाए या नहीं। तो आप बताइए कि क्या करना है। वैसे दुख का अंत सुख से होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। सुनिए ये प्यासा फिल्म का गाना, बुझिए हीरो हीरोइन का नाम और आवाज किसकी है ये भी बताइएगा।
1: हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो।
0: दो आवाजें हैं दोनों के।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, पूछा था हमने, सभी ने सही जवाब दिया है। साहिर लुधियानवी के बोलते, सचिन देव बर्मन का संगीत था, फिल्म थी प्यासा और माला सिन्हा गुरुदत्त के अभिनय से सजी थी फिल्म। हमारे श्रोताओं ने यह भी सही बताया। और एक पहली हमने आपसे पूछी थी कि मेरे दीवानेपन की कोई दवा नहीं महबूब की मेहंदी, और पूछा था कि एक और गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, सभी ने सही जवाब दिया, यहूदी फिल्म ये मेरा दीवानापन है, मुकेश की आवाज। और हमारे कई श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत में जो कहानी बुनी बहुत पसंद आई, और एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो आज की कहानी थी, अगली बार जब आइएगा तो ऐसी ही कोई कहानी लेकर आइएगा। क्या बात है भाई, लेकिन कहानी का अंत आप सबने बताया नहीं, हमने पिछली दफा भी कहानी का अंत पूछा था, आप सभी ने बताया था वही अंत ने किया था, लेकिन आज हमारे श्रोता हम ही से पूछ रहे हैं, तो चलिए अंत फिर

अंत में जो लाइन लिखी है उसी अंत से, उसी लाइन से हमें समापन करना पड़ेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये रचना केवल बिछड़ने का रोना नहीं है, बल्कि ये एहसास कराती है कि सच्चा प्रेम पाना या खोना नहीं, बल्कि किसी को अपनी रूह में हमेशा के लिए संजो लेना है। प्रेम का पैगाम कबूल हो गया है तो दोबारा भेजने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए, अब जब असली प्रेम सच्चा प्रेम होता है तो दुख दर्द कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन इबारत का अंत यही था, तो इसी गाने से अंत करते हैं। फिल्म का नाम जरा बता दीजिए, क्या है फिल्म का नाम? और गीतकार संगीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए।

शहनाई फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना। सुरीला सफर का ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत।

नमस्कार। सारी दुनिया में 19 अगस्त का दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आपको इसका इतिहास बताएं। दरअसल विश्व फोटोग्राफी दिवस का जो ताल्लुक है वो है डगेरोटाइप नाम की एक फोटोग्राफी प्रोसेस से, जिसका आविष्कार किया था फ्रांस के लुईस डगेरो और जोसेफ निकोफोन ने 1837 में। फिर हुआ ये कि 9 जनवरी 1839 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने डगेरोटाइप प्रोसेस की उद्घोषणा की और 19 अगस्त 1839 के दिन फ्रांस की सरकार ने इसका पेटेंट खरीद लिया और इसे सारी दुनिया के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवा दिया। तो इस तरह से ये मानना चाहिए कि 19 अगस्त के दिन फोटोग्राफी की सुविधा सारी दुनिया के लिए उपलब्ध हो गई थी और इसलिए विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। जरा सोचिए कि वो जमाना कैसा था जब फोटोग्राफी बड़ा ही महंगा शौक होता था और बहुत ही रईस लोग अपने फोटो खिंचवा सकते थे।

फोटोग्राफी ने विज्ञान की प्रगति के साथ बहुत सारे बदलाव देखे हैं। एक जमाना था जब फोटोग्राफी के लिए फिल्म रोल की जरूरत पड़ती थी और एक निश्चित संख्या में फोटो क्लिक करने के बाद ही उस फिल्म को धुलने भेज दिया जाता था। जब वो डेवलप होके और प्रिंट होके आती थी तब हमें ये देखने मिलता था कि तस्वीरें किस तरह से आई हैं। इनमें से कई तस्वीरें बेकार भी हो जाती थी। जाहिर है कि फिल्म रोल वाले वो दिन बड़े ही सुहावने थे और बहुत ज्यादा जिज्ञासा और बेकरारी से भरे हुए थे, क्योंकि फिल्म रोल के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता था। आज भी वो काली सफेद तस्वीरें पुराने जमाने की यादों को हमारे सामने ताजा कर देती हैं।

आगे चलकर जमाना बदल गया और अब तो वो जमाना आ गया है जब फोटोग्राफी के लिए लोग कैमरे से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं। जरा सोचिए कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मोबाइल आपके लिए कम्युनिकेशन मीडियम का काम भी करता है और दूसरी तरफ वो आपके लिए कैमरे का काम भी करता है। जिंदगी के हर महत्वपूर्ण या आम पल को आप तस्वीरों में बांध सकते हैं, लेकिन इसका असर ये हुआ कि तस्वीरों का जो महत्व था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि तस्वीरें बड़ी आम हो गई। ये तस्वीर खींची और ये सोशल मीडिया पर चढ़ा दी, या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दी और उन्होंने फौरन देख ली और वो खुश भी हो गए। यानी चीजें आसान हो गई तो

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार

0: पर राधा कृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
2: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
3: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
4: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
5: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा दाखिल करें, जिसमें ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व आईएसआरओ अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओडराफ के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। IMD ने शुक्रवार से रविवार

0: तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
1: भारत ने गोल में दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने दो मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। ये खानदान फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज, नक्श लालपुरी के बोल खयाम का संगीत है।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: दिल अपना और प्रीत पराई, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपके आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी। फिल्म है 11,000 लड़कियां, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, एन दत्ता का संगीत है।

11,000 लड़कियां, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, एन दत्ता का संगीत था। सदाबहार नगमे प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं धूल का फूल फिल्म का गाना सुधा मल्होत्रा की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत है। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: नमस्ते सभी सखियों को सभी सखियाओं को सभी सखाओं को और सुनने वालों को स्वीकार कीजिए चंचल वर्मा का नमस्कार। और दीपा बैठी है मेरे सामने, कैसी हो दीपा?
2: बिल्कुल ठीक। और हमारे सभी साथियों को यानी हमारे सखियों को
1: हेल्दी नमस्कार।
2: हाँ बिल्कुल,
1: हेल्दी
2: नमस्कार देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम लगातार ना उस प्रेरणाओं में रहें, इंस्पिरेशन में रहें। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आपको दे रहे हैं, आप भी हमें देते हैं
1: जी।
2: हमारे साथी देते हैं जो हमें सुनते हैं उनकी तरफ से भी। और अगर कभी कहीं कोई भूल चूक हो जाए, और इन दिनों ये दिन ऐसे चल रहे हैं, अगर कहीं थोड़ा सा भी आलस आ रहा हो ना, तो फिर से ऐसा लगता है कि हाँ हमारे किसी एक दोस्त ने कहा है अपनी सेहत का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल, लगातार इस बात पर अपना ध्यान रहे कि अपनी सेहत का और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके साथ कोई हल्का फुल्का उसे कहीं हल्के में ना ले,
1: कोई समझौता नहीं करना है। और आपके कहने से पहले ही मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि हेल्दी नमस्कार आएगा, इसीलिए बहुत उत्सुकतावश
2: हाँ,
1: मैंने कह दिया
2: तो एक बार फिर से अपने साथियों को सखियों को और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: चलिए और बता दें कि आज किस विषय पर हम बात करेंगे। देखो, सुंदर दिखने का शौक अगर सबको होता है तो सुंदर फोटो आए ये भी शौक सबको होता है।
2: हाँ बिल्कुल।
1: और कई बार ऐसा होता है ना कि हम यूं ही बैठे हैं, किसी ने फोटो खींचने का अंदाज उसका इतना अच्छा था ना, तो वो फोटो देखकर हमें लगता है कि उस दिन तो मैंने कोई तैयार भी नहीं हुए थे, हम बाल भी नहीं बनाए थे, और कई बार हम जिस जगह पर बैठे होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत नहीं होती। लेकिन ये फोटोग्राफी का कमाल है कि आपकी जो छवि है वो उभर कर इतनी सुंदर सामने आती है कि लगता है कि तारीफ कर दो जिसने ये फोटो खींची है।
2: ये बात तो बिल्कुल सही है। और वो जो सुनहरे पल कैद हो जाते हैं हमेशा के लिए, और फिर जब कुछ सालों के बाद हम एल्बम खोल के देखते हैं वो वक्त याद करते हैं, तो भाई ये आविष्कार कितना ऐतिहासिक है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और बहुत सारे संदेश इस विश्व फोटोग्राफी दिवस के लिए आए हैं।
1: और एक समय था ना कि कई बार जब कैमरे से फोटो क्लिक होती थी तो हम इंतजार करते थे कि कब वो पूरी रील पहले खींची जाएगी, फिर से धुलाई पे जाएगी, और फोटो जब डेवलप होके आएंगे तब हम उन्हें देखेंगे। लेकिन अभी जिस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में, जिसे हम मोबाइल के नाम से जानते हैं, आपने जैसे ही क्लिक किया आपके हाथ में फोटो होता है
2: जी।
1: अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो आपके पास उसे भेजने के यानी कि एक दूसरे के साथ शेयर करने के ऑप्शन भी होते हैं।
2: बिल्कुल,
1: अब धुलाई करवाएंगे इतना इंतजार ही नहीं करना होता, और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप तुरंत जाकर प्रिंट भी ले सकते हैं उसका, अगर आपको एक हार्ड कॉपी यानी कि अपने पास में रखनी है। आपको कई बार लगता है कि कहीं कोई डिलीट ना हो जाए, तो उसे हमेशा के लिए अगर सुरक्षित रखना है तो बहुत लंबा समय इंतजार नहीं करना है।
2: बिल्कुल सही कहा। और जो डिलीट वाली बात कही है ना आपने, दिल में कहीं कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कभी कभी चंचल, जो हमें डिलीट कर देनी चाहिए।
1: बिल्कुल
2: है ना,
1: यानी कि जो नफरत की क्रोध की भावनाएं हैं उन्हें भुलाकर हमेशा अपने दिल में एक इंसानियत की, जो मानवता की भावना है, दूसरों का भला करने की भावना है, उसे हम सहेज कर रख सकते हैं।
2: बिल्कुल सही, ताकि हम आगे जो जीवन में चलें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यानी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें, और खुशियों को और मन की शांति और सुकून को प्राथमिकता देते हुए आगे निकलते चलें जीवन में। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए देखिए, आज है विश्व मानवता दिवस,
1: और यही हमने शब्द लिया है जब हम बात करेंगे कि शब्द हमारे और विचार आपके, तो मानवता को लेकर हमारे सुनने वालों के क्या विचार हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें जरूर लिखकर भेजें। तो मानवतावादी दिवस के बारे में

0: बात होगी और मानवता के बारे में हमारे सुनने वालों की सोच क्या है, इस बारे में ही बात होगी।
1: और साड़ियां पहनना कैसा लगता है, ये विचार अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या पसंद है आपको साड़ी
0: भाई
1: पहनना?
0: महिलाओं को साड़ी पहनना पसंद ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, और खास मौके जब आते हैं ना, वैसे हम जो भी कैजुअल कपड़े जो होते हैं हम पहन लेते हैं, कई बार सलवार सूट पहनते हैं, कई बार हम जीन्स टॉप भी पहनते हैं, कहते हैं कि वेस्टर्न आउटफिट कभी करने का मन करता
1: जी
0: है, लेकिन जब कोई खास मौका हो, किसी से मिलने जाना है, घर पे कोई उत्सव है, कोई त्योहार है, या कभी मन में लगाना कि नहीं आज कुछ मन में खास बनने का अवसर है, तो उस वक्त सबसे पहला परिधान जो हमारे जहन में आता है वो होता है साड़ी।
1: बिल्कुल।
0: और
1: और
0: इतने सारे
1: सावन
0: प्रकार हैं ना साड़ी के कि कई बार चुनना मुश्किल होता है, लेकिन अलग अलग मौके के हिसाब से साड़ियां चुनी जाती
1: चुनी
0: हैं।
1: जा सकती है, जैसे कि सावन के महीने में लहरिया साड़ी।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और लहरिया साड़ी की ही आज हम बात करेंगे। लहरिया साड़ी राजस्थान में तो बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन
1: जी
0: आजकल हर जगह ये पहुंच चुकी है, तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं इसके बारे में जरूर हमें बताएं कि हमारी सखियां किस तरह से लहरिया पहनती हैं, या उनके वार्डरोब में साड़ी है कि नहीं।
1: है या नहीं। और जिस दिन आपको साड़ी पहन के कहीं जाना है तो फिर घर में एकदम अफरा तफरी होती है ना कि भाई मुझे जाना है, अब हम जल्दी नहीं आ पाएंगे, तो ऐसे में कुछ झटपट बना के रख दें, खिला दें घर में, जो पीछे परिवार में बच्चे रह
0: हाँ
1: गए हैं या पतिदेव रह गए हैं या कोई और परिवार के सदस्य, तो क्या झटपट बनाया जा सकता है? कुछ संदेश आए हैं, हम चाहते हैं आप और कुछ रेसिपीज
0: बिल्कुल,
1: भेजिए।
0: हमारी सखियां बड़ी होशियार हैं, वो इस तैयारी में होती है कि भाई आज जल्दी से कुछ बनाना है, तो उनके पास उनके पिटारे में झटपट वाले कौन से व्यंजन होते हैं, खासतौर पे जो स्नैक्स के आइटम होते हैं ना, तो वो हमें लिखकर भेजें। तब तक एक गाना सुन लेते हैं सबके साथ
1: चलिए
0: में।

0: दीपा, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये जो समय है, ये तन्हा ना बीत जाए, इसमें सबको साथ लेकर हमें चलना है, और कई बार अपनी यादों को भी साथ संजो कर चलना होता है। फोटो उसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जो हमारी तस्वीरें होती हैं पुरानी, वो
1: जी
0: हमें उन यादों से जोड़े रखती हैं, हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं उनसे भी जोड़े रखती हैं। तो कई बार मन में आता है कि फोटोग्राफी क्या चीज़ है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि फोटोग्राफी रोशनी का इस्तेमाल करके चित्र बनाने की एक कला होती है, और 19 अगस्त का दिन होता है, इसे विश्व स्तर पर फोटोग्राफी के रूप में हम मना रहे हैं आज भी, और विविध स्तर और रचनात्मक तरीकों से फोटोग्राफी की कला और शिल्प का इस दिन सम्मान किया जाता है।
1: अगर इसके इतिहास में थोड़ा जाएं हम चंचल, तो शुरुआत में फोटोग्राफिक प्रक्रियाओं में डेगोरियो टिप ये
0: हाँ
1: आविष्कार किया गया था,
0: बिल्कुल,
1: जिसे 19 अगस्त 1839 में फ्रांसीसी सरकार ने दुनिया को उपहार के रूप में ये घोषित किया था।
0: और ये उपहार देखो ना कितना बहुत काम की चीज बन गई हमारे।
1: बिल्कुल, तो ये लुई और जोसेफ निप्स, इन दोनों ने मिलके इस टाइप को, ये
0: ये जो
1: डेकोरेट,
0: आविष्कार है,
1: हाँ
0: हाँ
1: ये जो आविष्कार है, इसको विकसित किया था और इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने हमारी और आपकी छवियों को कैप्चर करने और उससे सुरक्षित और हमेशा संरक्षित रखने के लिए, आप यूं कहें कि एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया है ना
0: बिल्कुल सही
1: हम
0: कहा,
1: सबके ही जीवन में।
0: और इसी की याद में तो आज का दिन हम मना रहे हैं, और ये दिन जो इस आविष्कार का सम्मान करता है, फोटोग्राफी को इस तरह से मतलब पेश करता है, और सदियों में ये विकसित हुआ, जिसने कला, विज्ञान, पत्रकारिता, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति सभी को प्रभावित किया है। फोटोग्राफी की दुनिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां वो जो अपना जुनून है, अपना शौक है, उसे साझा भी करते हैं, और जो उनका काम है इसके माध्यम से सबकी वाहवाही भी बटोरते हैं इसे दिखाकर, है ना।
1: अब अगर कभी पूछा जाए कि एक तस्वीर क्या है, तो एक तस्वीर किसी स्थान या अनुभव या विचार या किसी समय को जब कैद कर लिया जाता है, उस क्षण को,
0: जी
1: उसे एक हम तस्वीर कहते हैं। भाई
0: बिल्कुल
1: अगर कभी पूछ लिया किसी ने ये सवाल, तो हम कम से कम परिभाषा तो दे सकते हैं, है ना।
0: जी सही कहा दीपा आपने,
1: और फोटोग्राफी के रूपों का सम्मान करते हुए हर साल एक वैकल्पिक थीम के साथ इस दिन को मनाया जाता है। तो इस साल का जो थीम है

0: वो है घर, यानी हमारा हाउस होम जो हम कहते हैं। तो ये थीम उस स्थान या उस एहसास को दर्शाती है जिसे हम अपना घर मानते हैं, जहाँ आप रहते हैं, या आपका कोई आपका गृह, आपका देश, या वो स्थान जिस जहाँ आपको अपना सा लगे, एक सुकून भरा महसूस हो।
1: जी
0: तो ये थीम है, तो आप घर को लेकर के तस्वीरें अलग अलग खींच सकते हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पर आज के दिन उस फोटोग्राफ को शेयर कर सकते
1: और
0: हैं।
1: देखो हमारे सुनने वाले लिख रहे हैं कि ये अद्भुत कला बीते हुए पलों को, भावनाओं को, यादों को हमेशा के लिए सहेज लेती है। अच्छी तस्वीर केवल एक दृश्य नहीं दिखाती, बल्कि अपने भीतर एक पूरी कहानी, एहसास और पूरा समय समेटे हुए रहती है। फोटोग्राफी ने दुनिया को देखने और समझने का नजरिया भी बदला है। तस्वीरें समय को रोक नहीं सकती, लेकिन बीते हुए समय को हमारी यादों में हमेशा के लिए जीवित रख सकती हैं। और ये बहुत अच्छी बात लिख कर भेजी है।
0: बिल्कुल। और एक संदेश और आया है बड़ा प्यारा सा। ये संदेश में कहती है हमारी सखी कि सच कभी कभी हमारा ऐसे ही खींचा गया फोटो इतना अच्छा होता है कि उसके सामने बहुत ही बन ठन के खींचे गए फोटो बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। मतलब हम कभी कभी बिल्कुल तैयार होकर के खड़े होते हैं कि हाँ हमारा क्लिक करना चाहिए फोटो, लेकिन एक कैजुअल वाले भी जो पिक्चर है फोटो खींची हुई वो बहुत सुंदर लगती है उसके
1: बिल्कुल।
0: सामने।
1: और एक संदेश में बात लिखी गई है कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं। ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं और अपने नए दिन और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश कहता है कि पहले के समय में हमारे देश में लोगों के पास कैमरे नहीं होते थे, कैमरा बहुत महंगा हुआ करता था,
1: हाँ
0: उसकी रील भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली होती थी और फोटो खिंचवाने के बाद धुलवाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था, जैसे अभी हम बात कर रहे थे,
1: जी
0: और तब जाकर के फोटो मिलते थे। अच्छी आई या बुरी वो तो बाद की बात थी, फिर
1: हाँ
0: कलर फोटो खिंचने लगी और पहले स्टूडियो में जाना पड़ता था फोटो खिंचवाने के लिए। आज के समय में मोबाइल से ही फोटो खींचे जा सकते हैं, किसी के पास भेज दो, कोई टाइम नहीं लगता। अब तो लोगों के पास मोबाइल है, कैमरे बहुत कम लोगों के पास लोग भी का बहुत कम रखने लगे
1: जी
0: हैं, और वो भी उन्हें जिन्हें कैमरे का शौक है, या
1: एक
0: वो जो कि इसको प्रोफेशनली इसको
1: हाँ,
0: लेते हैं वो लोगों के पास कैमरे होते हैं।
1: लेकिन उन कैमरों में भी आजकल ये एक सुविधा आने लगी है कि आप तुरंत उसको डेवलप करा सकते हैं। पहले जो कहते हैं कि इंतजार करना पड़ता था ना,
0: हाँ
1: वो
0: जी
1: जो इंतजार की घड़ियां हैं वो लोगों की कम हो गई हैं। कई बार हम शादी में भी देखते हैं ना, फोटोग्राफर जब तस्वीर खींचते हैं तो चार पांच फोटो एक साथ में खींच लेते हैं और फिर आपसे सेलेक्ट करवा लेते हैं कि किस फोटो को फाइनल करके रखा जाए।
0: बिल्कुल।
1: कई बार तो कि आंखें बंद हो गई, कहीं आप यहाँ वहां देख रहे होते हैं, तो वो फोटो पहले ऐसा ये सुविधा हमारे पास नहीं थी। अगर आपकी तस्वीर में आंखें आपने बंद कर ली, झपका दी, या आप कहीं इशारे से कुछ कह रहे हैं, आपका हाथ जहां का तहां है वहीं रह जाएगा।
0: हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। और आज के दिन क्या-क्या होता है, तो आज के दिन के पे फोटोग्राफी की कला और शिल्प का सम्मान किया जाता है चंचल। दुनिया भर के फोटोग्राफर तरह तरह के प्रदर्शनियों में भाग लेकर के अपने काम को चित्रित करते हैं, फिर अलग अलग वर्कशॉप्स होती हैं, कई जगह पर ऐसा होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें फोटोग्राफी के बारे में जानकारी दी जाती है, फिर फोटो वॉक करने वाले और टूर फोटोग्राफी के शौकीन को पास आसपास के स्थानीय लोगों का पता लगाने और उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए भी एक साथ ले जाया जाता है। तो ऐसा भी होता है कि आपको फोटोग्राफ खींचनी ऐसे छोटे से गांव, कोई ऐसे जगह हो, ट्राइबल एरिया कोई हो,
1: हाँ
0: तो वहां पे लेके जाते हैं और उनको बोला जाता है कि ये विशेष समुदाय इनके इनका फोटोग्राफ खींचा जाए और फिर इन्हें अलग-अलग जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साझा की जाती है वो सारी तस्वीरें।
1: हमारे एक श्रोता का संदेश है कि पहले तस्वीरें कैमरे में कैद होती थी, पर आजकल इसकी जगह मोबाइल ने ले ली है और डिजिटल रूप में ये होने लगी हैं। तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती हैं। तस्वीरों का होना हमारे अपनों को हमारे नजदीक रखता है, यादों से जोड़े रखता है। तस्वीर हमारे लिए खास थी और हमेशा खास ही रहेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं, तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, बिना बोले सब कुछ कह देती हैं, और ये दिन नए और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देता है।
1: हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि एक समय था जब राजा रजवाड़े या बहुत धनाढ्य परिवार के लोग होते थे, उनके पास कैमरा होता था या फोटो का चलन उस समय ज्यादा था। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया, वैसे वैसे सुविधाएं भी सुलभ होती गईं। जैसे सामान्य मानवीय तक फोटोग्राफी का जमाना था, पर्यटन, धार्मिक स्थल और सभी जगह फोटोग्राफी होने लगी और ये एक व्यवसाय था। जब लोग अपनी तस्वीरों को घर पर पोस्ट के द्वारा भेजा करते थे, ऐसे

0: साथ ही आना, और मैं भी तुम्हें बुला रही हूँ दीपा सखी, बस आना क्योंकि बहुत सारे संदेश हैं, इन्हें भी पढ़कर सुनाना। तो पहले एक संदेश मैं ही पढ़कर सुना देती हूँ।
1: चलिए सुनाइए।
0: और फोटोग्राफी की हम बात कर रहे थे ना, इस पर अपना एक किस्सा हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि कॉलेज के दिनों की उन्होंने बात लिखी है। कॉलेज में उन्हें एक कार्ड बनवाना था, उन्हें फोटो की जरूरत थी। तो शहर के पास, आगे लिखते हैं कि शहर के पास ही हमारी दुकान थी, उसके पास में एक फोटो स्टूडियो था। उसमें दोनों पिता पुत्र काम किया करते थे, लेकिन उस दिन लड़के के पिता दुकान पर नहीं आए थे। और उसी दिन क्योंकि मुझे फोटो की जरूरत थी और उनके लड़के के साथ मेरी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन वो लड़का बोला कि मैं तुम्हारी तस्वीर अच्छी बना दूंगा। लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि शायद भूतकाल में उनके साथ ऐसी कुछ घटना हो चुकी थी उसके साथ में। लेकिन उस लड़के ने विश्वास दिलाया कि वो फोटो अच्छी लेगा, तो डरते डरते उसकी बात पर विश्वास करके वो तैयार हो गए फोटो खिंचवाने के लिए। और जब वो तस्वीर ले रहा था लड़का, तो मैं बहुत डरा हुआ था, घबराहट भी चेहरे पर थी, और मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई, उसने तस्वीर मेरी बहुत अच्छी बनाकर दे दी। वो तस्वीर मेरे पास आज भी है, जब भी मैं उस तस्वीर को देखता हूँ तो उसमें मेरा चेहरा बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ दिखाई देता है।
1: देखिए कितने मजेदार उनकी यादें हैं ना
0: जी
1: तस्वीरों को लेके। और 1962 की एक याद हमारे श्रोता भाई यहाँ पे साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया की शादी का फोटो एल्बम बनाने पहली बार फोटोग्राफर को बुलाया गया था साल 1962 में।
0: जी
1: उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, हर

0: जगह हर एक फोटो खींचने के बाद फ्लैश का लैंप बदलना पड़ता था। और उन दिनों मेरा बचपना था, तो 11 साल की उम्र थी उनकी। मंडप के बीच भाई भाभी के फोटो खींचते वक्त मैं भी हर फोटो में बीच में खड़ा हो जाता
1: और पहले ऐसा अक्सर होता था कि छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता था कि वो हर तस्वीर में नजर आए,
0: हाँ
1: और
0: बिल्कुल,
1: कहीं ना कहीं से वो झांकता हुआ चेहरा उनका नजर आ ही
0: नजर
1: जाता
0: आ
1: था।
0: ही जाता
1: पुराने एल्बम जब भी हम खोलते हैं ना, तो एक ना एक बच्चा ऐसा नजर
0: था।
1: आएगा जो हर फोटो में कहीं ऊपर से, कहीं नीचे से, अगल बगल से, या और जब तक फोटो उन्हें हटाया जाए वो फोटो क्लिक हो चुकी होती थी, वो एंड टाइम पर इस तरह से तस्वीर में घुस जाते
0: और ये
1: थे।
0: देखो एक और मजेदार संदेश आया है। हमारी सखी कह रही है कि फोटो में तो ऐसी ताकत है कि सिर्फ फोटो देखकर ही 18 साल पहले मेरी शादी हुई थी। वो कैसे? उधर से फोटो कागज में लपेट कर आई और इधर से हमने कागज में लपेट के दे दी फोटो और बस
1: चलिए,
0: हो गई शादी। क्या बात है भाई, ये जमाना कितना सुलभ और सुंदर और एकदम सादा सा था, है ना?
1: बातें आगे बढ़ाएंगे, पहले एक गीत सुन लेते
0: चलिए।
1: हैं।

0: ये व्यक्तिगत व्यवहार से जुड़ा हुआ है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव, यही मानवता है।
1: बिल्कुल सही। और आज के समाज में देखो मानवता को लेकर बहुत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। कभी कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं दुर्घटना हो गई, किसी संकट के समय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। रक्तदान करना, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी मानवता के रूप हैं।
0: बिल्कुल, आज जब विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को दीपा बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मानवता, इसे तकनीक से हम जोड़ के देख ही नहीं सकते ना। कोई व्यक्ति कितना भी उसके पास धन है, लेकिन वो उसके धन का वो सिर्फ अपने लिए ही सहेज कर रखता है, किसी की सहायता नहीं करता, तो कहते हैं कि उसके धनी होने का भी कोई महत्व नहीं है। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, भले आपने बहुत सारा धन खर्च नहीं किया, आपने कोई छोटी सी ऐसी काम कर दी, छोटी सी ऐसी कोई बात कह दी जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अगर मान लीजिए किसी दुखी को, दुखी दिल है उसको सहारा दे दिया, सांत्वना के दो शब्द कह दिए, तो ये भी मानवता का परिचय देता है। हमारे समाज में मानवता के बहुत सारे उदाहरण हैं दीपा, जिसमें प्राकृतिक आपदा के समय या किसी दुर्घटना के समय जब लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं, रक्तदान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो ये चीजें हैं ना, यही असली मानवता होती है।
1: हमारे एक सखी ने चार शब्द लिखा है मानवता के लिए, जियो और जीने दो।
0: क्या बात है, तो चलिए अब गाना सुन लेते हैं।

0: आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ।
1: और भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी ही चाहिए। जब कोई उत्सव होते हैं ना, तो ये भावना हमारे देश में सब जगह देखने को मिलती है। सब मिलजुल कर उस त्योहार को मनाते हैं, और महिलाओं में सावन के महीने का एक खास आकर्षण होता है। सब मिलकर सखियां साथ झूला झूलने जाती हैं, और तीज के दिन खास तौर पर लहरिया पहना जाता है। अभी हाल ही में तीज का त्योहार गया है, जिसे राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया गया।
2: बिल्कुल।
1: तो जो राजस्थान की हमारी सखियां ना, जो इस वक्त सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, तो वो हमारी बात से जरूर सरोकार रखती होंगी कि उन्होंने भी लहरिया पहना होगा। नहीं पहन पाई किसी कारणवश, तो मन में मलाल जरूर रह गया होगी, लहरिया नहीं पहन पाई।
2: तो कोई बात नहीं, इस दफा लहरिया साड़ी ले आए, क्योंकि सावन अभी बाकी है। तो और उसे पहन के खूब सुंदर सजे धजे और ढेर सारे तस्वीरें खींचे, और फिर अब तो कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म से आप साझा कर सकती हैं।
1: और जब आपने सजने धजने की बात कही ना, तो साड़ियों के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। हर परिधान के साथ में एक अलग तरह का श्रृंगार किया जाता है। जो ज्वेलरी हम पहनते हैं ना, जो जेवरात हम पहनते हैं, तो हर परिधान के साथ अलग तरह के जेवर पहनते हैं। अगर आपने बनारसी साड़ी पहनी है तो जेवर अलग तरह के
2: अलग
1: होगा। आपने सूती कोई साड़ी पहनी है तो अलग तरह के होंगे। जॉर्जेट की पहनी है, लहरिया पहना है, अब लहरिया में भी आपने भारी भरकम पहना है या हल्का फुल्का पहना है, तो आपके जो श्रृंगार की चीजें होती हैं वो उस तरह से हो जाती हैं। बहरहाल हम बताते हैं कि लहरिया राजस्थान की एक पारंपरिक और बहुत खूबसूरत साड़ियों में से एक होती है, और इसकी खास पहचान होती है इसके जो लहरदार और तिरछे पैटर्न बने होते हैं,
2: जो बने होते हैं जी।
1: और खास तौर पर राजस्थान की जो रंग बिरंगी संस्कृति उत्सव है, वहां की जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुए ये परिधान होते हैं।
2: अब देखो ना चंचल, ये लहरिया, ये शब्द ही लहर से आया है।
1: हाँ।
2: इसमें कपड़े को विशेष तरीके से मोड़कर या बांधकर रंगाई की जाती है, जिससे कपड़े पर लगातार लहरों जैसी धारियां बन जाती हैं। और ये खास तौर पे टाई और डाई, यानी वो तकनीक, बंदेज या रंगाई, इसकी तकनीक का ही एक रूप है। और इस साड़ी के लहरदार धारियां इसकी खासियत के साथ इसकी सबसे प्रमुख पहचान भी है। लहरिया साड़ी ज्यादातर आप देखो तो एकदम चटक कलरों में होगी, है ना, पीली, गुलाबी, लाल, हरा, नीला, नारंगी, सारे जो चटक कलर होते हैं हमारे, वो इनमें इन साड़ियों को आप देख सकते हो। हालांकि आजकल अब थोड़े से इंग्लिश कलर, इंग्लिश टोन्स भी लेने लगे हैं, लेकिन फिर भी
1: जो पारंपरिक
2: कलर जो इस साड़ी के साथ जाता है ना, गुलाबी पहन लीजिए आप, हरा पहन लीजिए, आहा,
1: जैसे आपने
2: लाल कलर की सुर्ख साड़ी हो तो क्या बात है।
1: आपने पीले कलर का अगर बेस है तो उसपे कुछ नारंगी या हरे रंग की धारियां होंगी, अगर गुलाबी बेस है साड़ी का तो कुछ ज्यादा गहरे रानी रंग की या हरी सी कुछ धारियां, तो जो बीच में धारियों का रंग अलग होता है ना, वो इसे और खूबसूरत बना देता है।
2: बिल्कुल खूबसूरत बना देता है। और शादी ब्याह में तो आप देखिए थीम रखने लग जाते हैं आजकल तो, कि एक किसी फंक्शन पे हम ये वाली साड़ी या इसका लहंगा बना करके पहनेंगे। और फिर देखिए जब चटक कलर में पारंपरिक नृत्य होता है तो उसका तो जो नजारा ही कुछ एक अलग आनंद देता है।
1: हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश हमें मिल रहे हैं। एक संदेश में कहा गया है कि लहरदार यानी लहरिया साड़ी मूल रूप से राजस्थान, विशेषकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ की पारंपरिक पहचान है। अपने खूबसूरत लहरनुमा डिजाइन के कारण राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुंबई, सभी जगह सावन, तीज और मेलों के अवसर पर ये बहुत पसंद की जाती है। राजस्थान की इस कला का ये मुख्य केंद्र है। यहाँ के स्थानीय त्योहारों में और रोजमर्रा के पहनावे में लहरिया का विशेष स्थान है। उत्तर भारत में सावन मास, हरियाली तीज, रक्षाबंधन के मौकों पर इन लहरिया साड़ियों का बहुत भारी क्रेज देखने को मिलता है।

0: है और गुजरात महाराष्ट्र के पारंपरिक बाजारों में शादी ब्याह के उत्सव पर भी इनकी बहुत मांग रहती है। सावन और मानसून के मौसम में हरी, पीली, लाल और मल्टी कलर की लहरिया साड़ी पहनी जाती है, जो
1: अभी तो
0: जॉर्जेट
1: बहुत
0: कॉटन
1: फैशन में है ये मल्टी कलर वाली
0: जी और
1: जी।
0: अलग अलग फैब्रिक में लोग इन्हें पसंद करते हैं।
1: और हम अगला संदेश सुनाए चंचल, तब तक हम अपनी सखियों से भी पूछते हैं कि लहरिया साड़ी आपने इन दिनों में पहनी या नहीं पहनी, हमें जरूर बताइएगा। और सुनिए ये संदेश, ये भी यही बता रहा है संदेश कि ये टाई एंड डाई ये वाले कला से इसको बनाया जाता है, जिसमें पानी की लहरों की तरह तिरछे और सुंदर धारियों वाले पैटर्न बनते हैं, और राजस्थान का ये पारंपरिक पहनावा है। साथ में कह रहे हैं कि इसमें कपड़े को तिरछा मोड़ कर धागे से बांधा जाता है, फिर चमकीले रंगों से रंगा जाता है। पचरंगा लहरिया जो है उसमें 5 रंगों वाली विशेष डिजाइन होती है, यहाँ की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शान है ये वाली स्टाइल। और प्रमुख प्रकार और रंग है लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बहुरंगी शेड सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर कपड़े की बात करें तो ये संदेश कहता है कि जॉर्जेट, क्रेप, शिफॉन, सिल्क जैसे इन जैसे हल्के और जो
0: हाँ
1: लहरदार, जो एकदम बिल्कुल आराम से जो जिसे पहना जा सके ऐसे वाले फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। गोटा पत्ती का वर्क होता है फिर तो, त्योहारों और शादियों के लिए इस तरह महीन गोटा पत्ती या जरदोसी का काम इस पर किया जाता है। राजस्थानी सावन और उत्सवों के माहौल में सजी खूबसूरत लहरिया साड़ियाँ, ये ताज़ा डिज़ाइन आजकल खूब वहाँ के मार्केट में आप देख सकते हैं।
0: सिर्फ साड़ियां ही नहीं, जो पुरुष हैं वो दुपट्टे डालते हैं लहरिया के, जो दुपट्टे बनने लगे हैं वो कुर्ता पायजामा पहनकर उस पर लहरिया पहनना, सिर्फ हम कहते हैं ना कि महिलाएं शौकीन होती हैं, तो लहरिया के जो दुपट्टे हैं जहां महिलाएं उनको शौक से पहनती हैं, तो पुरुष भी इसे बहुत चाव से अपने कुशल कुर्ते पजामे पर सजाते हैं।
1: और सिर्फ दुपट्टा ही नहीं, पुरुष तो उसके कुर्ते बनते हैं, शॉर्ट कुर्ता जीन्स के ऊपर आप पहनिए, देखिए क्या खूबसूरत लगता है,
0: इसके अलावा
1: यहाँ तक कि
0: पगड़ियां भी
1: बांधने।
0: पहनी जाती हैं,
1: जी जी
0: पगड़ियों में भी लहरिया होता है, जो पगड़ी जिस कपड़े की आप बांध कर पहनते हैं उसमें भी लहरिया का इस्तेमाल किया जाता है। एक अन्य संदेश में कहा गया है कि लहरिया इसके ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन और लाइट वेट होना ये हर उम्र की महिलाओं पर बहुत फबता है। हाथ से बनी असली लहरिया साड़ी रंग की शुरुआत, इसमें रंग जो है वो धुलाई में थोड़ा सा निकल सकता है क्योंकि ये टाई डाई से बनाई जाती है।
1: और लहरिया को एक प्रकार, एक संदेश में हमारी सहेली ने लिख भेजा है, एक दली यानी इसमें केवल एक ही रंग की लहरदार धारियां होंगी और इसमें 5 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होगा जो बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी। और एक होता है, एक और प्रकार है मोठड़ा। तो जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई चेक्स वाला पैटर्न बनाती हैं, मतलब एक तरफ से और दूसरे तरफ से जब आती है तो उसे मोठड़ा कहते हैं।
0: तो चलो वे गाना सुन लेते हैं, सुंदर साड़ियों की बात हो रही है, सुंदर गीत।

0: और देखो जब हम तुम दोनों मिल जाते हैं ना तो बहुत सारे संदेश लेकर आते हैं। और अब कुछ आगे संदेश की तरफ बढ़ते हैं, और हमने बात की थी ना कि कुछ छटपट पन्ने वाली जो चीजें होती है ना उनकी बात की जाए, क्योंकि कई बार हमारे पास समय की कमी होती है या अचानक से मेहमान आ जाते हैं, हमें कहीं जाना होता है और हम ऐसे ही किसी चीज की तलाश में रहते हैं कि झटपट ऐसी कोई चीज बना दी जाए जो स्वादिष्ट भी हो और इसे आहार बना रहे पेट में। तो
1: बिल्कुल सही।
0: सूजी के अप्पे ऐसे होते हैं जिन्हें झटपट बनाया जा सकता है। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए, हमारे श्रोता ने हमें लिखकर भेजी है। 1 कप सूजी में आधा कप दही और आधा कप पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लीजिए। इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, घिसा हुआ गाजर मिलाएं, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया भी काट कर डाल दें। अब ये जो सब्जियों की सामग्री बनाई गई है इसमें आप जो चीजें नहीं खाते हैं उन्हें आप ना डालें, और कुछ स्वाद के लिए और चीजें डालना चाहते हैं तो उन्हें आप जोड़ भी सकते हैं। आगे इसे बनाने के लिए रेसिपी है कुछ इस तरह से है कि एक छोटे पैन में 1 चम्मच गर्म तेल करके डालें, राई, जीरा, नीम की छोटी पत्तियों का तड़का लगाकर इसमें एक गाढ़ा घोल तैयार कर दें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब आधा चम्मच इसमें कुछ भी आप या तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इस तरह का कुछ भी डाल सकते हैं, और तुरंत अप्पे के सांचे में डालकर गर्मा गर्म फूले फूले अप्पे तैयार कर लीजिए। नारियल की चटनी या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ में इसे परोस कर खाया जा सकता है।
1: बिल्कुल। और एक और ये रेसिपी भेजी हमारी सखी ने, भुट्टे की टिकिया बनाना बताया है कि कटोरी, 1 कटोरी उबले हुए भुट्टे आप ले लें, मिक्सी में पीस लें, 1 कटोरी उबला हुआ आधा आलू ले सकते हैं, आधा कटोरी पनीर, और इन सबको मिक्स कर लें। हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह डाल लें और थोड़ा सा चाहे तो शिमला मिर्ची डाल लें। सब सब कुछ मिक्स करके अपने हिसाब से मसाले डाल लें, टिकिया बनाकर इसे सेक लें।
0: और अभी गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: अच्छा, अगर झटपट से आपको बनाना है, कोई अचानक आ जाए, तो आप ऐसा करिए कि थोड़े से पोहे को पानी के में अंदर से धो के उसको निचो लीजिए, और फिर जो उबले हुए अगर आलू पड़े हैं फ्रिज में, तो उसको भी आप इसके साथ में मिक्स कर लीजिए, और फिर देखिएगा जब आप पोहा निचोड़ेंगे ना, तो अच्छे से वो फूल जाते हैं थोड़ी सी देर के बाद। इसमें उबले हुए आप आलू डालिए, भुनी हुई अगर मूंगफली घर में है तो उसको दरदरा पीस के वो भी डाल लीजिए, एक ब्रेड का टुकड़ा पानी में भिगो कर उसे भी निचोड़ कर मसल कर अच्छे से डाल दीजिए। अब बारीक कटे हुए प्याज डालकर आप अगर खाते हैं तो बारीक धनिया पत्ती प्याज अगर खाते हैं तो वो डाल लीजिए, हरी मिर्ची डाल लीजिए, और इसका एक थोड़ा सा डो जैसा, मतलब आटे जैसा तैयार
1: हाँ,
0: कर
1: मतलब
0: लीजिए।
1: ये एक साथ में इकट्ठा हो जाए।
0: हाँ, टिकिया का, टिकिया जैसा बनना है, और बस आप टिकिया का उसका शेप लेकर के झटपट से आप चाहें तो फ्राई कर लीजिए या शैलो फ्राई कीजिए, और देखिए बन गई आपकी बढ़िया सी टिकिया।
1: और बस हमारी सखियां ये टिकिया बनाकर खाएंगी, क्योंकि समय हो चला है पूरा। हम लेते हैं इजाजत, दीजिए चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी को इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत।
1: हमारे सामने है एक बहुत बेहतरीन कलाकार जिनके हाथ में सब कुछ है, सारी रेखाएं हैं कला की, और उन्हीं रेखाओं में से रेखाएं चुनने की बारी आई तो हम भी थोड़ा परेशान हो गए किस विषय पे बात की जाए। तो हम आपसे ही पूछ लेते हैं पंकज जी कि आप क्या ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वॉइस ओवर डायरेक्टर भी हैं, और आपकी आवाज में भी बड़ा दम है जो अभी लोग सुनने वाले हैं। इसलिए विविध भारती में आपका स्वागत करते हैं बहुत हृदय से, बहुत प्यार से, और पहला प्रश्न हम आपसे पूछ चुके हैं, स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विविध भारती के सारे दर्शकों को और विविध भारती से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया, याद किया और कहा कि हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे
1: जी।
2: और जैसे आपने कहा कि मैं एक्टर भी हूं, सिंगर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं, प्रोड्यूसर भी हूं, वॉइस ओवर डायरेक्टर हाँ
1: जी,
2: एज ए डबिंग डायरेक्टर मैंने तकरीबन 18-20 फिल्में की हैं और अलग अलग विषय पे जो की हैं। तो आपने मुझे पूछा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट इसमें से पसंद है, तो मुझे सारे ही पसंद है। जब जब जो मेरे पास सामने जो प्रोजेक्ट होता है
1: जी,
2: मैं उसको बहुत आनंद से, बहुत अंतरात्मा से करता हूँ
1: जी,
2: बहुत सिंसेरिटी से करता हूँ, ताकि इसमें मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी जो भी है
1: जी,
2: वट एवर आई एम कैपेबल ऑफ, मैं उसको अच्छी तरह से कोशिश करके बहुत अच्छी तरह उसको प्रस्तुत करूं।
1: तो चलिए हम इसको और सरल बना देते हैं पंकज जी। छोटे वाले पंकज ने जो बहुत छोटा सा था उम्र में, वहां पे उस पंकज ने सबसे पहले क्या किया था?
2: ये बात जाती है, बहुत पीछे जाती है। When I was in कश्मीर
1: जी,
2: असल में मैं कश्मीरी पंडित हूँ, पंकज रैना, रैना से नाम तो समझ ही आया होगा आपको कि हम कश्मीरी पंडित हैं
1: जी।
2: कश्मीर में रहते थे, जवाहर नगर हमारा अपना घर था, और हमारा जो घर था वो एक कल्चरल हब जैसा था।
1: अच्छा,
2: ये पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है
1: जी,
2: पंडित महेंद्र नाथ रैना, जो आत्मा से अंदर से बहुत अच्छे लेखक और शायर थे
1: जी।
2: वैसे वो जे एंड के असेंबली में काम करते थे, कार्यरत थे, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा थी वो एक कवि की थी और लेखक की थी
1: जी।
2: तो उनकी वजह से जो मेरे जो बाकी भाई बहन थे वो भी कला क्षेत्र से जुड़ गए थे।
1: अच्छा,
2: पिताजी वैसे बहुत सारे पेपर्स के भी एडिटर रहे हैं जो हमारे जे एंड के में हुआ करते थे। लेकिन हमारे घर में जैसे मेरे एक भाई, बड़े भाई थे भुवनेश, वो पेंटर स्कल्प्टर थे, पेंटिंग में स्कल्पचर का काम था उनका, उनको स्कल्पचर और पेंटिंग का शौक था। तो हमारा नीचे एक कमरा था जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला डेडिकेटेड था, उसमें पत्थर पे भी स्कल्पचर बनते थे, लकड़ी पे भी बनते थे, ऑयल पेंट भी होता था, ये सब चीज़। हम बहुत छोटे छोटे थे।
1: अच्छा।
2: तो हमारे बड़े भाई थे, उनसे बड़े भाई थे जो फिजिक्स के डीन प्रोफेसर हुए हैं, वो मेरे पहले गुरु थे, जो प्रोफेसर तेज रैना, जिन्होंने कभी किसी से संगीत सीखा नहीं, जिन्होंने उस तरह को कुछ किया नहीं, लेकिन मैं जब 10 साल की उम्र में था तो उन्होंने मुझे पहली एक गजल सिखाई थी इसकी, फैज अहमद फैज की, तो मैंने वो बच्चों के कंपटीशन में गा के मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। तो दूरदर्शन नया नया आया था 1972 में कश्मीर में, तो फिर वहां से मैं बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाने लगा।
1: मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, आपको फैज अहमद फैज की एक गजल गाने पर फर्स्ट प्राइज मिला था, तो हमारा अधिकार बनता है कि वो गजल हम भी सुने जिस पे आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, और वो हमारे श्रोताओं का अधिकार तो बनता है, तो अगर आप कुछ गुनगुना दे उसके कुछ हिस्से तो
2: मेरी, लेकिन बच्चों जैसी आवाज कैसे आएगी?
1: अब इस उम्र की उसी आवाज में सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं।
2: दोनों जहान तेरी

0: बात है।
1: के दोनों जहान तेरी।
0: आ खूबसूरत आवाज है, इतना तो विश्वास है कि हमारे श्रोता तालियां जरूर बजा रहे होंगे सुनते सुनते। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वो जो बच्चा है वो रेडियो पे जा रहा है ना गाने के लिए या।
1: टेलीविजन पे और रेडियो पे। फिर टेलीविजन में बच्चों का प्रोग्राम होता था
0: जी
1: 1972 में, तो मैं वहां जाने लगा। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं छोटा सा था, तो मैं गाता भी था। उससे पहले भी मैंने एक, जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, तो उनका एक एनुअल फंक्शन में मैंने ऑन द स्पॉट कहा था कि मैं भी गाऊंगा। उनका वो 15 अगस्त का प्रोग्राम था,
0: जी
1: तो मैंने वो बच्चों की आवाज में ही 8 साल की उम्र में ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। और मैंने कहा था मैं भी गाऊं, जिद की मैंने,
0: जी जी
1: और चारों तरफ लोग खड़े थे। बहुत पुरानी बात है, इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 70 की
0: हाँ
1: बात कर रहा हूं मैं। और लोग उस वक्त, उस तरह का स्टेडियम बना भी नहीं था, तो उस तरह के लोग आसपास खड़े थे, सब सबकी आंखों में आंसू थे। मैं, मेरी आवाज एकदम लता जी जैसी थी, बच्चों की आवाज थी, ऐ मेरे
0: हाँ
1: वतन के लोगों गा रहा था। तो यहां से एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना, वो समझ आने लगा कि हाँ, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा।
0: जी
1: फिर वो होते होते फिर वो बच्चों का प्रोग्राम आ गया दूरदर्शन का, फिर रेडियो में सुनने लगे। आकाशवाणी और विविध भारती का मेरे
0: जी
1: जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बचपन से, जो कि तब तो टेलीविजन था नहीं, नया नया आया था, घर में एक रेडियो होता था, चाहे मर्फी का या फिलिप्स का, लेकिन वो तार से जुड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी, वो चलता था, और गीत और तरह तरह के प्रोग्राम आते रहते थे, हम सब सुनते थे।
0: जी
1: भाषा उच्चारण सीखने में तो काफी योगदान रहा है विविध भारती का और आकाशवाणी का, तो हम इनके हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं, हम अब भी रहते हैं। आज भी बहुत सौभाग्य है कि आकाशवाणी में आके हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं आकाशवाणी और विविध भारती के बारे में।
0: जी
1: तो इनका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में। जबकि कहते हैं कि देखिए, हर प्रांत, हर राज्य का एक अलग भाषा होती है, हर राज्य की एक अलग डायलेक्ट होता है, हम जाते हैं तो वो दिखता है जब कोई बात करता है। लेकिन इन सब चीजों पे हमने जब वर्क किया, तो हमें, क्योंकि अगर आप कश्मीरी, नॉर्मल एक कश्मीरी से बात करेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कश्मीर
0: कश्मीर का
1: का
0: है।
1: रहने
0: जी
1: वाला है,
0: जी
1: या ये चेन्नई का रहने वाला है,
0: जी
1: या ये कलकत्ता का रहने वाला है।
0: जी
1: हमने लेकिन भाषा और उच्चारण पे बहुत काम किया कि ताकि हमें एक नॉर्मल, एक जनरलाइज्ड, एक हमारी भाषा हो, ताकि हम एक, जिसको देवनागरी हिंदी में जब बात करें, तो लगे कि हिंदी बोल रहे हैं, कश्मीरी हिंदी नहीं बोल रहे हैं,
0: जी
1: बंगाली हिंदी नहीं बोल रहे हैं।
0: जी
1: तो इसमें हमारा आकाशवाणी और विविध भारती का बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान रहा है, मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ।
0: विविध भारती के और आकाशवाणी के पुराने उद्घोषक जो रहे हैं उनकी बात बहुत निराली है और उनसे सीखकर हम भी
1: हमारे
0: बने हैं।
1: शिक्षक
0: और
1: रहे हैं,
0: जी
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, तो उन सबको हम सविनय प्रणाम करते हैं और
1: बिल्कुल
0: धन्यवाद
1: करते हैं,
0: देते हैं कि ये बात सुनने को मिल रही है और हमें भी बहुत अच्छा लग
1: बिल्कुल।
0: रहा है।
1: मैं हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, और मैं आज भी आकाशवाणी और विविध भारती का एक, मतलब, ये श्रोता हूं। मैं
0: जी
1: सुनता हूं जब भी ड्राइव करते करते कहीं जाते हैं लंबे सफर में, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं 102.8
0: एट जी जी
1: सुनूं,
0: जी
1: या एक और है 107. जैसे जैसे आकाश
0: आप
1: गोल्ड
0: जहां
1: है,
0: जहां शहर
1: हाँ
0: बदलेंगे हमारे नंबर्स
1: जी
0: बदल
1: जी
0: जाते हैं
1: नंबर्स
0: कि
1: बदल
0: आपको
1: जाते
0: अलग
1: हैं,
0: अलग शहर में अलग अलग दिखाई
1: लेकिन
0: देता
1: मुझे
0: है।
1: इनके ही प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है, बिकॉज
0: जी
1: एक तो मर्यादा में बोलते हैं, भाषा रेस्पेक्टेबल भाषा में बात करते हैं,
0: जी
1: और कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सुंदर एकदम, मतलब, प्रसारण होता है।
0: जी
1: मैं माफी चाहता हूं उस बात के लिए, लेकिन मैं FM सुनता नहीं आजकल के, क्योंकि वहां ना उच्चारण है, ना भाषा है, ना कोई उसका अंदाज है। लेकिन आकाशवाणी ने और विविध भारती ने हमेशा से वो कंटिन्यू रखा है कि किस तरह से एक भाषा को एक रेस्पेक्टेबल वे में प्रस्तुत किया जाए।
0: जी हम हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास को संभालने का विविध भारती प्रयास कर रहा है और आप सब लोगों जैसे लोगों का साथ रहता है तो
1: हम
0: अच्छा
1: हमेशा
0: चलता
1: साथ
0: जाता है।
1: हैं, हम
0: जी
1: हमेशा साथ।
0: तो अब हम वापस आपके
1: मेरे
0: जीवन
1: बचपन
0: पे
1: में
0: आ
1: चलते
0: जाते
1: हैं। फिर
0: हैं।
1: मेरे एक ब्रदर है चंद्रशेखर,
0: जी
1: वो

0: प्रयास कर रहा है और आप सब लोगों जैसे लोगों का साथ रहता है तो अच्छा
1: हम
0: चलता
1: हमेशा
0: जाता
1: साथ
0: है।
1: हैं, हम हमेशा साथ।
0: तो अब हम वापस आपके जीवन पे आ जाते हैं।
1: फिर मेरे एक ब्रदर है चंद्रशेखर, वो हमारे थिएटर भी हमारे यहाँ होता था, हमारे कश्मीर में एक हॉल होता था जहाँ एक ही हॉल था, टैगोर हॉल, अब भी है वो, जहाँ पे प्लेज होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे। तो हमारे घर में चूंकि इस तरह का वातावरण था ही, तो हम बच्चों छोटे थे, हम भी फॉलो अप करते थे, तो इस तरह से ये क्रिएट हुआ
0: जी।
1: घर से। हमारे उस वक्त चीजें ले जाते थे जो सेट डेकोरेशन करने
0: सेट लगाने के लिए,
1: लगाने के लिए। और आकाशवाणी का भी, विविध भारती का भी योगदान था, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर का भी बहुत योगदान था। वो वक्त वक्त पे बड़े बड़े पंडित और उस्ताद लोगों को वहाँ, उनके प्रोग्राम्स होते थे, जैसे शिव कुमार शर्मा जी का, उनके हरिप्रसाद जी का, और बहुत अच्छे अच्छे परवीन सुल्ताना, ये बड़े बड़े जितने भी दिग्गज संगीत के जो मारतंड हुए हैं, उन लोगों का प्रोग्राम आकाशवाणी प्रस्तुत करवाती थी। और कभी आकाशवाणी में होता था, कभी हॉल में होता था, तो हम लोग देखते जाते थे, क्योंकि हमें बड़ा शौक था, हम लोग इस तरफ इंक्लाइंड थे, झुकाव था हमारा
0: जी।
1: तो हमने वहां से ही शुरुआत की है, वहीं से शुरुआत हुई है, उस तरह के ही वहां से असर पड़ा है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर मैं और मेरी बहन प्रेरणा, हम लोग अपना म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स था जे एंड के अकेडमी का, वहां जाके हमने सारे गामा सीखना शुरू किया, छोटे छोटे थे तब। तो फिर हमें थिएटर में उतना मिलता नहीं था मौका, लेकिन गीत संगीत की तरफ पूरा ध्यान जाता था। फिर धीरे धीरे वहां थिएटर करना शुरू किया हमारे, क्योंकि घर में ही था। जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार, इतने बड़े बड़े जिन्होंने नाम किया बाद में, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में भी थे कश्मीर में, और उनकी वजह से हमें बड़ा आनंद होता था कि इन्होंने बॉम्बे जाकर और दिल्ली जाकर इतना नाम कमाया, इतनी ख्याति पाई। तो देखा जाए तो बचपन से ही इसकी नींव पड़ी थी जो आज तक चली जा रही है। नाउ आई एम ए सीनियर सिटीजन, इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम आई हैव बीन विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज।
0: ये जो बीज सही पड़ा था, ये बीज आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक होता है ना कि अभी तक तो आप सीख रहे हो या मजाक मस्ती में कर रहे हो या शौक के लिए कर रहे हो, प्रोफेशनली या कहा जाए जैसा शायद पूछा भी जाता है सामान्यतया, ये हालांकि मजाक का विषय लिया जाता है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गायक हूं, तो उससे उसका होने वाला ससुर पूछता है पर खाने के लिए क्या तो इसी विषय के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको अपने दाना पानी का विषय यानी अपने प्रोफेशन का विषय कब बनाया और कैसे बनाया?
1: वो थोड़ा बाद में बनाना पड़ा, बिकॉज जब मैं बहुत ही अर्ली एज से, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में जाता था, फिर हमारे रेडियो कश्मीर में युववाणी की स्थापना हुई
0: जी।
1: और युववाणी में जब हम टीनेजर थे, 15-16-17 साल के ही थे, तो तब हमें वहां पे हमें मौका मिला कि हम प्रसारण कैसे करें, उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया सिखाया। तो फिर वो शामे गजल और आपकी फरमाइश, इस तरह के प्रोग्राम हम युवानी में प्रस्तुत करने लग गए।
0: अच्छा।
1: फिर हमारे वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे प्राण किशोर कौल साहब, तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम आओ, तुम ड्रामा का भी ऑडिशन दो
0: जी।
1: मैं प्लेज करते रहता हूँ, रेडियो प्लेज जो होते थे, तो हमारा फिर ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ रेडियो का, तो उसमें हम अच्छी ग्रेड में हुए, तो फिर हम उसमें प्लेज करते थे। तो वहां से कुछ न कुछ, शुरू शुरू में कभी ₹15 का चेक मिलता था, फिर बाद में धीरे धीरे ₹50 का हुआ, ऐसी शुरुआत हुई। तो यहाँ से तो आना शुरू हुआ ही था एकदम, कोई ना कुछ। लेकिन पिताजी की वजह से हमें इस तरह का वो नहीं था, उनका हम आज भी धन्यवाद करते हैं, बहुत करते हैं, कि उन्होंने कभी हमें सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं
0: जी,
1: कि उन्होंने हमें खेलने दिया जैसे हम खेलना चाहते थे
0: जी।
1: तो उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा, उन्होंने सिखाया कि हाँ ये अब चेक मिला है तो कहाँ रखे, ₹15 का चेक मिला है, छोटे छोटे थे, तो पिताजी अपने साथ बैंक ले गए, उन्होंने बोला कि ये अकाउंट खुलवाया तो इसमें चेक डाल दो। फिर जब वो पैसे जमा होते थे तो हम कभी वो हमारे लिए कभी शूज लेके आते थे, जाते थे, कभी वो लाते थे, उस तरह का उन्होंने सिखाया शुरू से बचपन से कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिक जब से कुछ पैसे कमाए हैं तो उनको कैसा उपयोग होना चाहिए। फिर होते होते मैं घर से निकल पड़ा था, एक्चुअली सच बताएं तो
0: निकल पड़े थे, मतलब
1: ऐसा था
0: भाग
1: कि मैं,
0: पड़े थे या निकल पड़े थे?
1: नहीं, घर वालों की सहमति से ही आया था, ऐसा नहीं भाग के नहीं आया
0: जी।
1: तो मैं 1980 में दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया, और मैं थिएटर भी करता था और मैं पंडित अमरनाथ जी से म्यूजिक भी सीख रहा था। और वो भारतीय कला केंद्र दिल्ली मंडी हाउस में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो श्री राम लोगों का है, तो वहां हमने म्यूजिक क्लास में मुझे एडमिशन मिला अमरनाथ जी के यहाँ, तो पीछे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी थी, और बाकी टाइम सब हर वक्त क्लास नहीं होता था, लेकिन बाकी टाइम 1-2 घंटे निकाल के मैं और हम मेरे कुछ साथी थे उनके साथ हम थिएटर वगैरह, प्लेज पढ़ना, प्लेज की

0: रीडिंग करना और प्ले करना। तो वहाँ पे श्रीराम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम,
1: जी
0: बहुत सारे ऑडिटोरियम मंडी हाउस में थे। तो वहाँ हम कभी कभी फिर नाटक करते थे, और कभी कभी यहाँ, छोटे ही थे, आई वॉज आई थिंक ऑलमोस्ट वो टीनेज की एंड ही था मेरा कुछ ऐसा, जब मैं दिल्ली आ गया
1: एटीन
0: था।
1: ट्वेंटी ईयर्स का एज
0: हाँ,
1: होगा, अठारह
0: उन्नीस
1: बीस
0: बीस साल
1: साल।
0: की
1: हाँ
0: उम्र थी।
1: हाँ
0: तो वहाँ मैं 5 साल दिल्ली में रहा। वहाँ पे उस दौरान फिर मैंने कुछ वहाँ भी रेडियो में मैंने म्यूजिक में ऑडिशन दिया, तो मैं मुझे पास हुआ था दिल्ली रेडियो से। मैं
1: जी,
0: सिंगिंग में बी हाई ग्रेड में
1: मतलब
0: पास
1: रेडियो
0: हुआ
1: का साथ छोड़ा
0: रेडियो मेरे
1: नहीं
0: साथ में हमेशा रहा है।
1: जी
0: और मेरी बहन का तो ये था कि हमारे एग्जाम्स होते थे ना,
1: हाँ,
0: तो उसका रेडियो चलता रहता था, गीत भी चलते रहते थे, वो
1: और
0: प्रिपेयर भी
1: पढ़ते भी
0: करती रहती
1: रहते थे।
0: थी।
1: जी जी जी
0: मुझसे ऐसा नहीं होता था, उससे हो जाता
1: जी लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती
0: था
1: हैं
0: तो मेरी ट्रेनिंग ही इस तरह की रही है,
1: जी
0: लेकिन कभी उस तरह की वो रही नहीं डेस्परेशन कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं नौकरी करनी है, ऐसा नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग ऐसी होती रही, उसके साथ में इंडलजेंस वैसी होती रही, जैसे कि जैसे म्यूजिक भी था, थिएटर भी था, और अपनी भाषा पे और उच्चारण पे तो शुरू से ही ध्यान देते थे, तो आवाज़ का भी कुछ एक समझ आया कि आवाज़ को कैसे इस्तेमाल करना है।
1: जी
0: कुछ वहाँ दिल्ली में प्रोग्राम करने का मौका मिलता, तो एंकरिंग करने का मौका मिला,
1: जी
0: तो इस तरह की सारी चीज़ें होती रही अपने आप ही, सच बताएं तो।
1: मतलब आपके लिए अपने आप ही सब हो रहा था, और उसी अपने आप में आपने ना आवाज की बात के बारे में कई बार बोला,
0: जी
1: उच्चारण के बारे में कई बार बोला, तो मैं आपके जीवन की जो परिधि पे हम चल रहे थे उस परिधि पे एक मिनट के लिए रुक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप वॉइस ओवर डायरेक्टर हैं, हमारे श्रोताओं में कई सारे बच्चे हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, शायद उनको मॉड्यूलेशन भी आता है खुद से अपने आप से, और वो ऐसा सोशल मीडिया पे कई चीज़ें करके भी डालते होंगे, पर वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएं, तो उसके लिए वो क्या करें? अगर आप थोड़ा सा बीच में कुछ सिखा दें फिर हम आपकी यात्रा पे वापस आ जाएंगे।
0: मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई वॉइस ओवर या डबिंग करना चाहता हो या
1: जी
0: वॉइस एक्टर बनना चाहता हो,
1: जी
0: उसे सबसे पहले तो अपनी भाषा पे और उच्चारण, जो मैं बार बार कह रहा हूँ,
1: जी
0: क्योंकि ये आजकल सबसे ज़्यादा कमी अगर मुझे कहीं महसूस होती है, कहीं ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट सुनने में, तो ये बहुत तकलीफ होती है
1: जी
0: कि लोग, उनका भी शायद कितना दोष है, उनके शिक्षक वैसे हैं क्या, ये मुझे
1: जी
0: मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, उच्चारण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, वॉइस क्वालिटी पे देख, उनकी वॉइस। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज में बेस कैसे आएगा,
1: हाँ,
0: ऐसा नहीं
1: ये
0: हो। मुझे
1: प्रश्न
0: कई लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी आवाज ऐसे कैसी होगी,
1: जी
0: आपके जैसे हमारी आवाज कैसे होगी।
1: हाँ
0: लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की एक आवाज, एक अपनी क्वालिटेटिव आवाज, वो नेचर से मिलती है।
1: जी
0: उसमें थोड़ा सा हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं अगर हम उसका थोड़ा रियाज करें, जैसे हम खरज का रियाज करें मॉर्निंग में उठ के, वो संगीत
1: खरज का
0: के
1: रियाज
0: जैसे
1: कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा?
0: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है,
1: हाँ
0: मंद सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों ऑक्टेव्स जो हैं उसमें मध्य सप्तक से आपको मॉर्निंग में, चूंकि आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़ी सी बैठी होती है,
1: बेस
0: मतलब
1: काफी
0: बेस
1: अच्छा
0: मांगती है,
1: होता
0: तो
1: है।
0: उसमें आप
1: हाँ,
0: नीचे की तरफ
1: सा
0: सा
1: के
0: नी
1: बाद
0: हा
1: नी।
0: नीचे
1: जी
0: आए
1: जी
0: आ नीचे की तरफ जितना जाएंगे,
1: जी
0: और कहते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर छू सकते हैं।
1: अच्छा
0: हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि वेन यू, आप जब खरज का रियाज करते हैं तो तार सप्तक में आपकी आवाज और भी आगे
1: खुलती
0: जब
1: है
0: खुलती है।
1: जी
0: तो इस तरह का मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खरज का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें या
1: जी
0: आ करके ही कर सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री की अपनी अपनी एक वॉइस क्वालिटी है जो नेचुरली होती है, तो उसको ही कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको ढूंढना है। अगर आपका उच्चारण सही है, अगर आपकी आवाज अच्छी है, तो आपको उच्चारण पे पढ़ के, आपको पढ़ाई बहुत करनी है,
1: जी
0: किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आपको, और थोड़ा सा लाउडली पढ़नी चाहिए। जैसे आप अकेले अगर हो तो किताबें पढ़ना चाहिए उसको,
1: किस तरह की किताबें पढ़नी
0: कोई भी,
1: चाहिए?
0: जैसे उपन्यास हो, कोई भी हो,
1: अच्छा
0: जिसमें अगर आपको, क्योंकि भाव की भी जरूरत होती है,
1: जी
0: आवाज के साथ में उच्चारण के साथ में भाव भी चाहिए,
1: जी
0: तभी आप अच्छे आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं।
1: जी
0: जब आपको मालूम, क्योंकि मेरे संगीत के योगदान ने मुझे उसमें एक अलग तरह का, एक मेरे जीवन में योगदान किया है, कि क्योंकि मैंने बेसिकली थोड़ा म्यूजिक भी सीखा है, बहुत ज्यादा मैं उस्तादी म्यूजिक नहीं सीखा है, मैंने
1: जी
0: बेसिक म्यूजिक सीखा है, जो
1: जी
0: मैंने संगीत सीखा है उस वजह से मेरे डायलॉग डिलीवरी में, या मैं जब डबिंग करवाता हूं किसी से, तो मैं उनको वो गाइड कर सकता हूं कि इस सेंटेंस का भाव ऐसा है और किस शब्द को आपको कितना पुश करना है, कितना सॉफ्ट करना है, और उसको कैसे साथ में लेके

0: चलना है,
1: जी
0: तो वो मैं इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मेरा संगीत से मेरा जुड़ाव है, संगीत की मेरी सोल है,
1: जी
0: मेरी म्यूजिक की सोल। मुझे वो जो सुरों की जान पहचान की वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं
1: जी
0: वाइल एक्टिंग या रेडियो एक्टिंग या फिल्म की एक्टिंग या टेलीविजन की एक्टिंग करते, तो वो भाव उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक है।
1: ठीक है
0: तभी तो आपके सेंटेंस में वो एक वो कन्वे होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं।
1: जी
0: तो उसमें उच्चारण के साथ साथ, वॉइस के साथ साथ आपको भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
1: जी
0: और जैसे आजकल तो बहुत सारे एपरेटस हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है, उसमें कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो एक छोटा पैसेज रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको सुन लिया। तो अगर आप जेन्युइनली एनालिटिकली अपने उसको जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं त्रुटि है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप उसको दोबारा से कर सकते हैं,
1: खुद खुद के गुरु भी बन सकते हैं
0: खुद क्या। और वैसे भी बहुत सारी कुछ लोगों की क्लासेस चलती हैं जो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस एक्टिंग, ये सब चीज़ें और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाते हैं, काफ़ी लोग इंस्टीट्यूशन हैं, वो वहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उसका मंत्र जो है कुछ करने के लिए दीवानापन और दीवानगी होनी चाहिए। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है
1: जी,
0: इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: जी तो वो पागलपन चाहिए, अगर पागलपन है तो
0: हाँ,
1: आप
0: दीवानापन
1: सकते हैं।
0: चाहिए।
1: और कुछ शिक्षाएं तो इसमें दी गई हैं, तो आप उन शिक्षाओं का भी ध्यान
0: जी
1: रखें,
0: जी बिल्कुल, बिना गुरु के ज्ञान तो मिलता
1: जी,
0: नहीं
1: जी,
0: है। और
1: जी,
0: गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी को गुरु कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनसे सीखूं,
1: जी
0: तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही।
1: जी
0: तो हम बचपन में गए ना वापस?
1: नहीं, अभी बचपन में नहीं जाते एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं और वापस आके जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी और आपने कहा कि संगीत ने आपका बहुत साथ दिया,
0: जी जी
1: आपने बहुत अच्छे से दिल्ली में सीखा भी संगीत, तो अगर आप हमें कोई गीत गाकर सुना दें ताकि वही गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना पाए।
0: ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपका दिल चाहे तो मतलब
1: नहीं, स्वागत है, स्वीकार है जी,
0: मैं चूंकि संगीत से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरा इट हैज बीन माय फ्रेंड ऑलवेज, मेरा साथी हमेशा संगीत रहा है, अकेलेपन का भी बहुत साथी रहा है
1: जी।
0: बीच में तो काफी साल मैं एक्टिंग करता रहा, 1987 में पहली बार मैंने बॉम्बे में सीरियल किया था। एक्टिंग करते करते करते मैं डबिंग करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, फिर डबिंग डायरेक्टर बना करते करते, उसके बारे में बाद में तो बात करूंगा आपसे। तो उसके साथ साथ मैं अभी एक प्रोग्राम करने वाला हूं, मैं एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, हमारे बहुत बड़े आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं धर्म जी, धर्मेंद्र
1: जी,
0: उनको ट्रिब्यूट देने का मेरा बड़ा दिल किया, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, प्यार ही प्यार बेशुमार टाइटल रखा है मैंने प्रोग्राम का। और आई थिंक अगले अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास मैं सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में वो शो कर रहा हूँ, उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद है, धर्म जी को मैंने डेडिकेट किया, उसमें गाने तो बहुत सारे हैं, हमने तकरीबन बहुत सारी लिस्ट बनाई है, उसमें एक गाना है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा है कि दो लाइनें सुना दीजिए।

0: ये खूबसूरत गीत आपने गाया और हमने हमारे श्रोताओं को सुनाया, मतलब हमारे श्रोताओं की भूख बढ़ गई है कि अब जो भी गीत आप चुनेंगे उस गीत को आप गाकर सुनाएंगे और फिर हम आगे सुना देंगे।
1: वाह वाह, मेरा
0: ये
1: सौभाग्य,
0: है
1: मेरा
0: ना, ये
1: सौभाग्य।
0: होता रहेगा। पर अब आपने बताया कि 1987 में आप मुंबई आए थे और पहला
1: 1986 में आया था,
0: 1986 में।
1: इनफैक्ट जनवरी 20-40 साल हो गए तकरीबन बंबई में।
0: ऐसा बताने से उम्र पता चल जाती है,
1: मुझे कोई गम नहीं है उसका।
0: पर आप 1986 में मुंबई आए और यहाँ पर आके आपने अपना एक नया कदम, एक नया पायदान चढ़ा, एक नई सीढ़ी चढ़ी यहाँ से आपने। तो अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें थोड़ा।
1: ऐसा सुनने में आया था कि बॉम्बे में बिना गॉडफादर के कुछ होता नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो ये बात एक तरह से वाजिब भी है, अच्छी भी है, सही भी है। लेकिन अब जब मेरा कोई था ही नहीं बॉम्बे में, तो मुझे तो खुद ही अपनी पगडंडी बनानी थी, अपने रास्ते खुद बनाने थे। तो मैं उससे पहले भी कई बार, एक बार ऐसे छुट्टियां होती थी मेरे कॉलेज में, तो वो सब दिल्ली में भाग भाग के आता था, क्योंकि बम्बई अपनी तरफ खींचता था मुझे हमेशा शुरू से। फिर फाइनली मुझे बॉम्बे आना ही पड़ा। मुझे बहुत लोगों ने वहाँ दिल्ली में कहा कि आप दिल्ली में क्यों रहते हैं, आप बॉम्बे जाना चाहिए, आपको बॉम्बे में इतना अच्छा, आपके टैलेंट का विकास होगा, आपको बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे। तो मैं बॉम्बे आया, तो उसके बाद फिर मैंने इधर उधर कुछ, मैंने एक फोटो सेशन करवाया था। उस वक्त के बेस्ट फोटोग्राफर जो थे, स्टिल फोटोग्राफर, उनका नाम था गौतम राजाध्यक्ष।
0: जी जी
1: अब वो
0: जी
1: है
0: जी
1: नहीं,
0: जी जी
1: लेकिन मैंने बड़ी बहुत जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत करी, तो मैंने उनका पता ढूंढा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फोटो सेशन कराना है तो सिर्फ आपसे करवाना है।
0: बड़े महंगे हुआ करते थे उस समय।
1: लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे थे
0: जी
1: वो, बहुत ही
0: बिल्कुल।
1: अच्छे। एंड ही वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, बहुत बड़े
0: यस
1: बड़े लोगों का करते थे। एंड ही अग्रीड टू डू माई फोटो सेशन फॉर दैट टाइम। एंड तो फिर उनके घर पे उन्होंने मुझे, बाबुलनाथ मंदिर के पास में उनका घर था, ह्यूज रोड पे, तो वहां उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बोला यू कम ऑन सैटरडे, वी विल शूट। तो उन्होंने खट खट खट खट मेरी तस्वीरें लेते गए वो, और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने दी। तो फिर मेरे पास, जब वो उस जमाना वो था, तो कुछ फोटोग्राफ्स दी थी, तो मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने
0: अप्लाई
1: वो
0: कर दिया।
1: दिया उनका अपना पीछे। अच्छा, उस वक्त ऐसा जमाना था कि फोन भी नहीं होता था सबके पास में, सबके मतलब केयर ऑफ नंबर होते थे। मेरे भी एक अंकल रहते थे बांद्रा में, तो पीछे उनका केयर ऑफ नंबर देके हम लोग रखते थे, नाम और केयर ऑफ नंबर। कभी कभी वो फोन करते भी थे और मैसेज मिस भी हो जाते थे। और
0: हाँ
1: मेरी आंटी घर पर रहती थी, तो बोलती थी अरे बेटा किसी का फोन आया था, वो कोई अच्छा सा था, नाम भी अच्छा सा था, कुछ क्या कुछ बताती नहीं, कोई कुछ मैसेज
0: भूल
1: मिलता नहीं
0: गई,
1: था,
0: भूल गई।
1: लेकिन हाँ वो भूल जाती थी। तो इस तरह का भी वक्त देखा है। तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। उस वक्त मुझे एक एड फिल्म मिली थी ब्रूक बॉन्ड की, थ्री रोजेस चाय,
0: अच्छा।
1: आई थिंक दैट वॉज कुछ साउथ के लिए था।
0: हाँ
1: उसमें एक मॉडल थी राधा और मुझे उन्होंने लिया था।

0: ज्योति ठाकुर डायरेक्टर थे उस एड के,
1: जी
0: बहुत बड़े
1: जी जी
0: एड फिल्म मेकर थे ज्योति
1: जी
0: ठाकुर।
1: जी
0: तो उस एड में मुझे काम करने का मौका मिला था, ब्रूक बॉन्ड की थ्री रोजेस चाय। फिर मैंने जिंगल गाया, एक बन फूल आयुर्वेदिक तेल का जिंगल मुझे गाने का मौका मिला। मैं बहुत, मतलब मैं जितनी मुझसे कोशिश खुद से हो सकती थी मैं करता था, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, मुझे कोई लॉन्च करने वाला था नहीं, तो आई हैड टू डू माई ओन थिंग्स। तो आई यूज टू बी इन टच, मैं पृथ्वी थिएटर में अक्सर जाता था, वहां लोगों से मिलना होता था, वहां बहुत लोग मिलते थे। कुछ वो मैंने उस पहले आके इप्टा के साथ में भी एक उनके साथ फंक्शन किया था इप्टा डे का, तभी वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे। इकबाल कुरैशी साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, कुलदीप सिंह जी थे, तो MS सत्यू साहब, ये लोग बहुत पुराने इप्टा के
1: बड़े
0: लोग थे।
1: लोग थे जी।
0: तो इन लोगों के साथ में भी इप्टा डे में भी मैंने गाया भी था, एक्टिंग भी किया था। तो इस तरह से मुझे जितने जितने मुझे जो भी मौका मिलता था मैं कर लेता था।
1: जी
0: आई थिंक आई यूज टू, मुझे लगता है अपने आपको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, शायद रिफाइन कर रहा हूँ। तो इनिशियली वैसे ही काम चलता रहा।
1: जी
0: फिर ये 1987 में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था अधिकार, उसमें मेरा उसमें हुआ था, तो
1: जी
0: मैंने उसमें एक्टिंग की। फिर मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताऊं,
1: जी
0: मैं जो मैंने शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है, मैंने प्यार किया फिल्म की कास्टिंग हो रही थी,
1: हाँ
0: तो मैंने प्यार किया कास्टिंग के लिए मुझे किसी ने मुझे मुझे भेजा था, बोला उनको जरूरत थी उस एक्टर्स की। तो उन्होंने शायद सलमान खान और भाग्यश्री का सिलेक्शन हो चुका था,
1: जी
0: उसमें किरदार था जीवन का,
1: जी
0: उसके लिए मुझे उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया। सूरज जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था, और उस स्क्रीन टेस्ट में सलमान खान भी मौजूद थे और भाग्यश्री भी। वो एक प्रॉपर सीन शूट हुआ राजश्री प्रोडक्शंस की सीढ़ियों में, जहाँ पे वो लिफ्ट है, और वहाँ सीढ़ियों से उतरते मैं एकदम सूटेड बूटेड आता हूँ, और नीचे आके सलमान और भाग्यश्री खड़े हैं, उनके साथ मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उस फिल्म के लिए। वो एक डायलॉग था, वाह सुमन वाह, पराए अजनबी घर में, पराए लोगों से इतना दोस्ताना, ये सब डायलॉग्स थे। तो सलमान आके मेरा कॉलर पकड़ते हैं, सूट पकड़, फाइनली दैट रोल वेंट टू अप टू टू मोनीश बहल। तो वहां से थोड़ा मेरा लगा था कि हाँ सचमुच जो लोग कहते हैं कि गॉडफादर होता है तो गॉडफादर होना चाहिए, लेकिन मेरी कोशिशें एकदम बरकरार थी, चालू थी, मैं हमेशा कोशिशें करता रहा, करते करते करते फिर टेलीविजन में करते रहे, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए। महाराणा प्रताप मेरा एक तरह से लास्ट सीरियल, उसके बाद मैंने फिर टेलीविजन नहीं किया।
1: जी
0: महाराणा प्रताप था, अदालत, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए, कागज की कश्ती,
1: जी
0: तो अब तो नाम भी याद नहीं रहते कितने उस
1: इतने
0: जमाने में,
1: सारे सीरियल्स कर
0: एटीज।
1: लिए, गाने तो याद रहते हैं ना।
0: हाँ
1: अब आपने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी में जो कुछ आता जा रहा है वैसे ही चलता जा रहा है,
0: जी
1: तो एक गाना अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुना दें और उनको एक डेडिकेट कर दें तो बड़ी खुशी होगी श्रोताओं को भी और हमको भी।
0: लेकिन मैं दो ही लाइनें गाऊंगा, उसके बाद आप ओरिजिनल गाना
1: जी
0: चलाइएगा।
1: ओरिजिनल जो गाए हैं वो गा देंगे। आप दो पंक्तियां।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,

0: चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
1: क्या
0: गया।
1: बात है, मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत बहुत खूबसूरती से आपने गाया, और अब सुनते हैं यही गीत।
0: मैं जिंदगी

0: तो ये गाना तो आपने सुना दिया और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमसे बात करने के लिए बुलाया है या गाना गाने के लिए। तो विविध भारती की एक बात है कि यहाँ पर अगर कोई हुनरबाज आता है तो हम सारे हुनर का आनंद उठाते हैं और सब में बांटते हैं। तो ये
1: नहीं,
0: प्रेम
1: मुझे भी
0: संवाद है
1: खुशी है
0: आपका।
1: बिल्कुल आपके साथ जिस तरह हम जो वार्ता कर रहे हैं, जो भी एक चर्चा कर रहे हैं,
0: जी
1: मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मेरे सफर के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें मेरा साथी तो आकाशवाणी विविध भारती है ही, और विविध
0: जी
1: भारती के श्रोताओं को खासकर
0: जी
1: उनको भी तो गीतों का आनंद मिलना चाहिए, उनको भी हमारी
0: जी
1: बातों का आनंद आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब बातों का आनंद चल रहा है तो अभी तक तो आप मुंबई आए, फिर से दूरदर्शन यानी प्रसार भारती ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बहुत सारे नाटकों का, धारावाहिकों का हिस्सा बनने का मौका मिल
1: जी
0: गया।
1: जी
0: अब आपने धारावाहिक कर लिए, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन साथ साथ में कुछ फिल्में भी आपके हाथ में आ रही हैं और आप उन फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, एक
1: जी
0: एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। तो वो जमाना कैसा था, आप काम करते थे तो कैसा लगता था, और आपने किन-किन जगहों पर क्या-क्या किरदार किए, ये बड़े प्यारे से प्रश्न है जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं।
1: असल में शुरुआती दौर में बेसिकली मेरे जहन में ऐसा बैठा था कि एज मैटर्स अ लॉट, कि अभी मुझे अगर लीडिंग कैरेक्टर्स मिल जाएं फिर मुझे वो लीडिंग कैरेक्टर ही चाहिए थे। उसके बदले में मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ भी दी उस वक्त, क्योंकि शायद मेरा गाइड या मेंटोर या गॉडफादर कोई था नहीं, या जो मुझे मतलब समझा सकते थे। मैं खुद ही अपनी एनालाइज करके अपनी डिसीजंस लेता था।
0: जी
1: जैसे मुझे मैंने प्यार किया नहीं मिली तो मेरा दिल थोड़ा सा दुख
0: टूटा
1: गया था।
0: होगा।
1: तो
0: हाँ
1: देवानंद साहब से मैं बहुत मुतासिर था, बहुत उनसे प्रभावित था, तो उनसे मुझे मेरे मित्र ने मिलवाया था, देव साहब से। वो उनके असिस्टेंट, चीफ असिस्टेंट थे, तो देव साहब बहुत प्यार करते थे, मुझे कश्मीरी करके बुलाते थे, ए
0: जी
1: कश्मीरी कम हेयर, कम कम व्हेन हैव यू कम, उस तरह से बहुत स्टाइल से बात
0: आप
1: करते
0: थोड़ा और इसको क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात करते
1: थे
0: समय देव साहब यहाँ पर आए थे, तो देवानंद को सुनना हम चाहते हैं, अगर थोड़ा और सुना
1: मैं
0: दे।
1: उनके अंदाज में बताऊंगा जो उन्होंने मुझे जवाब दिया
0: जी जी
1: था,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि एक फिल्म बन रही थी उस वक्त, अव्वल नंबर,
0: जी
1: देव साहब का ऑफिस खीरा नगर सेंटरकुज में भी था,
0: जी
1: जहां मैं कई बार उनसे मिला भी था,
0: जी
1: उनका आनंद डबिंग भी था,
0: जी
1: और महबूब स्टूडियो में वहां भी एक उनका एक कमरा था जहां पे वो अक्सर बैठते थे बांद्रा में। मुझे उन्होंने सूचना मिली तो मुझे उन्होंने वहां बुलाया था। वो शायद उसके बाद वो कहीं लंदन जाने वाले थे, लेकिन
0: जी
1: उससे पहले उन्होंने अव्वल नंबर फिल्म की उन्होंने बातचीत चल रही थी, तो मुझे भी उन्होंने वहां मिलने के लिए बुलाया, तो मैं वहां गया था। तो मुझे उन्होंने एक रोल ऑफर किया जो एक पुलिस वाले का रोल था,
0: अच्छा
1: तो वो मैंने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, मैंने कहा देव साहब मुझे पुलिस वाले का रोल नहीं करना है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, तो मैं एक पुलिस वाले का रोल करके मतलब
0: उसी
1: इट इज
0: लूप
1: नॉट,
0: में
1: मुझे
0: फंस
1: मुझे हाँ ऐसा लग रहा था।
0: जाएंगे।
1: उस फिल्म में आमिर खान साहब कास्ट हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा रायना आई एम रोल रियली सॉरी आई कॉन्ट गिव यू दैट। मैंने उनको कहा था कि वो जो सेकंड लीड रोल है, जो नेगेटिव रोल था,

0: मैंने कहा था वो मुझे आप दे दीजिए ना इस फिल्म के लिए, तो मुझे वो पुलिस वाला रोल नहीं करना है. कहता आई एम सो सॉरी रायना, आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस आदित्य अबाउट दैट रोल एंड आई हैव टू गिव इट टू हिम, आई कैन नॉट गो बैक ऑन माई प्रॉमिस, सो वी विल यू बेटर डू दैट वन, दैट्स अ गुड रोल ऑफ अ पुलिसमैन. तो मैं बहुत उनका फैन था, बहुत जबरदस्त फैन रहा हूँ उनकी फिल्मों का भी. तो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया, तो मैं फिर थोड़ा सा मेरा मैंने कहा ये पुलिस वाला रोल मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो मैंने कहा कोई बात नहीं देव साहब, मैं आपके साथ में नेक्स्ट फिल्म में ही काम करूंगा. इस फिल्म में पता नहीं ये क्या था, मुझे मालूम नहीं, ये मेरी अब मैं अगर को कहूँ गलतियां थी, लेकिन उस वक्त मुझे सही लगता था. मुझे लगता था कि मेरा करियर का बिगिनिंग है, मेरा कोई है नहीं, मुझे वन ऑफ द लीडिंग रोल करना चाहिए, चाहे नेगेटिव रोल में. नेगेटिवली मेरा बहुत अच्छा एक शौक था कि मैं नेगेटिव रोल्स करूं, मेरी आवाज और मेरी पर्सनालिटी और मेरी आंखों की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव रोल विल सूट मी. तो उन्होंने जब वो कहा कि मुझे आदित्य को प्रॉमिस किया है, तो मेरा फिर दिल थोड़ा सा वो हो गया,
1: फिर से टूट गया,
0: फिर थोड़ा सा वो हो गया कि हाँ, मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ, आपका कोई होना चाहिए. देर हैज टू बी सम सपोर्ट. जैसे आप तो जानती हैं, इतिहास भी जानती हैं कि बहुत सारे लोगों को लॉन्च उनके घर वालों ने ही किया हुआ है. मैं किसी का नाम नहीं ले रहा लेकिन किया तो है ना हमारा, मेरा ऐसा कोई था नहीं. कुछ लोगों को लेकिन भाग्य के अंतर्गत मिला भी है, जिनका कोई गॉडफादर नहीं था उनको भी मिला है
1: जी.
0: लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ. फिर उसके बाद देव साहब से अक्सर मिलना होता था, मुझे कश्मीरी बुलाते थे, ये कश्मीरी. क्योंकि म्यूजिक से भी मेरा रिलेशन था, तो इसलिए मैं म्यूजिक के प्रोग्राम भी करता रहता था, मैं शोज भी करता रहता था.
1: अच्छा.
0: जैसा आपने अंदाजा लगा एक्टिंग, और किशोर कुमार साहब हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं, तो इसलिए जैसे वो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों करते थे. तो ऐसा ही हमारा भी कुछ वैसा ही था
1: जी.
0: लेकिन अब अच्छी अच्छी फिल्में कुछ मैंने वीर ज़ारा, मुझे यश चोपड़ा जी के साथ में काम करने का मौका मिला, और उस कव्वाली में उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो जिसको म्यूजिक का नॉलेज हो. तो मेरे साथ में यश जी के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स की गई फिल्म सिटी में. तो वहाँ उन्होंने मुझे आई वॉज कॉल्ड 10 बजे, मुझे उन्होंने फिल्म सिटी बुलाया था. तो मैं वहाँ ड्राइव करके आया, तो वो भी आए मेरे साथ में. तो यश जी से उन्होंने मुलाकात करवाई, तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा कश्मीर के हो, अच्छा अच्छा म्यूजिक आता है वो ये. तो फिर उन्होंने मुझे वो उस वीर ज़ारा में उन्होंने मुझे कास्ट किया
1: जी.
0: उस कवाली है बहुत अच्छी, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई हुई, आया तेरे दर पे दीवाना, ये सुना सकते
1: थोड़ा सा आप गा के? नहीं, आप थोड़ा, वही मैं कहने आई थी, आप थोड़ा गा के सुना दें तो आगे वो कवाली हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचा देंगे.
0: जो बन

0: तो इस पे मैंने एक्टिंग की है, तो मुझे खुशी तो इस बात की थी कि यश चोपड़ा जी मेरा नाम लेके मुझे एड्रेस करते थे, रहना चलो अब तुम्हारे शॉर्ट्स होने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सरोज जी वहां से कोरियोग्राफ कर रही थी, तो हाँ पंकज जी रहना जी चलिए अब आपकी शॉर्ट्स लेने, तो इस तरह से नहीं ये लोग जब मुझे एड्रेस करते थे आई यूज टू फील रियली गुड अबाउट इट। एंड तो वो कवाली हुई उसमें, उस पर मैंने एक्टिंग की। उसके बाद कई और फिल्में, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शंस की, बंटवारा 1947, जिसका
1: अच्छा
0: नाम पहले लाहौर 1947 था,
1: अच्छा
0: अब उसमें सनी देओल और शबाना जी हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर हैं,
1: जी
0: आमिर खान प्रोड्यूसर है, मेरा भी बहुत अच्छा है उसमें किरदार है।
1: जी
0: सनी के साथ बहुत सारे अच्छे हमारे साथ के रोल्स हैं। वो 14 अगस्त को रिलीज हो रही है, वो देखिएगा। और एक मेरी वेब सीरीज ऑन एयर है जियो हॉट स्टार पे, लुटेरे,
1: अच्छा
0: और तनाव भी एक वेब सीरीज जो सुधीर मिश्रा ने की है, वो हंसल मेहता की प्रोडक्शन है।
1: जी
0: तो इस तरह की इस सेटअप में मेरे कुछ चीजें
1: आपको
0: हैं
1: आने
0: अवेलेबल।
1: वाली फिल्म और सीरीज के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई।
0: बहुत बहुत
1: और
0: शुक्रिया।
1: जी अभी है ना, हमारे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, गढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे सामने जो इतना बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, जिसके पास में संगीत का भी ज्ञान है, आवाज का भी ज्ञान है, जिनके पास दिग्दर्शन का भी ज्ञान है तो निर्देशन का भी ज्ञान है,
0: जी
1: जिनको पता है कि किस तरह से किस अभिनय को करना है, जो नेगेटिव किरदार भी कर सकते हैं, जो मस्ती भरे माहौल में भी जी सकते हैं, इस सब का निचोड़ एक कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए मिल जाए आपकी बातों से, आपके जज्बात से, ताकि हमारे जो श्रोता हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो आपकी उन बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें। तो एक कोई संदेश, एक कोई बात, एक कोई सीख हमारे आगामी पीढ़ी के लिए, या जो श्रोता भी इस राह में संघर्षरत हैं वो भी ये काम कर सके।
0: मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये जो कला क्षेत्र है, इसमें ये तो एक तपस्या की तरह है।
1: जी
0: कला क्षेत्र में जब तक इंसान तपस्या भाव से इस फील्ड में नहीं आता, तो वो भाग्य के द्वारा हो भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन है तो तपस्या।
1: जी
0: आपकी चीजों का सराहा तभी जाएगा जब आप उस तरह का एक्ट करेंगे, उस तरह का गाएंगे, उस तरह का संगीत निर्देशन करेंगे।
1: जी
0: और उन सब चीजों के लिए तो स्टडी और दीवानगी की जरूरत तो होती है। आपको
1: बिल्कुल
0: मीडियम का कितना ज्ञान है, उसमें आपकी कितनी दीवानगी है,
1: जी
0: आपने अपने आप को उसमें कितना
1: ढाला है
0: एनग्रॉस किया हुआ है, उसमें
1: जी
0: ढाला है, तो वो सब तो नए लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए तो ऐसा ही है कि वो दीवानगी की तरह से ही करेंगे, तब जाके होता है, तब
1: जी
0: जाके आपको सराहा जाएगा। अदरवाइज
1: अगर वो
0: भाग
1: हारते हैं, टूटते हैं तो क्या करें?
0: नहीं, हारना टूटना नहीं होता। देखिए अगर आप सोच लेते हैं कि दीवानगी मतलब एक चीज ये करनी है तो करनी ही है,
1: जी
0: अब उसका निष्कर्ष कुछ भी निकले उसको, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक श्लोक है,
1: जी
0: इसका एक्चुअल अर्थ ये है कि मेरा काम है कर्म करना, फल की इच्छा भी नहीं करना।
1: जी
0: तो हमको कर्म लगातार करने हैं, बिकॉज ये एक इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वन जन्म।
1: जी
0: मुझे लगता है जन्म जन्मों की तपस्या के बाद अमिताभ बच्चन बनते हैं,
1: जी
0: जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद इतने बड़े बड़े महान कलाकार बलराज सहनी जैसे होते हैं,
1: जी
0: जो मतलब अपनी छाप छोड़ जाते हैं सदियों तक।
1: जी
0: तो वो एक इट्स नॉट, अगर 13 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को इंडियन कैप मिलेगी तो वो जन्मों जन्मों के कर्म होते हैं।
1: जी
0: तो ऐसा कौन सा चीज उन्होंने सीख लिया कि वो सचिन तेंदुलकर बन गए? लता जी 11 साल की उम्र में उनको
1: जी
0: सक्सेस मतलब गाने का मौका
1: बिल्कुल
0: मिला और वो आगे बढ़ी और सारा जीवन 94-95 की एज तक गाती रही।
1: जी
0: मुझे लगता है कि इट्स ए कर्मा,
1: जी
0: इट इज द डेडिकेशन विच मैटर्स अ लॉट। आप अपने आप को निखार सकते हैं कुछ चीजें

0: बना सकते हैं, कुछ चीजों की त्रुटियों को वो खत्म कर सकते हैं,
1: जी
0: बट बेसिकली वो डेडिकेशन और वो जुनून जब तक नहीं होगा आप में, तो और आपने उसके लिए कुछ वैसा सेक्रीफाइस नहीं किया होगा ना, तो
1: जी
0: होता नहीं है. तो इट हैज टू बी डन विद द डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन.
1: बहुत मेहनत करनी
0: टूटना
1: पड़ेगी,
0: नहीं होता है.
1: टूटना नहीं है जी। तो जब आपका इतना अच्छा विचार हमारे श्रोताओं तक जा रहा है, तो एक कोई बात, एक कोई बड़ा सुंदर सा किस्सा और एक गीत, इतनी अपेक्षा तो हम आपसे कर सकते हैं।
0: चलिए मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल कल्चरल हब जैसा था, पेंटिंग
1: जी
0: भी थी, म्यूजिक भी था, शायरी भी थी, ये सब था.
1: जी
0: मैं जब रफ़ी साहब और किशोर कुमार और मुकेश जी, जो तीन बड़े जो
1: दिग्गज
0: स्टॉलवार्ट्स हैं,
1: है
0: मतलब
1: जी,
0: इतने बड़े दिग्गज
1: जी
0: जो मेल सिंगर्स हुए हैं,
1: जी
0: उन तीनों का मेरे जीवन पे बहुत असर रहा है, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग देयर म्यूजिक. और मैंने उनकी सिंगिंग की स्टाइल्स और अदायगी पे, जो लटके खटके झटके सब सबको मैंने शुरू से मैंने शोध किया, उस पर रिसर्च किया कि उनका क्या क्या कैसे कैसा स्टाइल है. फिर इस दौरान एक बीच में, ये तो गुरु हैं ही हमारे तीनों, और मेहदी हसन साहब भी बहुत अच्छे हैं,
1: जी
0: उनका भी, वो भी हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं. एक और शख्स बीच में आए जिनका नाम था भूपेंद्र. तो
1: जी
0: भूपेंद्र पहले वो भी आकाशवाणी में कार्यरत थे,
1: अच्छा जी
0: दिल्ली रेडियो में काम करते थे ये, और
1: जी
0: 12 स्ट्रिंग एकॉस्टिक गिटार बजाते थे. और
1: अच्छा
0: मदन मोहन जी एक बार दिल्ली गए थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात करके उन्होंने बंबई बुला लिया भूपेंद्र को.
1: अच्छा
0: तो चेतन आनंद साहब की फिल्म थी हकीकत, उसमें भूपेंद्र को उन्होंने एज ए म्यूजिशियन उन्होंने गाया भी है,
1: जी
0: वो हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, उसमें पहला
1: हाँ
0: अंतरा भूपेंद्र ने गाया.
1: अच्छा
0: मैं बड़ा प्रभावित हुआ था भूपेंद्र की आवाज से, बहुत ही अलग तरह की आवाज थी,
1: जी
0: बहुत ही अलग तरह का उनका एक टोनल क्वालिटी थी,
1: जी
0: और एकदम बेस वाली और कमाल की आवाज थी. तो मैं
1: जी
0: पता नहीं क्यों शुरू से, जब छोटा ही था, तो बहुत प्रभावित हुआ उनकी आवाज से, उनके गीत गाता था उन दिनों. दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात
1: क्या
0: दिन,
1: बात है
0: मौसम फिल्म का गाना
1: जी
0: उनका आया, गरौंधा का एक अकेला इस शहर में, इस तरह के कई गाने उनके, भूपेंद्र जी के उन दिनों आते थे. तो मैं सब पिकअप करता था, सब सुनता था, गाता भी था. एक बार बड़ी चाहत हुई, मैं बॉम्बे आया तो मैं भूपेंद्र से मिलूं.
1: जी
0: तो वो उस वक्त पाली हिल बैंड्रा में रहते थे,
1: जी
0: हाईलैंड बिल्डिंग का नाम था.
1: जी
0: तो मैं उनसे मिलने एक बार आ गया, तो मिलने आया तो मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा हूं, तो लिफ्ट खुली तो अंदर से भूपेंद्र बाहर आ रहे हैं. तो
1: जी
0: मैंने कहा मैं तो आपसे ही मिलने आया हूं. बोले कहां से आए? मैं बोला कश्मीर से आया
1: जी
0: हूं. तो बोला चलो चलो चलो ऊपर. फिर
1: मिलने की
0: ऊपर,
1: चाहत ने मिला
0: नहीं
1: दिया,
0: मैं मिलने गया ही था उनसे, तो देखा तो वो अंदर से
1: लिफ्ट में
0: आ,
1: ही
0: लेकिन वो
1: मिले।
0: नीचे ही मिल गए.
1: जी
0: तो फिर उनके साथ ऊपर उनके घर पे गए, तो वहां पे फिर बोला अच्छा बताओ क्या क्या है वो, ये बातें बातें हुई. फिर उन्होंने गिटार उठा ली, तो साथ में हम लोग, मैं और भूपेंद्र जी, मैं उनको सुनाता रहा उनके गाने,
1: जी
0: तो बहुत खुश हुए. बाद में वो बहुत मिलते थे, अक्सर उनसे मिलना होता था. राम लक्ष्मण जी ने से भी, उनसे भी मिलना होता था. राम लक्ष्मण जी ने भी कहा मेरे पास नया भूपेंद्र आ गया है, इस तरह की बातें. तो
1: जी
0: मेरे जीवन में इस तरह के कुछ अच्छे किस्से हैं जो महान महान लोगों से मिले भी हैं.
1: जी
0: तो बॉम्बे जब आए थे शुरू शुरू में, तो हमारी कश्मीरी पंडित एसोसिएशन है यहाँ पे,
1: जी
0: तो उनका फंक्शन था, तो मुझे उन्होंने कहा कि एक गाना सुनाओ जैसे आप कह रही हैं.
1: हाँ
0: तो मैंने पहला गीत यही गाया था,
1: तो
0: जो मैं
1: जरा
0: दो लाइन आपको सुना के.

0: श्री पंकज रैना जी हमारे समक्ष हैं और उनके जीवन की बहुत सारी बातें हमने सुनी, संघर्ष को भी सुना और जीत को भी सुना, बहाव के साथ बहने को भी सुना और जीतने को भी सुना, और जहां नहीं जीते वहां अडिग खड़े रहने को भी सुना। ये सब सुनने के बाद जब पंकज जी हमारे सामने आए हैं, विविध भारती तक आए हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है पंकज जी विविध भारती का।
1: जी
0: इसमें केवल उद्घोषक नहीं है, उद्घोषकों के साथ में बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पीछे से परोक्ष में रहकर बहुत सारा काम करते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी मैं
0: और
1: अंडरस्टैंड करता
0: इन
1: हूँ।
0: सब के साथ बहुत सारे श्रोता हैं जिन्हें हम गिन नहीं
1: वाह
0: सकते। तो उस बड़े से परिवार की तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहां तक आए, इतना साथ दिया, और बहुत आभार व्यक्त करते
1: मैं
0: हैं।
1: अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं यहाँ चला आया, और मुझे अपनी जड़ों से, अपने रूट से, अपने कश्मीर से, अपने दिल्ली की यात्रा से और बम्बई की यात्रा से मुझे कुछ कहने का, मुझे साझा करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत दिल से, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज इस जगह पे मुझे बुला के बहुत ही एकदम आत्मविभोर कर दिया। मैं
0: बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ।
0: धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मैं

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।

0: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता।
2: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए CF1 विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: हाथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा रमकोला भेलकक्ष बड़वारी धुरिया अरचोका बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये सरहरी केवरा करंजवार दरहोरा सेमई खरसोता परमेश्वरपुर सतकोना मेंड्रा प्रेमनगर कैलाशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज वाड्रफनगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये कनकपुर रामपुर लुर्गी महावीरगंज पेंडारी मेंढारी कोटराही मदनपुर धंधापुर उधवा कटरा कुंदी कला रेवतपुर छलकू पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये उदारी असकला दोरना मोहरा जरहा डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर चरईमारा रानी कोम्बो बन कोम्बो सारंगडांड बंदर लोढ़ा आंबा डोडा पानी सोनगेरसा बीजा घाट सारू ढाब देव डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो बाकारूमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 89 है। ये आमगांव गेरसा उदउदा पोटिया आमापाली नागदरहा कुड़ेकेला छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के करतला और कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये जामपानी साजापानी बैगामार जिलगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये बंजारी मड़ई लोधीबहरा मतीन आमाटिकरा नवापारा झुनकीडी जुनवानी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 67 है। ये बंगूरसिया चक्रधरपुर धुमाबहाल पूंजी पथरा तराईमाल नागदरहा पंडरीपानी कमतरा चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदाबाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये अचानकपुर कोठारी चनहाट पकरीद के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा नारी पानी कोनारी बुड़ार जिडार पायलीखंड बेसराझर कोदोमाली तौरेंगा कुकरार ताराझर खोलापारा छिंदौला लूठा पारा फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण

0: कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे CF1 विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। अब लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म नूरी से। शब्द थे जान निसार अख्तर के, संगीत था खयाम का। आइए अब सुनते हैं उमराव जान फिल्म में तलत अजीज को। शब्द हैं शहरयार के, संगीत है खयाम का।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: श्रोताओं लीजिए सुनिए महिला सभा कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। महिला सभा कार्यक्रम में आप अपनी फरमाइश के गीत लिखकर भेज सकते हैं और सुन सकते हैं। आपकी फरमाइश हमें मेल कीजिए, पता है mahilasabha@gmail.com। इस पर महिला सभा का प्रसारण होगा हर मंगलवार और गुरुवार शाम 5:35 से। सूचना समाप्त हुई। अगली सूचना है, प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर गीत शर्मा उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान रोपाई व्यासी में खरपतवार नियंत्रण। इस विषय से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 92 और 3100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का स्टडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 20 अगस्त को शाम 7:30 से रात 8 बजे के बीच आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में साहिल लुधियानवी की रचना। फिल्म का नाम है कभी कभी, संगीत है खयाम का।

फिल्म कभी कभी का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में। साहिल लुधियानवी के शब्द थे, संगीत था खयाम का। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में एक बार फिर साहिल की रचना, और संगीत है खयाम का। फिल्म का नाम है त्रिशूल।

आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। रचना है साहिल लुधियानवी की, संगीत है खयाम का, फिल्म का नाम है शगुन।

फिल्म शगुन के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युवा जगत।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त महक। स्वागत है आपका हमारे आज के युवा जगत कार्यक्रम में। उम्मीद करती हूं कि आप अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, रिश्तों की खूबसूरती इन्हीं छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। साथ बैठकर चाय पीना, किसी त्यौहार पर साथ मिलकर तैयार होना, जब हम ये पल जीते हैं तब हमें ये एहसास नहीं होता, पर ये पल धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत याद बनती जाती हैं। बचपन में माँ के साथ बाजार जाना हो, पापा के साथ साइकिल पर घूमना, भाई बहनों के साथ त्यौहार मनाना या दोस्तों के साथ स्कूल की शरारतें। वक्त आगे बढ़ जाता है, लोग बड़े हो जाते हैं, घर बदल जाते हैं, लेकिन इन बीते हुए पलों तक वापस जाने के लिए हमारे पास एक खूबसूरत रास्ता होता है, और वो रास्ता है तस्वीरों का। तस्वीर में महज कुछ चेहरे नहीं होते, ये हमारे बीते हुए कल की खिड़कियाँ होती हैं। कभी किसी पुराने एल्बम का पन्ना पलटिए, अचानक आपको एक बचपन दिखाई देगा। वही चेहरा, वही मासूमियत, वही लोग। उसमें दिखाई देगा एक पूरा दौर, वो घर, वो लोग, वो कपड़े। तस्वीर वक्त को रोक तो नहीं सकता, लेकिन बीते हुए वक्त की खिड़की को ज़रूर खोल सकता है। तो आज ज़रा अपने मन के किसी पुराने एल्बम का एक पन्ना पलटिए और सुनिए ये खूबसूरत गीत। गीत है फिल्म पगला कहीं का से, आवाज़ है लता मंगेशकर की, धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने और इसे लिखा है हजरत जयपुरी ने। पसंद करने वाले हमारे साथी हैं बागामुड़ा कोमा खान से प्रज्ञा नंदेवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन, पोड़ी भाटा अकलतरा से हैं कैलाश कैवर्त, सावतपुर से हैं ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही सेन, सरगांव से हैं चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष, विनीत कुमार और कृष्टि पटवा, पद्मा टॉकीज नेपानगर से हमारे साथी हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सूरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, रिंगनी से हमारे साथी हैं दिनेश और करुणा वर्मा, लच्छनपुर से हमें फरमाइश भेजी है रामजी साहू, जीवनलाल, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू ने, और खमरिया से हमारे दोस्त हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। आइए सुनते हैं उनकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोताओं, युवा जगत कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लीजिए सुनिए साइबर जागृति अभियान प्रोमो।
7: नमस्कार, छत्तीसगढ़ पुलिस के साइबर जागृति अभियान के संबंध में प्रस्तुत है आम जनों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां। दोस्तों, हमारे जमा धन पर बैंक के 7-8% वार्षिक ब्याज के स्थान पर यदि कोई 50% या 100% ब्याज देकर हमारे धन को 2 गुना कर दे, ऐसी योजना को कौन स्वीकार नहीं करेगा? बस इसी प्रकार के आकर्षक लुभावने प्रलोभन देकर नीति लोगों की पसीने की कमाई ये साइबर अपराधी हड़प रहे हैं। लोगों को रिझाने

0: ये ठग पहले बहुत छोटी रकम लेकर जल्दी ही दो गुना कर वापस कर देते हैं और लोग इसी लालच के जाल में उलझकर अपना सब कुछ गंवा देते हैं। ध्यान रहे, इस प्रकार इतनी जल्दी धन दो गुना कर वापस करने वाला भारत में कोई भी बैंक नहीं है। ये साइबर अपराधियों की काली करतूते हैं, धोखा है। ऐसी गलती कभी ना करें। आवश्यकता पड़ने पर तत्काल डायल 1930 या पुलिस थाने में संपर्क करें। जनित में सदैव बिलासपुर पुलिस छत्तीसगढ़। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, अभी हमने बात की उन तस्वीरों की जो हमें हमारे बचपन की गलियों में वापस ले जाते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए इन तस्वीरों को कैद करने का हमारा तरीका कितना बदल गया है। एक वक्त था जब हम घर में कैमरा रखते थे और ये बड़ी बात होती थी। याद है वो फिल्म वाला कैमरा? उनमें फ़ोटो लेने से पहले दो बार सोचना पड़ता था, क्योंकि तस्वीरें अनलिमिटेड नहीं थी। फिल्म की एक तय कैपेसिटी होती थी, हर क्लिक की अपनी एक कीमत थी, और फोटो खींचने के बाद ये भी नहीं पता चलता था कि तस्वीर कैसी आई। तस्वीरें भी खास मौक़ों के लिए रिजर्व्ड हुआ करती थीं, और शायद इसीलिए उन तस्वीरों की अपनी एक अलग अहमियत थी। फिर आया डिजिटल कैमरा, स्क्रीन पर फोटो देखी, पसंद नहीं आई तो डिलीट कर दी, और फिर टेक्नोलॉजी ने हमें दिया हमारा स्मार्टफोन। आज कैमरा हमारी जेब में है, किसी खूबसूरत सनसेट, खाने की प्लेट, सब कुछ ही अब हमारे कैमरे में कैद हो जाते हैं। इसी बदलाव ने हमारी फोटोग्राफी को ही नहीं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी बदल दिया है। पहले अगर क्लास वर्क मिस हो गया तो दोस्त के घर जाना पड़ता था, कोई ज़रूरी चीज़ याद रखनी है तो डायरी में लिखकर रखा करते थे। अब कोई डॉक्यूमेंट हो, किसी का एड्रेस हो, सबकी फ़ोटो हमारे फ़ोन में सेव्ड हैं। तो फिल्म कैमरे से डिजिटल कैमरा और वहाँ से स्मार्टफोन तक, इस सफ़र ने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बदली, तस्वीरों के साथ हमारा रिश्ता भी बदल गया है। दोस्तों, पहले तस्वीरें कम थी इसलिए हर तस्वीर यादगार होती थी। आज तस्वीरें इतनी ज़्यादा हैं कि शायद सबसे बड़ी चुनौती उन्हें लेना नहीं बल्कि उनमें से अपनी यादों को पहचानना है, और यही हमें फ़ोटोज़ के सबसे खूबसूरत पहलू की तरफ ले जाता है। क्या हम तस्वीर सिर्फ यादों को सहेजने के लिए लेते हैं, या आज हम अपनी ज़िंदगी को तस्वीर के ज़रिए जीने और दिखाने का एक ज़रिया मानते हैं? दोस्तों, आज तस्वीर सिर्फ हमारे बीते हुए पलों को सहेजने तक सीमित नहीं है, अब इनके ज़रिए हम अपने आज को भी दुनिया के सामने रखते हैं, और शायद इसी बदलाव ने तस्वीर को हमारे लिए और भी ख़ास बना दिया है। और इसका सबसे बड़ा ज़रिया रहा है सेल्फी। सेल्फी को अक्सर सिर्फ खुद को देखने या अपनी खूबसूरती दिखाने से जोड़ लिया जाता है, लेकिन हर सेल्फी के पीछे एक यही वजह नहीं होती। कई बार तस्वीर के ज़रिए हम अपने मन की खुशी बांटना चाहते हैं, किसी खास पल को अपने साथ रखना चाहते हैं। यानी सेल्फी सिर्फ अपने चेहरे को दिखाने का एक तरीका नहीं, अपने बारे में कुछ कहने का भी एक तरीका है। लेकिन जब तस्वीर सोशल मीडिया का हिस्सा बनती है तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। हम वहाँ अपनी ज़िंदगी का वही हिस्सा दिखाना चाहते हैं जिसे हम दूसरों को और भी खूबसूरत बनाना चाहें। खुशहाल चेहरे होते हैं, खूबसूरत लम्हे होते हैं। पर दोस्तों, ये याद रखना ज़रूरी है कि एक तस्वीर में मुस्कुराता हुआ चेहरा ज़रूर हो सकता है, लेकिन तस्वीर से कुछ मिनट पहले उनके जहन में क्या चल रहा था ये हम नहीं कह सकते। इसलिए कभी भी किसी की पोस्ट की हुई तस्वीर हो, वीडियो हो, या ज़िंदगी का कोई वाक्य हो, कभी भी उसे अपनी ज़िंदगी से कंपेयर करके ना देखें। फेसबुक की फ़ोटो हो, इंस्टाग्राम की फीड हो, वो परफेक्ट लग सकती हैं, लेकिन ज़िंदगी किसी की भी परफेक्ट नहीं। इसीलिए किसी की भी लाइफस्टाइल या फ़ोटो देखकर उनको या खुद को जज करने से बचें और फ़ोटोज़ लें, उसे पोस्ट करें, उस पल की खुशी को बांटें, लेकिन कभी भी कंपेयर ना करें। दोस्तों, जिस तरह रंग किसी तस्वीर को खूबसूरत बना देते हैं, उसी तरह आपकी पसंद के ये गीत हमारे इस सफ़र में रंग भर देते हैं। तो आइए हमारे इस सफ़र को आपकी पसंद के खूबसूरत गीत से सजाते हैं और सुनते हैं गीत। गीत हमने लिया है फिल्म रोमांस से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की। आरडी बर्मन ने धुन तैयार की है और इसे लिखा है आनंद बख्शी ने। गीत की फरमाइश करने वाले हमारे साथी हैं दतरंगे से हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। पथरिया भरेवा से हमारे साथी हैं चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल। पोटिया कला दुर्ग से हमारे साथी हैं संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। कोयलारी कवर्धा से हमारे साथी हैं कैलाश चंद्राकर, मुकुंद, पूर्णेंद्र और साहिल चंद्राकर। आइए सुनते हैं उनकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: दोस्तों अभी हमने बात की तस्वीरों की, उन तस्वीरों की जिनमें हम अपनी खुशियां सहेजते हैं और अपने खास पलों को दूसरों के साथ बांटते हैं। लेकिन तस्वीरों की इस खूबसूरत दुनिया के बीच एक सवाल आता है, क्या हम सचमुच उन पलों को जी रहे हैं या सिर्फ कैमरे में कैद करने में इतने व्यस्त हैं कि वो पल हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। बच्चा पहली बार चलना सीख रहा है या पहली बार स्कूल जा रहा है, हम उसे रिकॉर्ड करने में इतने बिजी हो जाते हैं। बेशक इन पलों को कैमरे में कैद करना ज़रूरी है क्योंकि ये कुछ साल बाद अनमोल यादें बनकर सामने आएंगे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या हम वाकई उस पल में उस बच्चे की खुशी में शामिल हो रहे हैं या बस कैमरे में एंगल लाइटिंग पर ही हमारा ध्यान है। याद सहेजना अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि यादें सहेजते सहेजते हम उस पल को जीना ही भूल जाएं? कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरे में कैद करने से ज़्यादा ज़रूरी उन्हें महसूस करना है। तो अगली बार कोई खूबसूरत पल आपके सामने आए, फ़ोन उठाने से पहले एक पल ठहरिए, उसे देखिए, महसूस कीजिए, अपनों के साथ उस खुशी में शामिल हो जाइए, फिर मन करे तो कैमरा उठाइए और उस पल को सहेज लीजिए। आखिर तस्वीरों और वीडियो ने हमारी ज़िंदगी का हिस्सा तो ज़रूर है, ज़िंदगी खुद तस्वीर या वीडियो नहीं। और ये याद रखिए कि सबसे खूबसूरत याद वही होती है जिसे कैमरे में नहीं हमने खुद जिया हो। दोस्तों एक तस्वीर हमें बीते हुए कल की ओर ले जाती है और एक सवाल हमें किसी नई जानकारी की ओर। इसी सिलसिले में लीजिए नोट कीजिए हमारे कुछ नए सवाल। हमारा पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी ने अपना गुरु माना था? हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में एक अरब राष्ट्र ने मृत्यु दंड समाप्त किया है, उस देश का नाम क्या है? साथियों आपके लिए हमारा तीसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन GDP लागू किया है? हमारा चौथा सवाल है, कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? साथियों हमारा पांचवा और आखिरी सवाल है, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन हैं? तो दोस्तों ये थे आपके लिए हमारे कुछ सवाल, आपके जवाबों का हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों अभी तक हमने तस्वीरों को अपनी यादों के रूप में देखा, अपने खास पलों को सहेजते हुए देखा, लेकिन तस्वीरों की दुनिया इससे कहीं बड़ी है क्योंकि कई बार एक तस्वीर सिर्फ कहानी नहीं कहती बल्कि हमारे आसपास की दुनिया की भी कहानी कहती है। आपने भी ये ज़रूर सुना होगा कि एक तस्वीर हज़ार शब्द कह जाती है और शायद इसकी वजह यह है कि तस्वीर में हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे शब्दों से समझाना मुश्किल है। एक तस्वीर में किसी किसान के चेहरे में थकान हो सकती है, किसी बच्चे की आंखों में उम्मीद, किसी आंदोलन में लोगों का आक्रोश, किसी आपदा के बाद किसी परिवार की बेबसी। तस्वीर बहुत कुछ कहती है लेकिन फिर भी बहुत कुछ कह जाती है। यही वजह है कि पत्रकारिता में तस्वीर

किसी की भी तस्वीर लेने से पहले उनकी इजाज़त ज़रूर लें, और अगर कोई भी आपकी तस्वीर का इस्तेमाल गलत जगह करे या आपकी परमिशन के बिना करे तो उसकी शिकायत ज़रूर करें। आपकी इन छोटी सावधानी से ना सिर्फ अपनी यादों को आप सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि खुद को और अपने आसपास के सभी लोगों को साइबर क्राइम और डीप फेक से भी सेफ रख सकते हैं। दोस्तों, तस्वीरों की दुनिया से जुड़ी एक ऐसी जगह का ख्याल आता है जहां कैमरा उठाइए तो लगता है जैसे हर मोड़ अपने आप एक तस्वीर बन गया है। जी हाँ, बात हो रही है पुडुचेरी की। 15 अगस्त को हम सब ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन पुडुचेरी एक ऐसी जगह है जिसका विलय 16 अगस्त को भारत में हुआ। समुद्र की लहरें, फ्रांसीसी शैली की इमारतें, तमिल संस्कृति की झलक, इन सब के बीच बसी है एक विरासत। दोस्तों, पुडुचेरी की गलियां और तस्वीरों के सफर के कुछ रंग हमने भी अपने साथ जोड़ लिए, और अब इस सफर में एक और खूबसूरत रंग भरते हैं तस्वीर का। आइए सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म परदेश से। आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक की। नदीम श्रवण ने धुन तैयार की है और इसे लिखा है आनंद बख्शी ने। पसंद करने वाले हमारे साथी हैं सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति, सविता घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश, प्रशांत, हेमंती, सरगुजा से रामचंद्र गुप्त, पांडे राम राजवाड़े, आर्यनगर कोह का भलाई से हमारे साथी हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष, नंदिनी, धमदा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य, अंजलि जंघेल। आइए सुनते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

जरूर बताएं। हमारा पता है yj.air.bilaspur@gmail.com। इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त महक को इजाजत।

युवा साथी सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम युवा जगत। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में पहले हम जानकारी देंगे आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 8 बजे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति कैच द रेन कैंपेन, ऊर्जाधानी कोरबा अब जलधानी भी। आलेख वाचन और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की, सहयोग होगा महावीर बरगाह का। 7:30 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में आज के बेरा के गोट का विषय होगा पोषण वाटिका कुपोषण से मुक्ति। इसके अलावा आकाशवाणी गांव मां के अंतर्गत आप सुनेंगे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के किसानों व कृषि विशेषज्ञ से की गई बातचीत। रिकॉर्डिंग और संपादन हरीश माड़वा का होगा, प्रस्तुति व संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। ईमेल करें, ये सुने का प्रसारण किया जाएगा 6:20 पर और शाम 7 बजे। रजनीगंधा कार्यक्रम हम लेकर आएंगे आज रात 8:30 पर। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे रात 9:15 पर। ये तो थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब डालते हैं नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर भी। कल सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा धान को कीटों से कैसे बचाएं। चिंतन आप सुनेंगे सुबह 6:45 पर। सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण किया जाएगा सुबह 7:05 पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं आप सुबह 7:30 पर। छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर श्रोता सुनेंगे कल सुबह 8:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद का समय होगा सुबह 10 बजे। 10:30 पर आप आनंद ले सकते हैं नए तराने कार्यक्रम का। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय होगा कल सुबह 11 बजे। कल शाम 4 बजे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे संदेश टू सोल्जर्स। कल शाम 7:30 पर हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिली श्रोता सुनेंगे कल रात 8 बजे। इसके बाद आप आनंद ले सकते हैं शास्त्रीय संगीत का। कल शाम 5:35 पर बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला सभा, जिसमें सामयिक चर्चा का विषय होगा स्मार्टफोन सुविधा भी सावधानी भी। साथ ही क्रम होगा परिसंवाद का, प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। ईमेल करेंगे सुने कार्यक्रम आप सुनेंगे कल 6:20 पर और 7 बजे शाम। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय होगा कल शाम 5:05। हम आपको एक बार फिर बता दें आज रात 8 बजे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति कैच द रेन कैंपेन, ऊर्जाधानी कोरबा अब जलधानी भी। आलेख वाचन और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की, सहयोग महावीर बरगाह का। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में स्त्रोत महोत्सव और राज्य स्तरीय कार्यशाला के करें शुभारंभ। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार ल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जज नियुक्त करे जाए के प्रस्ताव ल दीन मंजूरी।

0: धर्म। सर्वोच्च न्यायालय ह न्यायाधीश संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार ल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जज नियुक्त करे जाए के प्रस्ताव ल दिन मंजूरी। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के 2 सितंबर के छत्तीसगढ़ प्रवास प्रस्तावित, एम्स के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित स्त्रोत महोत्सव और राज्य स्तरीय कार्यशाला के शुभारंभ करें। ए मौका में उमन किहिन कि नदी केवल जल के स्रोत नहीं है बल्कि हमार सभ्यता, संस्कृति, कृषि और समृद्धि के जीवनधारा है। श्री साय किहिन कि नदी बाछी तो पानी बाछी और पानी बाछी तो जीवन बाछी। यही उद्देश्य ले राज्य सरकार है नदी के उद्गम स्थल और कैचमेंट एरिया के संरक्षण ला प्राथमिकता दे है। मुख्यमंत्री हकीन कि प्रदेश में नदी संरक्षण पर मानचित्रण, संरक्षण, पुनर्भरण, जनभागीदारी और कार्य योजना के 5 प्रमुख स्तंभ ऊपर काम करे जाही। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण के क्षेत्र में राज्य के संस्थागत और तकनीकी क्षमता ला मजबूत बनाए के उद्देश्य ले पुणे के नेशनल वाटर एकेडमी और बेंगलुरु के एंट्रिक्स कारपोरेशन के संग एमओयू करेगिस। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार ला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जज नियुक्त करे जाए के प्रस्ताव ला मंजूरी दे दे है। कॉलेजियम के 18 अगस्त के हुए बैठका में ये 3 जन नवा जज के नियुक्ति के सिफारिश ला मंजूरी देगीस। संतोष शर्मा हा बछर 2009 में न्यायिक सेवा में प्रवेश करिन। अपन कार्यकाल में उमन दंतेवाड़ा और बलौदा बाजार में जिला और सत्र न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और विजिलेंस में रजिस्ट्रार, फैमिली कोर्ट के जज और रायपुर में जिला और सत्र न्यायाधीश जैसे पद में काम कर चुके हैं। उन्हें सुषमा सावंत वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग में प्रधान सचिव के पद में कार्यरत हवें। सुधीर कुमार वर्तमान में रायपुर फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हवें। उमन बछर 2009 में न्यायिक सेवा में प्रवेश करे रहीन। उमन दंतेवाड़ा, धमतरी और बिलासपुर में जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के 2 सितंबर के प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास ला लेके मुख्य सचिव विकासशील के अध्यक्षता में आज मंत्रालय में बैठका हुई। बैठका में उपराष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल, यातायात, चिकित्सा समेत दूसर व्यवस्था के समीक्षा करेगीस। बैठका में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति 2 सितंबर के रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किहिन के युवा मन के ऊर्जा, प्रतिभा और रचनात्मकता विकसित भारत के संग्रह विकसित छत्तीसगढ़ के सबले बड़का ताकत है। उमन काली रायपुर में माय भारत के प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठका ला संबोधित करत रहीन। मुख्यमंत्री है प्रदेश के ज्यादा ले ज्यादा युवा मन ल माय भारत ले जुड़े और स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, कौशल विकास और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र में उमन के भागीदारी बढ़ाए के निर्देश दें। राज्य सरकार है रक्षाबंधन पर्व के मौका में 28 अगस्त के राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करे है। सामान्य प्रशासन विभाग दहार ले जारी अधिसूचना के अनुसार ये दिन जम्मू शासकीय कार्यालय और संस्थामन के संग्रह, कोषालय और बैंक में अवकाश रही। उच्च शिक्षा संचालनालय है प्रदेश के जम्मू शासकीय कॉलेज में रिक्त पद में अतिथि व्याख्याता मन के नियुक्ति के आदेश जारी करे है। उच्च शिक्षा संचालनालय के आयुक्त प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालय मन के कुल सचिव, राजकीय विश्वविद्यालय और जम्मू शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य ल पत्र जारी करके चालू शैक्षणिक सत्र में प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के खाली पद में अतिथि व्याख्याता के व्यवस्था के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दे है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल है अपन हितग्राही मल्ला दांडिक ब्याज में 50% छूट दे के घोषणा करीन है। ये छूट मंडल के जम्मू योजना में निर्मित और निर्माणाधीन आवंटित संपत्ति में लागू होगी। पात्र हितग्राही संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा करके ये छूट के फायदा ले सकें। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा था छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।

0: अब आगू बढ़वो माचे समाचार कोटी। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार में शासकीय सेवा में कार्यरत 186 लोगन मन ले जुड़े प्रकरण के जांच करे जाही। एक हर बार विशेष मेडिकल बोर्ड के गठन करे जाही। संगे संग संबंधित मनखे मनला मेडिकल बोर्ड के आगू उपस्थित होना होही। ये निर्णय काली मंत्रालय में समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बैठका में लेगीस। बैठका में विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ह दिव्यांगजन उभयलिंगी समुदाय और दूसर अंतरविभागीय विषय ले जुड़े कल्याणकारी योजना और स्वास्थ्य सेवा के क्रियान्वयन के समीक्षा करें। लैका मन के स्वास्थ्य पोषण और उत्तर जीविता ला बढ़ावा दे के उद्देश्य ले प्रदेश भर में काली ले शिशु संरक्षण माह के शुभारंभ करेगी। 24 सितंबर तक चलैया ए अभियान के दौरान लैका मन ला विटामिन ए के खुराक दे जाही। स्वास्थ्य विभाग अभिभावक मन ने निर्धारित तिथि में लैका मन ला नजदीकी सत्र में लाए के अपील करी है। स्वतंत्रता दिवस में राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल हॉल में धमतरी जिला के सरईटोला गांव के कलाकार मन मांदरी नृत्य के प्रस्तुति दिन पारंपरिक वेशभूषा और मांदर के थाप में कलाकार मन छत्तीसगढ़ के समृद्ध आदिवासी संस्कृति और लोक कला के सुघर झलक पेश करें। ये प्रस्तुति है राष्ट्रीय मंच में छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के गर्व बढ़ाए है। मुख्य सचिव विकासशील के अध्यक्षता में काली रायपुर में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के समीक्षा बैठक हुई। बैठका में सड़क दुर्घटना में प्रभावी रोक लगाए और यातायात व्यवस्था ला सुगम बनाए बर संबंधित विभाग मन ला बेहतर समन्वय के संग काम करे के निर्देश देगी। बैठका में ज्यादा दुर्घटना वाला रायपुर बिलासपुर दुर्ग कोरबा रायगढ़ बलौदाबाजार सरगुजा और बस्तर जिला में दुर्घटना के स्थिति के विश्लेषण करके विशेष कार्य योजना बनाए बर कहेगी। छत्तीसगढ़ श्रोता मंच डहाले भिलाई में आज ले अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन के आयोजन करे जाते। सम्मेलन के पहले दिन आज भिलाई के सेक्टर 6 स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में कार्यक्रम के आयोजन करेगी। उन्हें काली 20 अगस्त के भिलाई के सिविक सेंटर स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर में कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। इस सम्मेलन में देश भर ले 500 ले ज्यादा रेडियो श्रोता मन शामिल हुए थे। उन्हें ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन डहा ले काली 20 अगस्त के रेडियो श्रोता दिवस मनाए जाही। ए मौका में रायपुर में रेडियो श्रोता पर एक ठिन कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल देवांगन है बताइन कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन के संस्थापक महेंद्र मोदी होंगी। सुकमा जिला के कोंटा थाना क्षेत्र में पुलिस है दो अंतर्राज्यीय तस्कर मनला गिरफ्तार करके ओमन करा ले 308 किलोग्राम ले ज्यादा के गांजा जब्ती करे है। जब्ती गांजा की कीमत 1,54,00,000 रुपया ले जाता बताया गया है। गांजा नमक के बोरी के नीचे लुका के लाए जात रही। गिरफ्तार दोनों आरोपी राजस्थान निवासी बताए जाते हैं। रायपुर जिला के युवा मल्ला मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दे जाते। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी जोरा में होवैया ए प्रशिक्षण पर 18 से 45 बच्चर के युवा वाला युवक युवती मन आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं और 10वीं उत्तीर्ण निर्धारित है। प्रशिक्षण में कंप्यूटर और संवाद कौशल के संग व्यक्तित्व विकास घलो शामिल है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में स्त्रोत महोत्सव और राज्य स्तरीय कार्यशाला के करें शुभारंभ। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संतोष शर्मा सुषमा सावंत और सुधीर कुमार ला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जज नियुक्त करे जाए के प्रस्ताव ला दीन मंजूरी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के 2 सितंबर के छत्तीसगढ़ प्रवास प्रस्तावित। एम्स के दीक्षांत समारोह में हो ही शामिल। इखरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कुछ ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर।
2: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकार कीजिए रत्ना का नमस्कार।

चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप सभी की फरमाइश से। फिल्म का नाम है दीवाना। आवाजें हैं कुमार सानू साधना सरगम की, समीर की रचना है, नदीम श्रवण का संगीत। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। नरगोड़ा से हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, शीतल। मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप। बीरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा। बिलाईगढ़ से खिकराम देवांगन, रेणु, रजनी, प्रियंका। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभी, राधिका, अनिष्का, तन्मय। सौंगा मगरलोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हिंश कुमार। पौड़ी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चोवराम यदु, निखिल, वसुंधरा, प्रांजल। देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या, सविता। दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना, चैतन्य और मेघा। तिवर्ता डबरीपारा जिला कोरबसी, महेंद्र प्रताप मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजा और चंद्रपाल, लक्ष्मी थादवानी। बठिंडा पंजाब से परम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर, करण, वीरकरण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत। पांडा कवड़ा से अनिल, उषा, अनुश्री, धनश्री। जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्व, हिमाक्ष। कुमार गली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा, प्रतीक्षा। मदनपुर से हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल। महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां, नाज, तलत, फरहत और उनका पूरा परिवार। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद, कालिंद्री। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। जगरांव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, पीयूष, रोहित राज। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर जस्सी, सीता गीता। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दीवाना का ये गीत। आवाजें हैं कुमार साधनू और साधना सरगम की।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, आज रात 8 बजे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति कैच द रेन कैंपेन, ऊर्जा धानी कोरबा अब जलधानी भी। आलेख वाचन और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की, सहयोग होगा महावीर बरगाह का। लीजिए सुनिए महिला सभा कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, आप महिला सभा में अपनी फरमाइश के गीत लिखकर भेज सकते हैं और सुन सकते हैं। आपकी फरमाइश हमें मेल कीजिए महिला सभा BSP एट द

gmail.com में, और इस पर महिला सभा का प्रसारण होगा हर मंगलवार गुरुवार शाम 5:35 से। सूचना समाप्त हुई।

ईमेल करें गे सुने, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गीत। स्वर है आशा भोसले का, फिल्म का नाम है लोफर, रचना है आनंद बख्शी की, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का और पसंद है आप सभी श्रोताओं की। राजकोट से हैं जूली, जगदीश गुजराती, प्राची, प्रवीण पुजारी, जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति। सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा, पायल और जगदीश। भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा श्याम कुंवर। लुतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीश। लोहगढ़ ठाकुरावाला से हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। लोहारेडी जिला कवर्धा से हैं अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, लालिमा, खुशांत, निशांत। गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफराना चाहत। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, नंदा हनुमान बोटके। बरका खाना से अफजालता, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साहिनी, मोहम्मद अफजल मल्लिक। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन, माही सेन। दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना, वली भाई, अंसारी। बागबाहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल। ये हैं सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद। डांडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, जयदेव और अलकबीर। रुथरा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श, आतिका। पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुन्ना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबे, राहे मेहराज जहां। टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गंगनी थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका, वाणी। फिल्म सिटी मुंबई से हैं अदीबा नाश, फातिमा, नासरीन अंसारी, आलिया और सबा। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना, चेतन भगत। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन अपार। पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, यशस्वी, अन्नपूर्णा। पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा और विनय शंकर पांडे। चलिए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म लोफर का ये गीत।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी टॉयज हेलमेट इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर गीत शर्मा उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान रुपाई व्यासी में खरपतवार नियंत्रण। इस विषय से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 20 अगस्त 2026 को सुबह शाम 7:30 से रात 8:20 आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। ईमेल करेंगे सुनी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। फिल्म का नाम है मनोकामना, स्वर और संगीत है बप्पी लहरी का, रचना है इंदिवर की, पसंद है आप सभी श्रोताओं की। गांव फ्रांसी हिसार से हैं राजकुमार दुद्दी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह। रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई, यामिनी और उमा। हांसी से हैं राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता, सुभाष योगी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी। मडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया। दुराबांधा भाटापारा से हैं प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान, अब्बासी अबान।

खान अब्बासी, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल पूजा परिहार, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल भारती, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम राकेश कुमार, बुलढाणा वटसिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा दीपाली और श्लोक, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू पप्पी, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अलाबख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा, मुरादाबाद रामदुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक बलबीर, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी, मालती चौधरी, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम चोवराम वर्मा, सूरज बारिकर, नारायण यादव, भुवन कामरी, रसेड़ा से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश वासु, डाली पुरेश, नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नावकर, निर्मला विशाल, गांव हीरा वाले फजेल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला इंदु पार्वती, हिमांशु, रायपुर से नीलू मेघ वंदना, बिट्टू कुमार, जिला यवतमाल पोफाली से हैं जयराम श्रृंगणकर, दीक्षांत अर्पिता, राजकोट से जूली और उनका पूरा परिवार। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म मनोकामना का ये गीत।

इस गीत के साथ ही ईमेल करेंगे सुने कार्यक्रम बस यहीं तक। ईमेल करेंगे सुने कार्यक्रम एक बार फिर आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:45 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख

0: से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
8: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
9: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर में आयोजित स्रोत महोत्सव और राज्य स्तरीय कार्यशाला का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जज के तौर पर नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 2 सितंबर को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित, एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। और प्रदेश में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कल व्यापक मॉक ड्रिल कराई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में आयोजित स्रोत महोत्सव और राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नदियों के उद्गम स्थलों और कैचमेंट एरिया के संरक्षण को प्राथमिकता दी है।
10: हमारा ये जो प्रदेश है, धान का कटोरा कहलाता है, और ये विशेषकर हमारे प्रदेश में जो अनेकों नदियां हैं उसके कारण ये संभव हो पाया है। हम लोग अच्छे से अनाज पैदा कर पाते हैं। आगे और कैसे हमारी नदियों को संरक्षित करें, उसका संवर्धन करें, साफ सुथरा रखें, इसके लिए एक दिन का ये स्रोत महोत्सव का आयोजन हुआ है। और इसमें बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो IIT कानपुर के जो जल विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर विनोद तारे जी, वो वहाँ पर आए हैं।
9: मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय समितियों के सदस्यों से कहा कि नदियों के किनारे बसे गांव में स्थानीय समितियां गठित कर पंचायतों के सहयोग से नदी संरक्षण और पुनरुद्धार के कार्य कराए जाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जज के तौर पर नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कॉलेजियम की 18 अगस्त को ही बैठक में इन 3 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी दी गई। संतोष शर्मा ने वर्ष 2009 को न्यायिक सेवा में प्रवेश किया। अपने कार्यकाल में वे दंतेवाड़ा और बलौदाबाजार में जिला और सत्र न्यायाधीश,

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और विजिलेंस में रजिस्ट्रार, फैमिली कोर्ट के जज और रायपुर में जिला और सत्र न्यायाधीश जैसे पद पर कार्य कर चुके हैं। वहीं सुषमा सावंत वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत है। सुधीर कुमार वर्तमान में रायपुर फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हैं। उन्होंने वर्ष 2009 में न्यायिक सेवा में प्रवेश किया था। वे दंतेवाड़ा, धमतरी और बिलासपुर में जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यरत 186 लोगों से संबंधित प्रकरणों की जांच की जाएगी। इसके लिए विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही संबंधित व्यक्तियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। यह निर्णय कल मंत्रालय में समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग की बैठक में लिया गया। बैठक में विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और श्याम बिहारी जायसवाल ने दिव्यांगजनों, उभयलिंगी समुदाय और अन्य अंतर विभागीय विषयों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उच्च शिक्षा संचालनालय ने प्रदेश के सभी शासकीय कॉलेजों में रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। उच्च शिक्षा संचालनालय के आयुक्त ने प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, राजकीय विश्वविद्यालय और सभी शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को पत्र जारी कर चालू शैक्षणिक सत्र में प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए जल्द ही वर्क एंड अकाउंट्स मॉनिटरिंग इंटीग्रेशन सिस्टम वमिस लागू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस प्रणाली से डीपीआर तैयार करने से लेकर कार्य की स्वीकृति और अन्य प्रक्रियाएं ऑनलाइन और एकीकृत प्रणाली से संचालित होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के 2 सितंबर को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में बैठक हुई। बैठक में उपराष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल, यातायात, चिकित्सा सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि उपराष्ट्रपति 2 सितंबर को रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और उत्तरजीविता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश भर में कल से शिशु संरक्षण माह की शुरुआत की गई है। 24 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से निर्धारित तिथियों पर बच्चों को निकटतम सत्र में लाने की अपील की है। प्रदेश में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कल 20 अगस्त को व्यापक मॉकड्रिल कराई जाएगी। इस दौरान बाढ़ की स्थिति में बचाव और राहत कार्यों के संचालन, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सहित आपदा प्रबंधन की तैयारियों का व्यवहारिक अभ्यास किया जाएगा। इसी कड़ी में कल मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के शिवनाथ नदी में भी मॉक एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर 28 अगस्त को राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस दिन सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के साथ कोषालय और बैंकों में अवकाश रहेगा। रक्षाबंधन के अवसर पर छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल ने राखी स्पेशल गिफ्ट बॉक्स लॉन्च किया है। अनमोल तोहफा, अनमोल रिश्ते के लिए संदेश के साथ तैयार किया गया यह विशेष गिफ्ट बॉक्स 520 रुपये कीमत पर नजदीकी डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल प्रणव कुमार ने बताया कि इस बॉक्स में 2 आकर्षक राखियों के साथ पारंपरिक अक्षत कुमकुम, बैज, फ्रिज मैग्नेट, पिक्चर पोस्टकार्ड और की रिंग जैसी वस्तुएं दी गई हैं। इधर बस्तर की ग्रामीण महिलाओं ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्राकृतिक सामग्रियों से तैयार पर्यावरण अनुकूल राखियों की प्रदर्शनी लगाई। जगदलपुर कलेक्ट्रेट परिसर में लगी इस प्रदर्शनी में धान, चावल, बीज, बांस, प्राकृतिक धागों और कौड़ियों से बनाई गई राखियां आकर्षण का केंद्र रहीं। छत्तीसगढ़ श्रोता मंच की ओर से भिलाई में आज से 2 दिवसीय अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन के पहले दिन आज भिलाई के सेक्टर 6 स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कल भिलाई के सिविक सेंटर स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस सम्मेलन में देशभर से 500 से ज्यादा
रेडियो

श्रोता शामिल हो रहे हैं। आयोजन स्थल पर रेडियो सेट, छत्तीसगढ़ी गहने, कलेवा, सिनेमा, साहित्य, पेंटिंग और बस्तर आर्ट की प्रदर्शनी लगाई गई है। वहीं ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन द्वारा कल 20 अगस्त को रेडियो श्रोता दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर रायपुर में रेडियो श्रोताओं के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल देवांगन ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन के संस्थापक महेंद्र मोदी होंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित प्रदेश के शासकीय और निजी महाविद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र के बीएससी कृषि ऑनर्स स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए संचालित ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों को पीएटी परीक्षा की प्रवीण सूची के आधार पर प्रोविजनल सीट और महाविद्यालय का आवंटन कर दिया गया है। कल 20 अगस्त से 22 अगस्त तक कृषि महाविद्यालय रायपुर में सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को उन्हें आवंटित प्रोविजनल सीट सुरक्षित करने के लिए 20 से 23 अगस्त तक ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। रायपुर जिले के युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी जोरा में होने वाले इस प्रशिक्षण के लिए 18 से 45 वर्ष आयु के युवक युवतियां आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, योगा इंस्ट्रक्टर, होम हेल्थ एड, रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव और सोलर पीवी इंस्टॉलर जैसे पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं और 10वीं उत्तीर्ण निर्धारित है। प्रशिक्षण में कंप्यूटर और संवाद कौशल के साथ व्यक्तित्व विकास भी शामिल है। सुकमा जिले के कोंटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 308 किलोग्राम से अधिक का गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 1,54,00,000 रुपए से अधिक बताई गई है। गांजा नमक की बोरियों के नीचे छिपाकर लाया जा रहा था। गिरफ्तार दोनों आरोपी राजस्थान निवासी बताए जा रहे हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित 3 दिवसीय फोटो जर्नलिस्ट फेस्ट दृश्य संवाद का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और अधोसंरचना विकास मंडल ने अपने हितग्राहियों को दांडिक ब्याज में 50% छूट देने की घोषणा की है। यह छूट मंडल की सभी योजनाओं में निर्मित और निर्माणाधीन आवंटित संपत्तियों पर लागू होगी। अगले साल हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सहायता के लिए राज्य हज निरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। उसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी ने आवेदकों से 27 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 21 अगस्त को गौरेला के शासकीय आईटीआई परिसर गौरेला में सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और पुणे में 16 से 21 अगस्त तक आयोजित 5वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी एडम अमीन रिची ने कैडेट वर्ग के 61 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर में आयोजित स्रोत महोत्सव और राज्यस्तरीय कार्यशाला का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जज के तौर पर नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 2 सितंबर को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित। एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। और प्रदेश में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कल व्यापक मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत। फिल्म का नाम है तेरे नाम। आवाजें हैं उदित नारायण अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य। मुड़गहन से हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंदेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह। जालंधर से संदीप मक्कर, ज्योति, मन्नत और कमल साहनी। गंडई पंडरिया से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु, सोनाली। बरेली कैंट चनहटी उत्तर प्रदेश से हैं विनेश कुमार, रागनी और मुस्कान। सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमन, पल्लवी, राजेश्वरी। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी, नीरज, शुभम और सौरभ। बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रजन साहू, हेमंत, नामदेव, धर्मदास वाधवानी। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से हैं चंदूलाल सिंह रावल, नारायणी, नोमेश, नेहा, वान्या। बोरसरा नीला से हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु। बिलाई 314 से हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन, जीशान, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। खोंतला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव खुराना, एस के, पप्पी। मोताला महाराष्ट्र से विजय सरलकर, रतनमाला, ओम कुमार। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई, दुखनी, सदफ, जो इकबाल, इमरान अहमद, आमना, नसरीन, आसमा परी, राबिया, मंतशा, आशु अहमद। दिल्ली से प्रेमिला, हेमा, अंतरा। डुमराव से वलीउल्लाह, सोनम वली, आसमा वली। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म तेरे नाम का ये गीत।

लीजिए अब सुनिए ईमेल करेंगे सुनी कार्यक्रम में अगला गीत। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। महाराष्ट्र से हैं रूपेश संघई, महेश प्रज्ञेश और प्रीतेश। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी। भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र।

यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पना, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकार। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र। धरदेई सरगांव से चंदुलाल पटवा, सुनीता, हर्ष, विनीत, कृष्टि। वड़खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। रतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा। कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी। पैठण से हैं सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया। मेहरनगर उमड़खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गभाड़कर, सरिता, प्रिंस, एकांश। अड़ानान घाट से हैं माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश। चलिए अब सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म जब जब फूल खिले का।

गंवारकर, सरिता प्रिंस, एकांश अड़ानान, घाट से हैं माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश। चलिए अब सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म जब जब फूल खिले का ये गीत। स्वर है लता मंगेशकर का, लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

ईमेल करें गीत सुनी कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लीजिए सुनिए एक सूचना। श्रोताओं, आप महिला सभा में अपनी फरमाइश के गीत लिखकर भेज सकते हैं और सुन सकते हैं। आपकी फरमाइश हमें मेल कीजिए mahilasabha@gmail.com पर। महिला सभा का प्रसारण होगा हर मंगलवार और गुरुवार शाम 5:35 से।

रिहाइश पर। अगला गीत, फिल्म का नाम है घर, स्वर है लता मंगेशकर का, शब्द हैं गुलजार के, संगीत है आरडी बर्मन का और पसंद है आप सभी श्रोताओं की। सनावा से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम, पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौसलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक, लसुटिया पाता जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परिकृतिका, रमेश चंद्र, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका, रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नागरकोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा आराध्या, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार, छोटी बलिया करजत, मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजवती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश रेशमा, यवतमाल से पंजाब राम टेकी, यशोधरा और श्राव्या। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म घर का ये गीत।

हम आपको याद दिला दें, आज रात 8 बजे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति कैच द रेन कैंपेन, ऊर्जा धानी कोरबा अब जल धानी भी। आलेख वाचन और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की, सहयोग होगा महावीर बरगाह का।

अगली फरमाइश है आप सभी श्रोताओं की। तखतपुर से हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी। श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिश शाहिद। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़। मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, निवान सौरव, शाना मंडिया। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एस एम जावेद, शगुप्ता अंजुम। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, माधुरी किरण। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मंजू, मयंक। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद, कालिंद्री लहरे। कालेगांव जाफराबाद से हैं सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सर्वद और सानवी। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति और प्रतिभा शर्मा, साथ में है इशप्रीत शर्मा। कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से राम भारत राम पटौटी, जयंती, हेमंत, उमंग, मोक्ष पटौटी। तिलहारा से हैं प्रकाश पोहरकार, नर्मदा सुजाता। जनकपुरी सहारनपुर से जोंडी कैस्ट्रो, रोजी पर्ल विलिस। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाड़कर, टुक टुक प्रिंस और परिवार के सभी सदस्य। निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत कौर। दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम, नगमा। गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ, डिचा। कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह। गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली, धनंजय। दिल्ली से सोनम, सना और अदीबा। मलौट से रमेश कुमार जजूरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू, गुड्डू। दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल। जालंधर से रोशन जहां, मनज जहां, इशरत और उनके सभी दोस्त और परिवार के सभी सदस्य। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आए दिन बहार के फिल्म का ये गीत। स्वर है मोहम्मद रफी का और बोल है राजेंद्र कृष्ण।

और इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम से अब रत्ना को दीजिए अनुमति। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 7:30 हुए हैं, आइए अब चलते हैं ग्राम सभा में।

ग्राम सभा सुनैया जम्मो श्रोता संगवारी भाई बहनी मल्ला गौरी बहनी के राम राम जय जोहार। संगी हो देखा था ना रोज रोज पानी गिरत हावय और पानी गिरत है त ऐसन में स्वास्थ्य के बहुत क्षेत्र राखिल पड़ते संगी हो। काबर की हम देखा थन त जर बुखार सर्दी खांसी बहुते हुआ थी जी और अभी के बेरा में खाए पिए बहुत चेत करना है भाई। बाहर के बिसा के खाए पिए झन और वैसने काल के बाँचे है बासी भोजन तेला झन खावा खुल्ला में रखे चीनीस ला बिल्कुल झन खावा संगी होवा। बढ़िया सुग्घर हरियर हरियर साग भाजी खावा फल फूल खावा और ताजा

भोजन खावा। खास करके कहूँ कहिया तो छोटे लइका है, सियान है, लइकोरी दाई है, माता है और गर्भवती माता, उनकर विशेष ध्यान रखो संगी हो। वैसे तो सबे मन खेल पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए जेकर से आदमी स्वस्थ रहे, है ना भाई। और आप मन सोचा तो हा एक गौरी बहनी काय खाए पिए लेके बैठ गए, तो काबर नहीं संगी हो, आज हम आप मन से गोट बात करबो पोषण वाटिका, कुपोषण ले मुक्ति। बिल्कुल सही बात है संगवारी हो, पोषण वाटिका लगाहा तभे तो कुपोषण ले मुक्ति पाहा। देखो पोषण वाटिका के मतलब आए कि घर है, घर के तीर तखार, अंगना कोला बाड़ी, चाहे स्कूल है, चाहे आंगनबाड़ी के तीर तखार मा ऐसन छोट कन बगीचा बनावा, जी हाँ, अलग अलग किस्म के साग भाजी फल फूल और औषधि पौधा लगाए जा सके। एकर मुख्य उद्देश्य ये संगी हो कि परिवार के मनखेला ताजा और पौष्टिक प्राकृतिक खाए पिए बर साग भाजी फल फलेरी मिले और कुपोषण ले मुक्ति पाए, मुक्ति, है ना भाई। तो कुपोषण का होते तेनोल जान लो। देखो सही मात्रा में प्रोटीन है, विटामिन है, आयरन है, ऐसन दूसर जरूरी हमर शरीर पोषक तत्व चाही वो नहीं मिले तक कुपोषण हो सकत है, ऐसन विशेषज्ञ मन जानकार मन बताते भाई। और आपो मन देखा तो हा कई जन लइका है जिन मन एकदम कमजोर दिखते, पतला दुबला, है ना भाई, उनकर ऐसन जिन कुपोषण के शिकार रहे थे तेन लइका मन लाभ देखिया तो पढ़े लिखे मुकर मन नहीं लगाए, काम बुता में मन नहीं लगाए, है ना। तो ऐसन झन हुए और उमन घेरी बेरी बीमार परत रही थे और उनकर शरीर के विकास बढ़ोतरी नहीं हुए, एकरे बर का करना चाहिए पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, फल फूल हरियर हरियर साग भाजी खाना चाहिए। तो एकर बर भाई अब बाजार में जाता तब महंगा है, ज्यादा कीमत है, तो कभू कभू हम बिसा नहीं पान, तो काबर नहीं अभी सुग्घर बेरा है, पानी गिरत है, तो पोषण वाटिका लगान जेमा पालक, मेथी, लाल भाजी, रमकेरिया, पताल, भाटा, बरबट्टी ऐसन साग भाजी लगा सकथन, जिला बहुत मात्रा में अलग अलग प्रकार के ये साग भाजी में पोषक तत्व रही थे। तो पोषक वाटिका लगा के बहुत अकन फायदा भी है, काबर का फायदा, तो बढ़िया ताजा पौष्टिक साग भाजी मिली और कम खर्चा में हमर बढ़िया ये वाटिका लग जी संगी हो। तो जरूर पोषक वाटिका लगाए जेकर से बढ़िया हमर घर परिवार ला साग भाजी मिले और लइका मन भी साग भाजी के उपयोग, साफ सफाई और संतुलित भोजन के बारे में सीखे। और कुपोषण के लड़ाई सिर्फ हम सरकार की जिम्मेदारी नो है संगी हो, हम सब के जिम्मेदारी है, घर परिवार वाले के, समाज के, है ना। तो कुपोषण ला दूर भगाना है तो पोषण वाटिका जरूर लगावा। एकरे बर कही थे पोषण वाटिका हरियर हो ही तो हमर परिवार है स्वस्थ हो ही, पौष्टिक खाना अपनाबो और कुपोषण ला भगाबो। तो देखा संगवारी हुआ, अब हम आप मन तो पोषण वाटिका लगाहा और हमन अब आगू बढ़बो कार्यक्रम में, है ना भाई। तो कार्यक्रम में तो बढ़बो तेकर पहली आप मन ला एक ठन हम सूचना बता देथन। आप मन जाना था फोन इन कार्यक्रम में आधारित हमर हर शुक्रवार के संझा 7:30 ले कार्यक्रम प्रसारित होते, एमा हमर किसान भाई मन कृषि उत्पाद, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और अपन स्वास्थ्य ले संबंधित समस्या के समाधान विशेषज्ञ मन में सवाल पूछ के पाथे और ओकर समाधान घलोक करते, है ना भाई। इही कड़ी में काली गुरुवारे और दिनांक के 20 तो स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख डॉक्टर गीत शर्मा उपस्थित रही। इकर संग बिहनिया 10:30 ले 11 तक सवाल पूछे के जिन विषय हुई ओ है धार रोपाई 82 मा

0: खरपतवार नियंत्रण, ये विषय ले संबंधित समस्या और जिज्ञासा के समाधान पाए बर हमर फोन नंबर हावय 2665 92 और 3100026। फोन लगाए के पहली स्टूडियो एसटीडी कोड जरूर लगा, जेन नंबर है 07752। ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के प्रसारण 20 अगस्त मतलब काली ही संझा 7:30 ले 8 बजे तक सुन सकत हो आप मन, तो जरूर फोन लगा समय के क्षेत्र क्या और विषय के। तो चला अब कार्यक्रम में आगू बढ़बो, तो आज आए आकाशवाणी गांव में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के किसान और कृषि विशेषज्ञ मन से बातचीत हो है और बातचीत करे है हमर बैसाखू भाई, रिकॉर्डिंग और संपादन बैसाखू भाई के, प्रस्तुति और संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन जी के। तो चला एला सुनथन।
1: सबो संगवारी मल्ला बैसाखू के जय जोहार।
2: जय जोहार।
1: तो संगी हो आज हमन गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के ग्राम कुदरी महन और यहाँ के किसान संगवारी मन हमारे बीच में बैठी हीन और अलग अलग बूता करती हीन, किसानी के बूता भर दरा है और कई जी किसान संगवारी मन थरहा लगाए के बूता तो कर डारी है ना, सिरा गए है, फिर खातू माटी डारे के बेरा है और बियासी के समय घलू आ जाए, पौध रोपण के कई ठीक जिला में काम बूता हुआ थे तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में घलो हुई से। हमारे बीच में बैठे हमें डॉक्टर साहब मन, उनकर से जानत है कि कौन हिसाब से पौध रोपण के काम, औषधि महात्म के जिन पौधा होते एकर का महत्व है, कैसे रोग हर एकर से ठीक होते, कैसे अनुपान हमारे लिए आवश्यक है।
2: जय जोहार भैया, मेरा नाम डॉक्टर कैलाश सिंह मरकाम है, मैं यहाँ जिला अधिकारी के दायित्व में कार्यरत हूँ।
1: अच्छा अच्छा।
2: हमारे जिला प्रशासन के अभिनव पहल है पौधा लगाए, गांव मोहल्ला दीदी भाई बहनी मन सब इकट्ठा हो जाते, पेड़ के महत्व सभी मन ला पता है, काबर सभी मन ला ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहे बा, है ना, तो जिंदा रहे बा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन खाए पिए ला भी औषधि युक्त पौधा चाहिए, विभिन्न प्रकार के औषधि पौधे में जैसे जाम है, है ना, जाम ला सब जानत है, जाम खाए के भी काम आते, लेकिन देश में सबसे बड़े बीमारी के रूप में एनसीडी के रूप में चला थे, वह मधुमेह शुगर प्रमेह ऐसे है जो हर तीसरा घर में एक आदमी ला कोई ना कोई डायबिटीज के रूप में पाही, तो ये आहार ही औसत आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ऐसे चीज ला खा ले, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यों, कार्य शैली ही वहाँ प्रभाव करते, वहाँ का कसाय रस है ना, ये है शुगर के दो दुश्मन करवा और कसैला। सब्जी में तो बहुत सारे ऐसे करेला सब जानते हैं, ऐसे फलदार का फल खाई का नहीं खाई, तो ऐसे फल है जेकर खा ले आदमी ले पोषक तत्व भी मिली और वो बीमारी ले दूर रखे में मदद भी मिली। पूरा दुनिया तेजी से बढ़त है, जमीन कम होते, खेती कम है और सब फास्ट लाइफ चाहिए, तेकर फास्ट ग्रोथ के चक्कर में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अपन देसी खेती किसानी ले तो सब भूल जाथन, यूरिया राखर तेल के डालत हैं और हार्मोन थेरेपी के रूप में ज्यादा प्रोडक्शन लेके चक्कर में उला करे थन, वो यूरिया राखल हमन नहीं खान, लेकिन जब हमर ब्लड सैंपल कराए जाते कुछ तकलीफ होते, दर्द के शिकायत आते, हड्डी कमजोर होते है ना, जोड़ों में दर्द आते, तो आदमी मन करते कि जब ब्लड टेस्ट करा तो यूरिक एसिड बढ़ गए, वो एसिड ला खान नहीं, वो तेजाब ला पियन नहीं जान के, लेकिन वो फसल के माध्यम से कर पोषक तत्व में सोख लेते और शोषण कर लेते और हमर शरीर में आते और वो बीमारी रूप के धारण करे थे, हमर शरीर ला कमजोर बनाते, तो हमर यही रहे थे कि फल फ्रूट माध्यम से करे थे, बहुत सारे जहरीले तत्व है ढेर सारे, वो कर डाले ले बच जाते हैं, विशेषज्ञ मन चिंतन मनन करे के बाद करीब के पौधा ही मेन है कि हमर ओकर पूर्ति कैसे करा जाए और ऐसे पौधा लगाए जाए कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दे, है ना, तो ऑक्सीजन मित्र बने अपन।
1: डॉक्टर साहब हमारे बीच में बढ़िया जानकारी बताया है आयुर्वेद के बारे में, कैसे हमार सेहत बढ़िया रही और खान पान आहार विहार कैसे होना चाहिए, बहुत बढ़िया लगी। और जैसे पानी बचत के हम बात करे हन तो जल संरक्षण के दिशा में घलो बढ़िया काम हुआ थे जिला में, तो बीबीजी राम जी के अंतर्गत में जिन रोजगार सहायक हीन कौन प्रकार से बूता करत हमें आवा आपे मन से जानत है। भैया जय जोहार।
3: जय जोहार।
1: नाम बतावा ना।
3: मोर नाम रोहित कुमार है, मैं ग्राम कुदरी के रोजगार सहायक हूँ।
1: अच्छा अच्छा। आप मन बताहा के गौरेला पेंड्रा मरवाही मा इधर पानी के

0: कौन प्रकार की स्थिति रही इस भैया?
1: ये बार तो पिछले बार से 40% पानी है, कम है।
0: अच्छा अच्छा,
1: यह कारण है पेड़ पौधा की। आदमी पेड़ कम लगा थे, काटा ज्यादा है। शासन के एक अच्छा पहल से कि आप बीबीजी राम जी के तहत आज हम तिहार मना थी और जीवन के महत्वपूर्ण अंग है पौधा, और पौधा ला हमन मित्र भी माना थी।
0: और मित्र तो है संगे संग जिन जल के सुरक्षा संरक्षण है, यह बहुत ही जरूरी रहते। तो आप मन कौन प्रकार के बूता करा था पानी बचाए के और नदिया है चेक डैम के माध्यम से?
1: बीबी जी राम जी के तहत हमन ला हर गांव में डबरी निर्माण करती, कुआं निर्माण हवे, सोक पीट बना थी, रिचार्ज पीट बना थी। एक हर से जो पानी की स्रोत हवे वो बने रहे जमीनी स्तर में। हमन आज ट्यूबवेल चला चला पानी ला बाहर निकालती, लेकिन
0: तो यह आप मन डबरी निर्माण घलो कराए हो?
1: हाँ, हमन ग्राम कुदरी में करीब करीब 11-12 डबरी निर्माण कराए हैं। ओमाले 12 ऐसा डबरी हवे जेमा पानी तो हवे, ओकर साथ हम मछली भी पालन करा थी, ओकर सेकंड वे आजीविका का साधन भी बन।
0: भैया जय जोहार, आप मन के हमार कार्यक्रम में आकाशवाणी गांव में नाम बतावा।
2: मैं ईश्वर सिंह मरावी, ग्राम पंचायत कुदरी से।
0: अच्छा जी, तो आप मन के बूता कार्य थे कौन प्रकार के दायित्व तो है भैया गांव के विकास में ऐला बताता?
2: अब गांव के विकास में यह है कि जहां जहां जैसे जनता की समस्या है, जैसे गली हो गए, रास्ता बाट हो गए, या फिर सिंचाई के संसाधन हो गए, है ना। सिंचाई के संसाधन में डबरी निर्माण कार्य हो कराना है, जहाँ पर जैसे किसान भाई ला अभी खेती किसानी के टाइम में पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके, है ना। तो ऐसे करके काम बूता रहते हमारे ग्राम में।
0: जैसे कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना है
2: जी,
0: कहा एक फायदा गाँव के लोगों ला मिला थे?
2: हाँ हाँ, एक फायदा मिला थे। जैसे कहा जाए किसी खार क्षेत्र में, है ना, और वो खार में जैसे पानी गिरत है तो वो पानी पर्याप्त मात्रा में वो खेत में नहीं पहुंच पाए, या फिर पर्याप्त नहीं फसल न मिल पाए। तो अगर वो क्षेत्र में एक आध दो चार अगर डबरी खोदार जाते कम से कम दूरी दूरी में, तो उन किसान मन ला बहुत लाभ मिल जाते सिंचाई के।
0: अच्छा
2: हाँ, ये टाइप की व्यवस्था।
0: अच्छा, आप मन के हम गाँव में देखे है तो माई लोगन मन समूह के माध्यम से, बिहान समूह से, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से कई ठीक बूता करत हवे, और जिन सुरन है अने जिमी कंद के खेती करे है बिना खजवाए वाला अने खजवावे नहीं, तो एक कैसे करी है नेकर बारे में बतावा ना।
2: एक एकड़ करीब में जगह दिए हैं।
0: वाह वाह,
2: है ना, तो बढ़िया अच्छा से फसल लगा के अब अभी बढ़िया तैयार हो गए हैं। जिमी कंद
0: बढ़िया दिखा थे,
2: बढ़िया दिखा थे।
0: वाह वाह,
2: तेला उम्मीद करे जा सके थे कि उन समूह मन बढ़िया सा फायदा मिली। शासन है जो आवास दे है तो बहुत मन लाभ मिले है, बढ़िया सा अच्छा सा रहा थे।
0: अच्छा अच्छा,
2: एक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।
0: सियानहीन और कौन प्रकार से विकास के बूता यहाँ गांव के विकास करवा था आप मन से सुना था। भैया जय जोहार।
3: जय जोहार,
0: नाम बता है?
3: मैं ग्राम पंचायत अमरपुर GPM जिला के सरपंच हूँ।
0: का नाम है अपन के?
3: मोर नाम है दामोदर परदेसी।
0: अच्छा अच्छा, तो हमें ले बताहा कि आप मन कौन हिसाब से यहाँ सेवा के बूता करते?
3: यहाँ महिलाओं के लिए हवाए स्व सहायता समूह बना के सभी ला लोन मिलते, लोन लेके अपन अपन छोटा छोटा व्यवसाय करके अपन बढ़ाते हैं फायदा ला।
0: यानी बिहान समूह ले जोड़ के कहा?
3: हाँ, बिहान समूह ले जोड़ के सब अपन अपन कार्य करते हैं।
0: स्वच्छता के क्षेत्र में आप मन के ग्राम पंचायत में कौन प्रकार के बूता हुए?
3: शनिवार या रविवार के एक दिन तय कर लेती, तय करके सब श्रमदान करती हम लोग, तालाब में, गली में, कभी नाली में, सब पंच लोग, सरपंच सब पूरा पंचायत बॉडी मिलके, और कुछ गांव के लोग भी महिलाओं सहयोग करते हैं और इला आगे बढ़ावो।
0: जैसे सामूहिक रूप में हम बात करी सामुदायिक शौचालय के?
3: हाँ, सामुदायिक शौचालय बने हवे, 3 ठो है।
0: अच्छा अच्छा,
3: और वहाँ सारी व्यवस्था है, चौक चौरा हम बना के रखे हम,
0: वहाँ
3: सब गाँव मन के कभी रास्ता भैया जवैया है न, कब हो इस तरह में जाके अपन निस्तार करते हैं और बढ़िया साफ सफाई के ध्यान रखा थी।
0: जैसे केंद्र सरकार की योजना चलते बड़का योजना एक ही है प्रधानमंत्री आवास योजना, एकर का स्थिति है?
3: प्रधानमंत्री आवास के बहुत अच्छा यहाँ है, हर गरीब लोगों को जो वास्तव में पात्र है आज उनको बेचारे को आवास मिल गए है, पक्का मन मकान बना के रहते हैं।
4: अच्छा अच्छा।
3: और बाकी कुछ बच गए हैं, वेटिंग लिस्ट में हवा नाम कर बचे।

0: सुतेला भी फिर आ जाही।
1: जैसे आवाज के आप मन उनकर स्थिति घलो सुधरे है।
0: स्थिति बहुत अच्छा सुधरे उनकर, कम से कम आज जो बरसात के समय बढ़िया रह रहे हैं और बड़ा खुश है उन लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से।
1: अच्छा अच्छा,
0: बहुत अच्छा योजना है जो गरीबों के लिए फायदेमंद है। काम अच्छा हुआ थे और जो काम है उसका स्वीकृत कराव थी जी राम जी से। शौचालय बच गए हैं, अभी नवा शादी हो गया है, उनको मन शौचालय पास करावा थी ताकि स्वच्छता का सब ध्यान दे और स्वच्छ रहे, बाहर न जाए, अपन शौचालय में ही जाए सब। यही सब योजना है सरकार की चलावा थी। और जो जो नए नए योजना थे, बकरी पालन है, कुटकुट पालन है, सब जानकारी देवा थी हम लोग ग्राम सभा के द्वारा और लोग बाग आवेदन करते हैं, कुछ लोगों के स्वीकृत होते करवा थी अपन ने।
1: जय जोहार।
0: जय जोहार।
2: संगी हो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के जनपद पंचायत पेंड्रा मा बिहान समूह के महिला मन सक्रिय रूप से काम करत थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से कई प्रकार के आजीविका गतिविधि घलो करते हैं। एमा बताई आप मन ला के विष्णु भोग धान ले संगे संग चंदन ले घलो राखी तैयार करा था, कैसे तैयार करा था एकर बारे में बताएं। जय जोहार।
3: मेरा नाम रूपा राठौर है। हम लोग विष्णु भोग धान और विष्णु भोग के चावल से राखियां निर्माण कर रहे हैं। हमको ट्रेनिंग मिला हुआ था जनपद पंचायत पेंड्रा में और ट्रेनिंग 2 दिवस का था। 2 दिवस ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोगों ने राखियां निर्माण करने स्टार्ट किए। राखियों जिस तरीके से हम राखी बना रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभी विभागों में प्रचार प्रसार किए, जिसके लिए हम लोगों को और ऑर्डर्स मिलते गए और अभी हम लोगों को 5,000 का ऑर्डर मिला है। हम लोग 4,000 राखियां बेच चुके हैं, अलग अलग राखियों का प्राइस रखा हुआ है और 5,000 का ऑर्डर और मिला है। साथ ही साथ हम लोग एक यूनिक राखियां बनाना स्टार्ट किए हैं, वो है चंदन की राखियां। हम लोग चंदन की लकड़ी कलेक्ट किए हुए हैं, उसके बाद उसको कटिंग करके फिर उसमें भी धान को चिपकाए हैं उसमें गोंद के माध्यम से और राखी हम लोग बना रहे हैं। जो नॉर्मल जो राखियां हैं जो धान का बना रहे हैं और चावल का, उसके अपेक्षा इसका जो रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है। और क्योंकि वो चंदन है, सफेद चंदन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इस प्रकार से हम लोग जो भी समूह की जो दीदियां हैं बिहार योजना के अंतर्गत हम लोग सशक्त हो रहे हैं।
4: मेरा नाम चमेलीपुरी है, ग्राम कुदरे से हूँ और हम लोग विष्णु भोग धान और चावल से राखियां बना रहे हैं।
2: कतेक मेहनत लगा थे, का सामान आप मन प्रयोग करा था?
4: धान से और चावल से, उसमें हम थोड़ा थोड़ा कलर किए हैं, तो वही सेमी पत्ता हो गया, लाल भाजी, पालक भाजी, इन सब चीजों से कलर करके हम लोग बना रहे हैं राखियां और उसमें थोड़ा थोड़ा स्टोन लगाए हैं मार्केट से।
2: काना है आपन के?
5: मोर नाम दुर्गा राठौर है।
2: अच्छा, आप अमन बिहान समूह ले जुड़े हा?
5: हाँ, हमन बिहान योजना में जुड़े हा।
2: कै साल हो गए जुड़े?
5: 17 से जुड़े हमन।
2: तो आनी बानी के बूता करत हुआ है मा?
5: हाँ, हमन आनी बानी के बूता करत और हर रंग बिरंगे राखी बनावा था हमन, हर अच्छा अच्छा मतलब डिजाइन से बनावा थी ताकि हमारे राखी अच्छा से अच्छा रेट से बिक सके।
2: जैसे की एमा चंदन की राखी की शुरुआत घलो करे है, कौन प्रकार के मतलब ध्यान रखा अने कोनो प्रकार के एक एक ठीक राखी है, धान के जिन टुकड़ा है यह झन टूटा है, सावधानी का बरत?
5: हम राखी बनावा थन जैसे राखी के हर कोना को एक तरफ घुमा के बना थन जेमा की हमारे राखी है अच्छा से दिखे और अच्छा से रेट से बिके करके, तो हम राखी को आनी बानी के कलर लगा के और अच्छा तरीके से बनावा थी।
6: मेरा नाम शशिकिरण यादव है और मैं ग्राम अमरपुर से हूँ। जैसे कि हम राखी बना रहे हैं तो हमको राखी में जैसे बना रहे हैं तो हम लोग धान का यूज कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसमें हम धान के डंडी को देखना है हमको कि हम किस तरह से जैसे लगा रहे हैं। हाँ, तो हमको कलर भी कर रहे हैं तो कलर को भी देखना है और कलर भी करके उसको लगा रहे हैं, तो जैसे कलर है तो धान के डंडी को भी देखना है हमको और उसे हम अच्छी तरह से देख करके लगा रहे हैं और राखी बना।
2: तो कहे जाए कि राखी बनावा था, आनी बानी की बूता करा था ना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से।
6: सरकार की योजना बहुत ही अच्छा लगते और समूह में जुड़ के हमको बहुत ही अच्छा लगा।
2: संगी हो महिला मन लगातार सशक्त होती आनी बानी के बूता करके, ऐसे RCT के माध्यम से घलो प्रशिक्षण दे के ओमल्ला सशक्त करे जाते और कोनो प्रकार के आजीविका ले जोड़े जाते।
7: मेरा नाम दीपक मीणा है, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही से RCT में फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पे निरंतर आजीविका से संबंधित महिलाओं के कृषि से संबंधित तरह तरह के प्रशिक्षण कौशल विकास से संबंधित दिए जाते हैं जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश अनुसार होता है।
2: अच्छा अच्छा, जैसे कि आप

0: कहा था कृषि सखी कृषि ले संबंधित पशु सखी के प्रशिक्षण घलो अभी जैसे कृषि सखी में कौन कौन बात के प्रशिक्षण देता और एक करे के बाद महिला मन कौन प्रकार के काम बूता में जुड़ते हैं जैसे रोजगार मिलते हैं।
1: हमारे जिले में पशु सखी की ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें हमने पशु सखियों को ट्रेनिंग में सिखाया कि वैक्सीनेशन किस तरीके से किया जाता है, पशु आहार पे हमें ध्यान देना है, इसके बाद हमें दूध उत्पादन के लिए कैसे बढ़ोतरी होती है, किस तरह से उनका हमें इलाज वगैरह है, इन सब के बारे में उनको प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद उनको एक प्रमाण पत्र दिया गया है जिससे वो सफलतापूर्वक पशुपालन विभाग के कोऑर्डिनेशन के द्वारा वो अपना ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर पे जाके लोगों को जानकारी दें, पशुओं को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चीजें उनको अपनानी चाहिए उसके बारे में उनको सिखाया।
0: तो कतेक दिवस के रहते?
1: ये 15 दिवसीय हमारा प्रशिक्षण था जिसमें हमने थ्योरी पे प्रैक्टिकल के माध्यम से भी सिखाया गया है। हमने पकरिया हमारा जो फार्म हाउस है वहाँ पे बकरी पालन और पशुपालन को जो विशेषज्ञ देखते हैं उनके द्वारा उनको प्रैक्टिकल भी करवाया गया है। कृत्रिम गर्भाधान के बारे में प्रैक्टिकल के द्वारा सिखाया गया, क्या सही समय पे उपचार करना चाहिए इसके बारे में उनको जानकारी दी गई।
0: प्रशिक्षण उपरांत रोजगार के क्या व्यवस्था रहते?
1: अभी जो भी लोग हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसके बाद जैसे कि अगर जनपद या जिला अधिकारियों के द्वारा उनको कोई निर्देश दिया जाता है कि आप जिले में ये गतिविधियाँ कीजिएगा उससे संबंधित वो सभी करते हैं, और इसके अलावा वो अपना स्वयं का भी अगर व्यवसाय करते हैं तो बैंकिंग प्रणाली के आधार पर उनको लोन की सुविधा बैंक के द्वारा मिलती है। हमारे सभी बैंकों को ये निर्देश दिया गया है कि जो भी कौशल विकास का प्रशिक्षण कर रहे हैं उसके बाद वो जाके अपने स्वयं की आजीविका बढ़ाने के लिए स्वरोजगार से संबंधित या सब्सिडी से संबंधित लोन का प्रावधान उनको दिया जाएगा।
0: चला बढ़िया बात बताया है आकाशवाणी ला जानकारी में। जय जोहार।
1: जय जोहार।
0: तो आकाशवाणी गांव के क्रम यह सिरावत है बैसाखू के। राम राम। जय जोहार।
2: जय जोहार।
3: अभी आप मन सुने आकाशवाणी गांव में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के किसान और कृषि विशेषज्ञ मन से बैसाखू भाई गोट बात करते से रिकॉर्डिंग भी और संपादन बैसाखू भाई करी से प्रस्तुति और संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारती के रही से। मौसम ला बता दे थन आप मल्ला आज के अधिकतम तापमान है 25.4 डिग्री सेल्सियस और कम तापमान है 24.6 डिग्री सेल्सियस। मंडी में तो ज़्यादा नहीं आए हैं। बिलासपुर जिला के तखतपुर मंडी में गेहूँ लोकल है 2300 रुपया है और कोरबा जिला के कटघोरा मंडी में गेहूँ मीडियम है 2800 ले 3200 रुपया प्रति क्विंटल है। ये तो हो गए संगवारी हवा। अब चला सुघर कस एक ठन गीत सुन लेथन जे लगा थे जनक राम साहू और संगी।

0: भाई बहनी हो, अभी सुघर गीत सुने हो जेला गात इस जनक राम साहू और कर संगी। सूचना लिख पे फिर बता देथन, प्रत्येक शुक्रवार के संझा 7:30 ले फोन इन मक आधारित कार्यक्रम प्रसारित करे जाते। एमा किसान भाई बहनी मन कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपन स्वास्थ्य ले संबंध समस्या के समाधान पाए बर विशेषज्ञ मन में फोन में सवाल पूछते। तो काली गुरुवार के 20 तारीख आए स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर गीत शर्मा उपस्थित रही। इकर संग बिहनिया 10:30 ले 11 के सवाल पूछे की विषय रही धान रोपाई ब्यासी में खरपतवार नियंत्रण। ये विषय ले संबंधित जिन भी समस्या हुई उकर समाधान पर फोन लगा। फोन नंबर हवा 2665592 और एक ठन नंबर है 3100026। फोन लगाए के पहले स्टूडियो स्टीडी कोड लगा 07752। अब ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग हो ही और संझा एल कार्यक्रम ला आप मन सुन सकत हो 7:30 ले 8 तक। अब एकरे संग ग्राम सभा के बेरा हो गए। झोका गौरी बहनी के राम राम जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्राम सभा कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। रात के 8 को हैं। अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति कैच द रेन कैंपेन, ऊर्जा धानी कोरबा अब जल धानी भी। आलेख वाचन और प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की, सहयोग महावीर बरगाह का।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 8 हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम कैच द रेन कैंपेन, ऊर्जा धानी कोरबा अब जल धानी भी। भेंट वार्ताओं पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। प्रायोजक हैं नगर निगम कोरबा। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

आसमान से झर झर गिरती बारिश की बूंदें अपने साथ ये सवाल भी लाती हैं कि क्या ये बूंदें जमीन के भीतर भी उतरेंगी या फिर हमारे कंक्रीट के जंगलों से बहकर दूर चली जाएंगी। ये बारिश प्रकृति की सौगात है और इसे सहेजना हमारी जिम्मेदारी। कैच द रेन कैंपेन, जब भी गिरे जहां भी गिरे थाम ले हम इस बारिश को।

0: कैच द रेन कैंपेन ऊर्जा धानी कोरबा अब जल धानी भी। प्रधानमंत्री महोदय द्वारा देश में गहराते जल संकट को देखते हुए कैच द रेन कैंपेन की गहन शुरुआत पूरे देश में की गई। हाल ही में रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में इस कैंपेन की उल्लेखनीय सफलता के बारे में बताते हुए जब उन्होंने छत्तीसगढ़ की कोरबा नगरी का उल्लेख किया तो हम सभी का मन गौरव से भर गया। देश के कई राज्यों को रोशन करती छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी और औद्योगिक नगरी कोरबा आज अपनी एक अलग पहचान के साथ देश के सामने आई है। लगातार कई दशकों से हो रहे औद्योगिक विकास और कोयला उत्खनन ने विकास की इबारत लिखने के साथ ही इस नगरी को प्रदूषण और जल संकट जैसी गंभीर समस्याओं के बीच ला खड़ा किया। लेकिन इरादे यदि पक्के हों और सही दिशा में काम किया जाए तो स्थितियां बदलते देर नहीं लगती, और यही सब कुछ आज इस नगरी कोरबा में हुआ है। प्रशासनिक दूरदर्शिता, नई तकनीक और परंपरागत तरीकों के मिश्रण और पुनर्गठन, जन प्रतिनिधियों और जन सामान्य की सतत भागीदारी के साथ कोरबा ने आज पूरे देश के सामने कैच द रेन कैंपेन के द्वारा भूजल संग्रहण और संवर्धन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है जो सभी के लिए सुग्राह्य है और अनुकरणीय है। आइए ऊर्जाधानी कोरबा की जलधानी बनने की इस यात्रा से जुड़ते हैं और मुलाकात करते हैं उस पूरी टीम के सदस्यों से जिन्होंने अपनी एकजुटता और संगठित प्रयास से असंभव को संभव किया और कोरबा के विकास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ा। प्रधानमंत्री महोदय द्वारा पूरे देश में कैच द रेन कैंपेन के शुभारंभ के साथ ही कोरबा में इस कैंपेन के द्वारा पूरे शहर के कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया कोरबा के नगर निगम आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री आशुतोष पांडे ने।
1: बचपन में हमें खेल खेला करते थे, घो घो रानी इतना इतना पानी, तो उसमें जो बच्चे रहते थे उनके शरीर के लेवल से पानी बढ़ता जाता था, फिर वो उसको पकड़ते थे जो कि पानी का नुकसान करता था। तो ये कहानी अचानक से मेरे जहन में आती है। मैं यहाँ 1.5 साल से लगभग पदस्थ हूँ और देखा यह शहर इतना विस्तीर्ण है, इतना विस्तार है इसका, और यहाँ तमाम PSUs यहाँ पर अपना कारोबार फैलाए हैं, लेकिन जो जमीन का पानी है वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे चला गया है। लगभग हमने यहाँ जांच कराई तो 600 फीट से भी नीचे चला गया
2: जी।
1: तो ऐसा लगता है जो यहाँ पर हसदेव नदी है जो 4 महीने अपना पानी यहाँ पर, जिसका बहाव में यहाँ पर कोरबा झेलता है, उस सरफेस वाटर को इतनी तेजी से हम सरपास कर देते हैं और उसका यूज नहीं कर पाते। यहीं से एक आइडिया आया था कि क्यों ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगातार मजबूत बनाया जाए। इसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जो अमृत मिशन के तहत जो 75 शहर हैं उनमें से 9 शहरों को पहली मर्तबा यहाँ पर एक टारगेट दिया गया कि किस तरीके से आप इसरो के माध्यम से और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से ऐसे स्थानों का चयन करें और वहाँ कुछ ऐसी युक्ति भिड़ाएं ताकि जमीन में पानी को रोका जा सके।
0: भूजल संरक्षण और संवर्धन के पारंपरिक तरीकों की जानकारी तो हमें है, लेकिन वर्तमान समय में जब अंतरिक्ष में हमारे उपग्रह धरती की स्कैनिंग कर सकते हैं, इसरो के द्वारा धरती की स्कैनिंग कर शैलो इक्विफर मैनेजमेंट का ये तरीका कितना कारगर हो सकता है, इसका उदाहरण है कोरबा का कैच द रेन कैंपेन।
1: अमृत मिशन के तहत जो 75 शहर हैं उनमें से 9 शहरों को पहली मर्तबा यहाँ पर एक टारगेट दिया गया कि किस तरीके से आप इसरो के माध्यम से और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से एक ऐसे स्थानों का चयन करें और वहाँ कुछ ऐसी युक्ति भिड़ाएं ताकि जमीन में पानी को रोका जा सके। तो इस पे हमने काम करना शुरू किया, 10 स्थलों की पहचान की, और उसके बाद ये जो तकनीक है शैलो एक्वीफायर मैनेजमेंट का, जिसको कैच द रेन इफ यू कैन कहा जाता है, तो इसके तहत हमने स्ट्रक्चर्स बनाए और हमने विषय विशेषज्ञों को बुलाया, इसरो से यहाँ पर आए वैज्ञानिक आए और बाकी

0: जो हमारे इंजीनियर्स हैं जो अमृत मिशन का काम देखते हैं, हमने इसको चार भागों में बांटा। सबसे पहले तो इन 10 स्थानों का चयन किया, और योजनाएं तो शहरों में बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं, करोड़ों की योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लेकिन जो जादू करती हैं वो बहुत छोटी, 50,000 से लेके 5 लाख तक के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनका ही मैसेज जो जाता है वो ऊपर तक जाता है। शायद प्रधानमंत्री जी को यही चीज़ पसंद आती है और वो उनका जिक्र करते हैं, तो हमारे लिए तो वो गौरव भरा क्षण था।
1: अमृत मिशन 2 में कोरबा के चयन के साथ ही शैलो एक्विफर मैनेजमेंट यानी सैम का काम बड़ी जोरों से शुरू हुआ, बता रहे हैं इस पूरे अभियान के नोडल अधिकारी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री राकेश मसीह।
2: मैम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये कोरबा जो है एक औद्योगिक नगरी है, और कोरबा में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं और साथ में कोल माइंस है। माइनिंग के कारण हमारे जो कोरबा का जल स्तर है वो लगातार गिरते जा रहा है। तो इसके संबंध में जितने अमृत सिटीज़ हैं उसका एक सर्वे हुआ, और इस सर्वे के लिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद से, जो कि इसरो की संस्था है, उनसे संपर्क किया और उनको निर्देशित किया कि कोरबा में जो भूजल का जो स्तर है नीचे जा रहा है उसको कैसे मैनेज करें, उस चुनौती से कैसे हम पार पाए। और उसके लिए उन्होंने एक सर्वे कराया और एनआरएससी की टीम यहाँ आई हैदराबाद से, और पूरा साल भर उन्होंने मानसून के पहले और मानसून के बाद सर्वे किया, और उन्होंने जो अंतर देखा कि जो लगातार भूजल का स्तर नीचे जा रहा है तो कैसे उसको हम मेंटेन करे करके फिर रिचार्ज वेल करने का एक सुझाव दिया, और अलग अलग 10 पॉइंट में उन्होंने हमको बताया। फर्स्ट फेज में हमको 10 पॉइंट का अलाटमेंट महुआ के थ्रू मिला, तो उसके आधार पर उन्होंने आके जगह सेलेक्ट किया कि कैसे हमारा रेन वाटर जो है बारिश के दिनों में बह के नाला के थ्रू नदी में बह जाता है, और दिनों दिन एक पूरा शहर कंक्रीट होते जा रहा है, तो हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं हो पाता कंक्रीट के कारण, और सीधा नदी में पानी चले जाता है। तो हम इंजेक्ट वेल बोर के थ्रू रिचार्ज पीट बनाए और हमारे ग्राउंड वाटर में को रिचार्ज करें, इसके लिए एक उन्होंने सुझाव दिया और उसके आधार पर हमने प्रपोजल बनाया।
3: हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इंजेक्ट वेल आपने कहा है ये किन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, उसके लिए कैसे आपने निर्णय लिया और इसका खर्च आपका कितना आया, कैसे ये सब काम शुरू हुआ?
2: मैम, जो हमने इंजेक्ट वेल बनाया है इसको पर इंजेक्ट वेल 5 लाख की लागत आई है। इसमें जो इंजेक्ट वेल है तो हम देखेंगे रोड साइड में तो बहुत मात्रा में पानी बह जाता है, वो वेस्ट हो जाता है, किसी भी तरीके से हमारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कराता। तो हमने ये सोचा कि क्यों न हम इन इन पॉइंट में जहाँ पर बहुत मात्रा में पानी बह के नाले में जा रहा है उससे पहले एक बोरवेल करें। 3 चैम्बर हमने बनाया। फर्स्ट फेज में हमारा एक चैम्बर आया, उस पर पानी छन के डिसिल्टिंग चैम्बर में आया, अगर उसमें कुछ कचरा है तो डिसिल्टिंग चैम्बर में रुक जाएगा, और उसके बाद उस डिसिल्टिंग चैम्बर में भी हमारे ग्रेवल्स हैं, उससे छन के पानी हमारा मेन इंजेक्ट वेल के वेल में जाएगा। लगभग हम 150 फीट बोर किए और उसके चारों तरफ हमने पीट बनाया 5 मीटर का, और उससे उसमें हम अलग अलग साइज के ग्रेवल्स डाले। हमारा जो बोरवेल का केसिंग है वो परफोरेटेड था, और वहाँ पे भी हमने 4 लेयर के उसमें ग्रेवल्स डाले हैं, उससे छन के पानी जो है हमारा जो बोर किए हैं 50 मीटर या 150 फीट उसके थ्रू वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। इससे क्या है, हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल मेंटेन रहता है, और इसको हम ईयरली बरसात के पहले एक बार सफाई करेंगे, जितना हमारा ग्रेवल डला है उसको अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे, छानेंगे, और उसमें फिर से उसको हम उस लेयर वाइज पीट में डालेंगे ताकि वो चोक ना हो, फिर नेक्स्ट ईयर में वो अच्छा से हार्वेस्टिंग का काम करे, तो एक बैंक की तरह हमारे उसमें ग्राउंड में रहेगा, तो हमारा भविष्य के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा।
1: सारे सरकारी भवनों की छतों पर आ रहे बारिश के पानी को इकट्ठा कर भूजल संवर्धन का एक हिस्सा बना दिया गया है, और अब सरकारी के अलावा गैर सरकारी इमारतों में भी ये बात लगातार लागू हो रही है। पुराने सूखे पड़े बोर को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास कोरबा में लगातार चल रहा है।
0: हमने जब इसको चार भागों में बांटा तो हमें उस

0: मैं यह अंदाजा नहीं था कि इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय लेवल पर पहचान मिलेगी। पहला तो सेलो एक्वीफायर मैनेजमेंट का काम, 10 जगहों पे रिचार्ज जो हमारा इंजेक्ट वेल पद्धति से हम बनाते हैं, उससे हमारा जो वाटर लेवल है वो लगभग 3/4 तक बढ़ा है।
1: क्या बात है।
0: साथ ही स्कूलों में, आंगनबाड़ी में, सामुदायिक भवनों में हमने 1,000 से ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काम शुरू कर दिए। कुछ ऐसे जो तालाब थे जो कि सूख चुके थे उनका काम शुरू किया, और जो

0: वाटर हार्वेस्टिंग के काम शुरू कर दिए। कुछ ऐसे जो तालाब थे जो कि सूख चुके थे उनका काम शुरू किया, और जो पहले हमको जो बोरवेल्स मिले थे जब यहाँ पर वाटर स्कीम चालू नहीं हुई थी तो कुछ बोरवेल्स थे। देखा जाए कहीं ना कहीं तो बोरवेल का काम पर्यावरण को क्षति पहुँचाना ही है। हम धरती के छाती से पानी निकालते हैं और उसको अपने लिए यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि जो बोरवेल हमारे थे अत्यधिक दोहन, क्षरण और खनन, इससे ये पानी जो था वो डेड हो गए हैं। तो हमने उनके रीड्रिलिंग की योजनाएं शुरू की और 95 से अधिक जो डेड बोरवेल हैं उनकी रीड्रिलिंग पे काम किया जा रहा है। साथ ही लगभग 1728 जगहों पे जिसमें सरकारी और निजी दोनों इमारतें थीं उन पे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत ही कड़ाई से लागू किया। तो ये चारों पायदानों पे हमने काम करना शुरू किया और इस वर्ष हमने एक साल के अंदर जो पानी का जो कहा जाए भूजल स्तर है उसको काफ़ी उन्नत पाया और अब टेल एंड पे भी पानी जो है वो बखूबी जाता है। और अभी हमारे पास नगर निगम में हमारी जो वाटर ऑगमेंटेशन स्कीम है उसको हम 20 MLD और बढ़ा रहे हैं
1: जी।
0: तो इस तरह जो हमारे एक व्यक्ति को, जो हमारी लगभग 3.5 लाख की जनसंख्या है उसमें एक व्यक्ति को लगभग 200 लीटर पानी हर दिन यूज़ का मिलेगा, जो अभी 135 लीटर था। 52,000 से अधिक जनसंख्या इससे लाभान्वित होगी और 11 वार्ड इसमें जुड़ जाएंगे। बहुत सारे इस पे स्कीम्स पे ओवर हेड टैंक बनाने के भी काम चल रहे हैं।
2: कोरबा में NTPC के सहयोग से प्रदूषित पानी को शुद्ध कर पुनः उसके उपयोग और विक्रय की योजना के बारे में हमें बता रहे हैं नगर निगम कमिश्नर।
0: NTPC हमारा स्टेक होल्डर है, PSU है। तो NTPC जो पानी यूज करता था अपने तकनीकी क्रियाओं में
1: जी।
0: ब्लास्ट फर्नेस जो बॉयलर वगैरह है उनमें वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। डिस्टिल्ड वाटर की कीमत आप जानती हैं, तो उनके पास एक ऐसी इनको टारगेट मिला कि क्यों ना जो आपका कॉरपोरेशन है नगर निगम, क्योंकि पानी की सफाई, पानी को की उपलब्धता और पानी की क्वालिटी मापने का काम नगर निगम ही करता है या स्थानीय स्वायत्त निकाय करता है। तो हमने उनसे MOU किया कि हमको आप फुल डिपॉजिट में काम दीजिए, हम आपको पानी पूरी तरीके से डिस्टिल करके देंगे, आश्रित जल हम आपको देंगे जिसको आप अपने प्लांट में यूज कीजिए। लगभग 200 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई इससे, जिसमें 100 करोड़ एक तो टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का है और उसके आगे के लगभग 115 करोड़ जो हैं, 111 करोड़ ये उसके मेंटेनेंस के लिए और ऑपरेशन के लिए जो 15 साल तक चलेगा। और ये जब बन के तैयार हो जाएगा, अभी हम अमृत 2 पे STP पे काम कर रहे हैं, सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट। 11 जगहों के नालों को हमने साफ करके फिर उस पानी को नदी में छोड़ने का उपक्रम निर्धारित किया है। जैसे ही ये बन जाएगा हमारा STP प्लांट जो 60% कंप्लीट हो गया है, हम टर्सरी पे चले जाएंगे। तो जो तृतीयक शुद्धिकरण होता है उस प्लांट के जरिए हम पूरे जल को डिस्टिल वाटर में चेंज कर देंगे और ये 7.5 रुपए पर किलोलीटर के दर से हम NTPC को सेल करेंगे
1: जी जी।
0: तो इसको विन विन सिचुएशन बोलते हैं, जो आम के आम गुठलियों के दाम। तो हसदेव नदी जो तो माँ के समान ही है कोरबा के लिए, जीवनदायिनी है, उसके पानी को पूरी तरीके से साफ करके और NTPC को उद्योग को दिया जाना, यही इस शहर की पहचान बनेगी। और ये TTP प्रोजेक्ट जो है ये भारत में बहुत कम जगहों पे, 10 या 12 जगहों पे है, छत्तीसगढ़ में कोरबा में तैयार हो रहा है।
2: शहर के नालों से नगर की जीवन रेखा हसदेव नदी प्रदूषित हो रही थी। इस प्रदूषित जल से हसदेव नदी को बचाने का अभिनव प्रयास और उपचारित पानी का उपयोग, ये दोनों ही बातें शहर के विकास का आधार बनी, बता रही हैं कोरबा की महापौर श्रीमती संजू रानी देवी राजपूत।
3: जो हमारे कोरबा शहर में 11 नाले हैं, इतनी सारी जो गंदे पानी है वो हमारे हसदेव नदी को भी दूषित करती थी, उसको भी हम लोगों ने प्रदूषण मुक्त करने का काम हमारा कोरबा नगर निगम कर रहा है। उसका बचाव हम लोग यही जो हमारा STP के माध्यम से, हमारा कोरबा नगर निगम NTPC के माध्यम से 11 नाले को जोड़ के, जो NTPC अपने प्लांट में लेके और उस गंदे पानी को वो शुद्धिकरण करके अपने प्लांट में उपयोग भी करेंगे,
1: तो उससे नगर निगम को क्या फायदा हो रहा है?
3: राजस्व में भी वृद्धि होगी, तो हमारे

0: बहुत सारे कोरबा शहर के लिए अन्य कार्य हैं जिसको कि हम लोग उस पैसे से उस कार्य को करेंगे हमारी जनता के लिए।
1: क्या बात है। और पर्यावरण को भी हमें प्रदूषण मुक्त करना है, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना है, इस संदर्भ में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी?
0: कोरबा शहर में अभी आप देख सकते हैं एक पेड़ माँ के नाम रोजाना पेड़ लगाया जा रहा है, जो कि हमारे पूरे शहर में लगाए जा रहे हैं, चाहे वो दुकान हो उसके बाहर में, किसी के घर के बाहर में। मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हम प्रदूषण से बचाव कर सके उसके लिए एक पेड़ माँ के नाम आप जरूर लगाएं। हमारे छत्तीसगढ़ में पानी की कमी नहीं है, पानी को हम बचा सकते हैं, बरसात का पानी को। ये सब कार्य जो हो रहे हैं हमारे शहर के लिए, आने वाले समय के लिए, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अच्छा कार्य हो रहा है।
1: कैच द रेन कैंपेन के द्वारा भूजल संवर्धन और स्वच्छता अभियान ने नगर में बड़ा परिवर्तन लाया है, बता रहे हैं नगर के निवासी डॉक्टर संजय अग्रवाल।
2: वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, कैच द रेन जो कैंपेन चल रहा है उसके बारे में, मैं पिछले 40 वर्षों से इस शहर में रह रहा हूं और यहां पे इतना ज़्यादा प्रदूषण की वजह से, खनन की वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है, वृहद रूप में प्लांटेशन का काम किया है, तो उससे हमारे शहर का ग्राउंड लेवल वाटर लेवल काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जो छोटे छोटे जो तालाब हैं, जो पोखरी हैं, उन्हें भी साफ करें ताकि इस वर्षा ऋतु में वहां पे भी पानी का संचय हो सके, जो हमारे ग्राउंड लेवल वाटर को और इम्प्रूव करेगा। और हमारी अगर कोई मदद चाहिए तो हमेशा प्रयास रहेगा कि हम इसमें अपनी भागीदारी दे सकें, जिम्मेदारी निभा सकें।
1: लेकिन वो किस तरह की जिम्मेदारियां हैं?
2: सबसे पहले तो प्लांटेशन करें, जहां पे भी आपको खाली जगह दिखे वहां पे पौधारोपण वृक्षारोपण करें, जो लोग पेड़ काटते हैं उन्हें हम रोकें, अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं ताकि हम अपने जो बोरवेल्स हैं उसको हम लोग रिचार्ज कर पाएं, हम अपने आसपास सफाई रखें, नालों की साफ सफाई रखें और लोगों को ये प्रेरित करते रहें कि हमें पानी को बचाना है, क्योंकि पानी है तो जीवन है। कैच द रेन का जो टैग लाइन है, जहां बारिश गिरे उसे वहीं पकड़िए और उसको संचय करिए, इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए।
1: जल संरक्षण और संवर्धन और स्वच्छता अभियान में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जन भागीदारी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ के निवासी श्री मनीष गुप्ता।
3: बचपन में मुझे याद है कि सब तरफ यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे और लगभग जंगल सा ही लगता था, कहीं भी निकलने से हम लोग को हरियाली बहुत दिखती थी। इंडस्ट्रियल बेल्ट है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आई तो जंगल कटते गए, प्रदूषण बढ़ता गया। यहाँ पे कैच द रेन स्कीम जो आई और निगम की पूरी टीम ने उसको जिस तरह से पब्लिक के बीच लेके गए, उसका क्रियान्वयन किया, वो बहुत ही सराहनीय रहा। इसके लिए कई ड्राइव चला है, पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं, जन जागरण के लिए मैराथन भी हुआ था जिसमें बहुत लोगों ने भाग लिया था। उसके बाद इनकी जो वाटर हार्वेस्टिंग की स्कीम आई, लोगों को जागरूकता बढ़ी तो लोगों ने अपने आप भी किया। मेरे को लगता है इसी का परिणाम है कि वाटर लेवल कोरबा का ऊपर आ पाया है। जल है तो जीवन है, ये तो जिंदगी का सार है। जब तक शुद्ध जल नहीं मिलेगा तो उसके दुष्परिणाम बहुत सारे हैं। जल यदि आसानी से मिलता रहे लोगों को तो उसके परिणाम बहुत सुखद रहते हैं। अच्छा पानी मिलेगा, बीमारी कम होंगी, हेल्थ अच्छा रहेगा, तो उससे चौमुखी विकास संभव हो पाता है। मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ईमानदारी से प्रयास करें।
1: जन भागीदारी से अभियान को बल मिलता है और ये लंबे समय तक चलता है, उल्लेख कर रहे हैं नगर निगम आयुक्त श्री आशुतोष पांडे।
4: इसके साथ अगर जन भागीदारी की बात करें तो हमने मिशन वरुण चलाया, जैसा वरुण देव जल के देवता है, तो हमारा जो वाटर टैक्स कलेक्शन था उसके लिए लोगों में उदासीनता थी। हमने जल संरक्षण का उनको लगातार कैंपेन किए और उसके फायदे बताए, जल को पूरी तरीके से रुके हुए जल, ठहरे हुए जल, उसको भी साफ किया, पीने के पानी के रोटेशंस बनाए, हर जगह एक जो है वहाँ पर हमने एक नोडल टीम तैयार की जो 24 घंटे सातों दिन किसी भी पार्षद के, किसी जनप्रतिनिधि के, किसी नागरिक के एक कॉल पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इस तरह हमने उनको राजी किया, 200 रुपये प्रति महीने जो आवासीय हैं और 600 रुपये प्रति महीने जो व्यावसायिक हैं।
5: क्या बात है।
4: तो हमने

0: सामान्य सभा में इस प्रस्ताव को लाकर और एक रेट तय किया जिससे कि उन्होंने वाटर टैक्स देना चालू किया। लगभग 4 से 10 गुना इसकी वृद्धि हुई, जो पहले 4% था वो 40% तक अभी आ गया है। इसके साथ साथ उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया, तो मिशन वरुण की भी आशातीत सफलता मिली।
1: युवाओं और बच्चों को इस अभियान से जुड़ने के विशेष प्रयासों का उल्लेख कर रहे हैं नगर निगम आयुक्त।
0: अभी स्कूलों में लगातार हम इस चीज को अपने उसमें रखते हैं, अपने एजेंडा में रखते हैं, चाहे वो ट्रैफिक की बात हो या जल संरक्षण की बात हो या स्वच्छता की बात हो। हम इसके लिए सारे स्कूलों में डीओ जो हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, और जो मुख्य जिला कार्यपालन अधिकारी हैं, जो सीओ हैं, उनके साथ मिलकर क्विजेज कराते हैं। साथ ही हमने अभी रन फॉर ग्रीन कराया
1: जी।
0: एक ग्रीन रन का प्रोग्राम कराया, मैराथन का, इसमें भी स्कूली बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। एक सबसे अच्छा जो जल संरक्षण और सफाई पे हमने स्वच्छता के लिए हमने महासंकल्प कराया, जिसमें 20 मिनट के अंदर 15,500 से अधिक बच्चों ने, नागरिकों ने मिलकर एक 250 मीटर लंबे बैनर पर एक साथ साइन किया।
1: क्या बात,
0: जिससे कि वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन पाया और हमारा नाम जो है पहले शहर के रूप में महासंकल्प अभियान में दर्ज हो सका।
1: जन प्रतिनिधियों ने इस पूरे अभियान में अपनी सतत भागीदारी निभाई है। कोरबा के MIC सदस्य और पार्षद श्री हितानंद अग्रवाल बताते हैं,
2: कैच द रेन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नवाचार सोच, किस प्रकार से भूजल स्तर को ऊपर उठाया जाए, इसके लिए पूरा भारतवर्ष प्रयास कर रहा है। इसी में कोरबा नगर निगम एक अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और यहाँ का जो सिस्टम है, मैं चाहूँगा पूरे देश के नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत इसको एडॉप्ट करें, क्योंकि यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है वो आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो बरसात का पानी है उसके लिए घरों घर ये प्रेरणा दी जा रही है कि अपने छत के जल को बोर में आप संग्रहित करिए। यहाँ पे जितना भी निर्माण कार्य कोरबा नगर निगम क्षेत्र में हो रहा है, वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग को जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ बरसात के पूर्व कोरबा नगर निगम के जितने भी नाले हैं सबकी व्यवस्थित साफ सफाई कराई जा रही है। महापौर जी के नेतृत्व में यहाँ पे STP और TTP का निर्माण कराया जा रहा है। हमें 7.5 रुपये पर KL के हिसाब से राजस्व भी मिलेगा, तो वो राजस्व आने से और हमारे कोरबा नगर निगम में कई प्रकार के निर्माण कार्य भी और बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारे कोरबा नगर निगम के द्वारा कैच द रेन इस पे कार्य बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है। सभी लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग अपने घर पे अवश्य बनवाएं, और जिनके यहाँ बोर है वो छत के पाइप को बोर से कनेक्ट कर दें, ताकि बरसात का जो पानी है वो सीधा बोर के माध्यम से भूजल स्तर पे जाए, ताकि भूजल स्तर ऊपर उठे। हमें आने वाली पीढ़ी का सोचना है, क्योंकि जिस प्रकार से जल स्तर नीचे जा रहा है, आने वाली पीढ़ी हमारी सेकेंड थर्ड जनरेशन के लिए और हमारे लिए समस्या पैदा हो सकता है कि हमें पीने के लिए पानी ना मिले। तो जिस प्रकार से कोरबा नगर निगम भूजल स्तर ऊपर उठाने के लिए कैच द रेन अभियान से जुड़ी हुई है, मैं पूरे छत्तीसगढ़ के हमारी और जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि किस प्रकार से हमारा भूजल स्तर ऊपर उठे, इसके लिए सब प्रयास करें।
1: MIC सदस्य श्री तीरथ साहू बड़े आशान्वित हैं इस कैंपेन से।
3: इस कार्य को ऐसे ढंग से किया जा रहा है जिसमें जनता भी खुश है। पानी की जो समस्या था, पानी समस्या के लिए लगातार प्रयास किया, सबसे ज्यादा पानी की समस्या था यहाँ, उस पानी समस्या को जड़ से खत्म हो जाएगा। किसी प्रकार का आगे चल के कोई परेशानी नहीं हो, जल ही जीवन है। इसके तहत आप पानी को बचाइए, अपने अपने नल का टोटी जो खराब है उसको या खुला है उसमें टोटी लगाइए, और टोटी लगा के इस पानी को बचाइए, ताकि अगल बगल पड़ोसी को या दूसरे वार्ड को मिल सके।
1: नगर निगम कमिश्नर श्री आशुतोष पांडे स्पष्ट रूप से मानते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति और असफलताओं से सीख ले नई इबारत लिखने के आत्मबल से ही सफलता की इमारत खड़ी होती है।
0: किसी भी शहर का विकास जो है वो कॉन्क्रीट से नहीं होता, वो होता है पानी की सफाई से, वो होता है वहाँ पर कितने पेड़ पौधे हैं उनके हिसाब से, वो होता है अगर वहाँ जो सबसे पिछली पंक्ति का पिछला व्यक्ति है उसको स्वरोजगार के कितने साधन उसको मुहैया कराया जा सके, वहाँ पर ग्रीन एनर्जी के और सोलर एनर्जी के कितने लोगों ने अपने घरों में और अपने

0: आसपास उसका प्रयोग करना शुरू किया है। इस तरीके से एक शहर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है। भारत में शहर तो बहुत हैं, लेकिन उन शहरों की बात किया जाए जिस पे हम अगर देखें कि विकास के सही पैमानों पे वो अपने आप को चरितार्थ कर पाए हैं, तो बहुत कम शहर रह जाते हैं। तो क्यों ना इसको हम ऐसा करें कि सारे शहर इस दौड़ में शामिल हो सके, और कोरबा ही नहीं, कोरबा की तरह बाकी जितने छोटे नगर हैं, छोटे शहर हैं, वो भी कैच द रेन का हिस्सा बने, सैलो एक्वीफर मैनेजमेंट का अपने यहाँ उपयोग करें, और साथ ही जो नागरिक सहभागिता से उनको आगे बढ़ाएं। क्योंकि वो कहते हैं कि एक पत्थर तबीयत से उछालो यारों, जो आसमान में भी सुराख कर सकते हैं, और कभी भी इस पे घबराना नहीं है। ये एक आंदोलन है, ये निरंतर चलने वाला आंदोलन है। हो सकता है इस पे कुछ विपत्तियां हैं, लेकिन वो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है ना कि सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते हैं, कभी नहीं धीरज खोते, कांटों पर राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं।
1: श्रोताओं, प्रकृति हमें बारिश की सौगात देती है, लेकिन बारिश के इस पानी का भविष्य तय करना हमारे हाथ में है। बारिश को सिर्फ देखना नहीं है, उसे थामना भी है। पानी का सिर्फ उपयोग ही नहीं करना है, उसे धरती को लौटाना भी है। और विकास को सिर्फ गगनचुंबी इमारतों में नहीं देखना है, बल्कि जीवित जल स्रोतों में, स्वच्छ पर्यावरण में, स्वच्छ हवा, पानी, मिट्टी और हरे भरे पेड़ों से आच्छादित इस धरती में भी देखना है। और जब पानी की एक एक बूंद बचती है, तो सिर्फ पानी ही नहीं बचता, बल्कि एक शहर का भविष्य बदलता है। और यही ऊर्जाधानी कोरबा ने कर दिखाया है। तो क्यों ना हम सब भी एक कदम बढ़ाएं, फैलाएं हरियाली, उगाएं जंगल, बुलाएं बारिश को, और आसमान से गिरते इस पानी को सहेज लें, संभाल लें इसे धरती के भीतर, कि आने वाली पीढ़ियां हमसे ये न पूछें कि तुमने हमारे लिए क्या छोड़ा है। अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ताओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम कैच द रेन कैंपेन, ऊर्जा धानी कोरबा अब जल धानी भी। आलेख वाचन और प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की, सहयोग महावीर बरगाह का।
2: प्रायोजित कार्यक्रम कैच द रेन कैंपेन, ऊर्जा धानी कोरबा अब जल धानी भी, भेंट वार्ताओं पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन, सहयोग महावीर बरगाह का था, और प्रायोजक थे नगर निगम कोरबा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी देर में।
3: अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति कैच द रेन कैंपेन, ऊर्जा धानी कोरबा अब जल धानी भी। आलेख वाचन और प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की, सहयोग था महावीर बरगाह का। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रत्ना का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे हिंदी और बांग्ला फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता उत्पल दत्त को। श्रोताओं, उत्पल दत्त केवल एक अदाकार नहीं थे बल्कि एक क्रांतिक रंगकर्मी भी थे। अधिकतर हम उन्हें कॉमिक टाइमिंग के लिए जानते हैं और विविधतापूर्ण अभिनय के लिए हम उन्हें याद करते हैं। उत्पल दत्त की हास्य अदाकारी उनकी रचनात्मक स्मारक देखने को मिलती है ऋषिकेश मुखर्जी की कॉमिक कालजयी फिल्म गोलमाल में। उत्पल दत्त अभिनेता के अलावा एक अच्छे लेखक, निर्देशक और नाटककार भी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी उत्पल दत्त कॉमेडी और संजीदा फिल्मों में काम करने के अलावा एक विलेन भी बने। उत्पल दत्त ने फिल्म गोलमाल, रंग बिरंगी, शौकीन,

टी नरम गरम और अंगूर जैसी फिल्मों में जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग का प्रदर्शन किया। उत्पल दत्त ने मुख्यतः सत्यजीत रे, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे महान फिल्मकारों के साथ काम किया।

श्रोताओं, उत्पल दत्त ने थिएटर, नुक्कड़ नाटक, पारंपरिक लोक नाटक और सिनेमा में अलग अलग तरह की भूमिकाएं बखूबी निभाई हैं। उनके लिखे और निर्देशित कई बांग्ला नाटकों ने लोगों को खूब प्रभावित किया। उत्पल दत्त के नाटकों में अंगार, कल्लोल और बैरिकेड काफ़ी चर्चित रहे। 29 मार्च सन 1929 को जन्मे उत्पल दत्त

के रचनात्मक जीवन की शुरुआत सन 1940 में हुई। उन्होंने अंग्रेजी थिएटर से जुड़कर अभिनय की शुरुआत की। शेक्सपियर साहित्य से उत्पल जी को बेहद लगाव था। इस दौरान उन्होंने थिएटर कंपनी के साथ भारत और पाकिस्तान में कई नाटक मंचित किए। नाटक ओथेलो से उत्पल दत्त को बहुत प्रशंसा मिली। इसके बाद उनका रुझान अंग्रेजी से बंगाली नाटक की ओर गया। सन 1950 के बाद उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी ज्वाइन कर ली, जिसके कारण उनका बंगाली फिल्मों से कैरियर शुरू हो गया। इसके साथ ही उनका थिएटर से प्रेम भी बना रहा। इसी दौरान उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन ही नहीं बल्कि लेखन कार्य भी किया। हिंदी फिल्मों में उत्पल दत्त महान हास्य अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं।

श्रोताओं, उत्पल दत्त हिंदी सिनेमा में आने से पहले बंगाली थिएटर और बंगाली सिनेमा के जाने माने अभिनेता और रंगकर्मी थे। अमिताभ बच्चन की डेब्यू फिल्म सात हिंदुस्तानी में एक हिंदुस्तानी उत्पल दत्त भी थे। 70 के दशक की प्रमुख कृतियों में से भुवन शोम भी एक थी, जिसके नायक थे उत्पल दत्त। इस फिल्म में अभिनय के लिए उन्हें सन 1970 में श्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। फिल्म जगत उत्पल दत्त के योगदान को हमेशा याद रखेगा।

इस गीत के साथ ही आज के रजनीगंधा कार्यक्रम से अब रत्ना को दीजिए अनुमति। आज हम याद कर रहे थे हिंदी और बांग्ला फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता उत्पल दत्त को। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र 8:45 होने को है। समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग

0: परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
3: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से

0: चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
2: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
3: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
2: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक

0: आत्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 5 infrastructure projects worth over 13,000 crore rupees, clears 4 railway multi-tracking projects across 4 states. Also gives nod to widening of National Highway 22 in Bihar. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari says high quality and cost effective infrastructure top priority, says center will review subcontracting norms. US Ambassador Sergio Gore hails steps taken by center and Jammu and Kashmir governments to improve security in the Union Territory. President Draupadi Murmu calls for accurate, credible and citizen-centric government communication in social media era. Iran warns Gulf nations against facilitating U.S. military operations. India beat Pakistan 5-3 to qualify for second round of men's FIH Hockey World Cup in the Netherlands. And in men's cricket, India seal a commanding 165-run win over hosts Sri Lanka in Gaul Test. Manav Sutar claims maiden 10-wicket haul. The Union Cabinet today approved five projects.

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे कटी पतंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी थे गीतकार और संगीतकार थे आर डी बर्मन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में चाइना टाउन फिल्म से। मजनू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं रवि।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: हाँ।

ऐसे अभिनेता की जो चरित्र भूमिकाएं निभाते हुए भी अपने हर किरदार को यादगार बनाने का हुनर रखते हैं। अपनी भावपूर्ण आंखों और संवाद अदायगी के अंदाज से चेहरे पर मुस्कान खिला देते हैं। आज के फनकार हैं अभिनेता, निर्देशक, लेखक और नाटककार उत्पल दत्त।

0: गोलमाल है।
1: उत्पल दत्त, ये नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने वो सारे किरदार तैर जाते हैं जो उनके अभिनय से अमर हो गए हैं। फिर चाहे वो मूंछों के दीवाने गोलमाल के भवानी शंकर हों, या पढ़ी लिखी बहू लाने के सख्त खिलाफ किसी से न कहना के कैलाशपति, इन अतिशयोक्तिपूर्ण किरदारों में उत्पल दत्त के अलावा किसी और की कल्पना हम कर ही नहीं सकते।

0: तरह उत्पल दत्त के अभिनय और हाव भाव को भूलना मुश्किल है, उसी तरह मुश्किल है उनके अनोखे अंदाज में कहे कुछ शब्द, जैसे अच्छा हैं या चौंक कर उनका ई कहना। वो इन कुछ शब्दों में ही अपने अलग अलग भाव बड़ी आसानी से प्रकट कर देते और दर्शक उनके इन भावाभिव्यक्ति पर लोटपोट होते नजर आते।
1: काहे छट्टे

0: उत्पल दत्त का अभिनय इतना स्वाभाविक लगता कि दर्शकों को वो अपने आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति की याद दिला जाते। अपने मजाहिया अंदाज वाले किरदारों के लिए लोकप्रिय हुए उत्पल दत्त कभी बेवजह हंसाने की कोशिश करते नजर नहीं आते, बल्कि वो अपने सहज अभिनय से ही लोगों को पेट दुखते तक हंसने पर मजबूर कर देते और उनके चेहरे पर ऐसी किसी कोशिश का निशान तक नहीं दिखता।
1: सिर्फ आलू का पराठा क्यों बेटा, मैं तुम्हें कलकत्ते का राजभोग खिलाऊंगा, दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा, बनारस का कलाकंद खिलाऊंगा।
2: मगर सर इतनी सारी मिठाइयां।
1: अरे बेटा नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा।
2: पुलिस की मार?
1: पुलिस की मार।
0: उत्पल दत्त के सहज अभिनय के पीछे उनकी रंगमंच में की गई सालों की मेहनत चमकती है। 29 मार्च 1929 को उस वक्त पश्चिम बंगाल और अब बांग्लादेश में स्थित बारिसल में उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा कलकत्ता में पूरी हुई। इस दौरान ही अपनी युवावस्था में उनका रुझान अंग्रेजी थिएटर की ओर होने लगा। 1947 में वो थिएटर ग्रुप से जुड़ गए और अभिनय करने लगे। उनके पहले ही किरदार ने मशहूर रंगमंच निर्देशक जेफरी कैंडल का ध्यान आकर्षित किया। उत्पल दत्त उनकी थिएटर कंपनी के साथ 2 सालों की भारत पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों की लंबी यात्रा में

कंप्यूटर की दुनिया ने उत्पल दत्त के लिए विचारों की एक नई राह खोल दी। उन्होंने अपने थिएटर ग्रुप की स्थापना की, जिसका नाम रखा लिटिल थिएटर ग्रुप। शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, गोर्की, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे देश विदेश के बड़े बड़े दार्शनिक, लेखक और समाज सुधारकों की कहानियों पर वो नाटक रचने लगे। एक वक्त के बाद उत्पल दत्त को ये एहसास हुआ कि वो अपने नाटकों से जो संदेश आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें भारतीय पृष्ठभूमि के नाटक रचने होंगे। यहाँ से वो एक नाटककार और लेखक की भूमिका में ढल गए। उनके लिखे कई नाटक आज भी बदलाव लाने वाले नाटकों के तौर पर पहचाने जाते हैं। चलो हसी।

दत्त इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। उनको रंगमंच पर एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पहचाना जाता है जो कला के माध्यम से समाज सुधार की बात करते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध नाटकों में शामिल हैं ओंगार, टीनेर तलवार, फेरारी फौजी, आज केर शाहजहां, मानुषेर अधिकार, लोहा मानव, बैरिकेड, दूस्वप्नार नगरी, ए बार राजार पाला और कल्लोल। अपने कुछ नाटकों में उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों पर चोट करने का साहस किया। कल्लोल के लिए उन्हें जेल में कुछ महीने भी बिताने पड़े, लेकिन वो अपने विचारों से टस से मस ना हुए और सामाजिक जागरण तथा बदलाव की बातें करते रहे।

दत्त का फिल्मों में आना भी रंगमंच के कारण ही संभव हुआ। रंगमंच में उनको ओथेलो की भूमिका में देख बांग्ला फिल्मकार मधु बोस ने अपने फिल्म माइकल मधुसूदन में मुख्य भूमिका के लिए चुना। ये फिल्म क्रांतिकारी भारतीय कवि माइकल मधुसूदन दत्त के जीवन पर आधारित थी। इसके बाद उत्पल दत्त कई बांग्ला फिल्मों में नजर आए। इनमें शामिल है मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म भुवन शोम। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया।

बांग्ला फिल्मों की बातें करें तो उत्पल दत्त वहाँ अलग अलग भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ते रहे। 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित फिल्मकार सत्यजीत रे की आखिरी फिल्म आगंतुक में उत्पल दत्त के किरदार मनमोहन मित्रा को सराहना मिली। सत्यजीत रे की ही फिल्म जॉय

बाबा फेलूनाथ में मगनलाल मेघराज के किरदार में उत्पल दत्त एक विलेन की भूमिका में दिखे। उनकी कुछ उल्लेखनीय बांग्ला फिल्मों में भुवन शोम, आगंतुक, जॉय बाबा फेलूनाथ के साथ ही नाम शामिल है पद्म नादिर माझी का।

सात हिंदुस्तानी फिल्म से हिंदी फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले उत्पल दत्त जिस भूमिका में होते उसमें इस तरह ढल जाते कि बस वो किरदार के रूप में ही नजर आते। जैसे द गुरु फिल्म में सितार वादक जाफर खान के किरदार को वो बड़ी ही सहजता से निभाते नजर आते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे कि वो एक अभिनेता नहीं बल्कि एक सितार वादक ही हों। वहीं बासु चटर्जी की फिल्म शौकीन में उनके किरदार जगदीश भाई अपने दोस्तों के साथ वाकई शौकीन और शातिर नजर आते हैं।

दत्त 1950 में कलकत्ता के एक स्कूल में इंग्लिश टीचर थे और अपने विद्यार्थियों के प्रिय हुआ करते थे। कुछ ऐसा ही वास्तविक किरदार उन्होंने निभाया फिल्म गुड्डी में। गुड्डी में प्रोफेसर गुप्ता उर्फ मामा जी के किरदार में ढलकर फिल्मी दुनिया को असली मानने वाली फिल्म की हीरोइन गुड्डी को फिल्मी दुनिया की वास्तविकता दिखाने का वो प्रयास करते हैं। इस फिल्म के जरिए न जाने कितने लोगों के लिए वो एक टीचर बनकर उनका दिल जीतने में कामयाब हुए होंगे।

जहाँ एक और गुड्डी में उनका किरदार फिल्मी दुनिया की असलियत बताता है, वहीं फिल्म रंग बिरंगी में वो नजर आते हैं पुलिस इंस्पेक्टर धुरंधर भाटावड़ेकर के रूप में। धुरंधर भाटावड़ेकर जो फिल्मों और फिल्मी दुनिया के सभी लोगों से नफरत करता है। फिल्म रंग बिरंगी में उनकी एंट्री तकरीबन फिल्म के अंतिम चरण में ही होती है, लेकिन उनके आते ही जैसे फिल्म की पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द ही घूमने लगती है। कुछ सीन्स में ही नजर आने के बावजूद धुरंधर भाटावड़ेकर हमें याद रह जाते हैं और फिल्म में अपने अभिनय का एक अलग ही रंग भर देते हैं।

अभिनय में माहिर उत्पल दत्त फिल्मों में नहीं आना चाहते थे, ये जानकर शायद आपको आश्चर्य हो, क्योंकि उनका पूरा ध्यान रंगमंच की ओर ही था। वो अपनी कला का उपयोग समाज को बदलने में करना चाहते थे, लेकिन उनका कहना था कि फिल्मों में वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। कई बार तो वो फिल्म करके भूल भी जाते कि उन्होंने कौन से किरदार निभाए और फिल्म की कहानी क्या थी, लेकिन ये उनका सहज अभिनय ही था जो दर्शकों को यूं बांध लेता कि वो कभी उन किरदारों को भूल ही नहीं पाते थे।

0: उत्पल दत्त ने कई किरदार निभाए हैं। बांग्ला और हिंदी फिल्मों को मिलाकर तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उनके नाटकों की अलग ही गिनती है, जिसमें से कुछ उन्होंने खुद लिखे। उत्पल दत्त अपने चेहरे, हाव भाव और चश्मे के भीतर से झांकती आंखों से कुछ यूं अभिनय करते कि मानो उनका पूरा व्यक्तित्व ही किरदारों के अनुसार बदल जाता। उस पर संवाद अदायगी के दौरान आवाज का उतार चढ़ाव देखने वाले को बांध लिया करता। कभी उनके किरदार बेहद सुलझे हुए होते तो कभी बिल्कुल अनोखे।
1: ये रात में नहीं पूरा।

दत्त के निभाए किरदारों की बात आती है तो जहां हम उन्हें कॉमेडी किरदारों में ज्यादा याद करते हैं, वहीं जब जब उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई बिल्कुल अलग नजर आए। उन्हें खलनायक वाले किरदार में देखकर हम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि ये वही अभिनेता हैं जो कॉमेडी करते नजर आते हैं। उन्हें खलनायक बने हमने देखा फिल्म अमानुष में मुनीम घोषाल के रूप में, वो साहू जी बने नजर आए फिल्म थी बरसात की एक रात, द ग्रेट गैम्बलर में डॉन सक्सेना, तो इंकलाब में सीताराम का किरदार उन्होंने निभाया।

दत्त के सहज अभिनय को कई बार सराहा गया। यूं तो दर्शक हमेशा ही उनके किरदारों को पसंद करते रहे, लेकिन उन्हें कई बार पुरस्कारों के जरिए भी प्रोत्साहन मिला। उन्हें कई पुरस्कार मिले, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सम्मान हैं: संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड।

अभिनय के साथ ही उत्पल दत्त ने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। इनमें शामिल हैं मेघ, घूम भांगर गान, झार, बैसाखी मेघ, माँ और इंकलाब के बाद। साल 1960 में उन्होंने रंगमंच और फिल्म अदाकारा शोभा सेन से शादी की। दोनों की इकलौती संतान विष्णु प्रिया दत्त भी आगे चलकर रंगमंच से जुड़ी और उससे संबंधित काम करती हैं।

अगस्त 1993 को कलकत्ता के एक निजी अस्पताल में उत्पल दत्त का हृदय आघात से निधन हो गया। अंतिम दिनों तक वो अभिनय में सक्रिय रहे। टीवी शो व्योमकेश बख्शी में उनका किरदार और आखिरी फिल्म मेरा दामाद रही। ये फिल्म उनकी मृत्यु के 2 साल बाद रिलीज हुई। उत्पल दत्त भले ही इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन वो अपने पीछे अनगिनत किरदारों की वो दुनिया छोड़ गए जो किरदार आज भी हमें हंसाते हैं और सिखाते हैं जीवन जीने की कला।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था सहज अभिनय, भावपूर्ण अदायगी और आंखों से अपने भाव जाहिर करने वाले अभिनेता, निर्देशक, लेखक और नाटककार उत्पल दत्त पर।
1: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।

0: शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।
4: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

प्रस्तुत है छाया गीत, सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, एक छोटे से कमरे के कोने में एक लड़की खिड़की के पास बैठी है। खिड़की खुली है, चांद की रोशनी उसके चेहरे पर उतर आई है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। उसकी आंखें बार बार आसमान में चांद को देखती हैं और फिर उस रास्ते पर टिक जाती हैं जहां से उसे किसी के आने की उम्मीद है। दूर कहीं नदी के किनारे खड़ा युवक अपनी हथेली हवा में फैलाकर मुस्कुरा देता है और पूरी रात चांद दोनों के बीच एक खामोश संदेशवाहक बन जाता है।

हवा और ठंडी हो गई, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे हैं, जुगनू और चमकने लगे हैं, चांद जैसे मुस्कुरा रहा है। रात का सन्नाटा अब डरावना नहीं बल्कि प्यार से भरा हुआ लग रहा है। लड़की ने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला, हवा ने उसकी उंगलियों को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसका हाथ थाम लिया हो और थपथपा दिया हो। तुम आए थे ना, लड़की ने पूछा। उस रात किसी ने किसी को नहीं देखा, फिर भी दोनों ने एक दूसरे को बहुत करीब से महसूस किया था।

जब चांद, तारे, चांदनी, नदी, पहाड़, हवा और रात की खामोशी किसी प्रेम कहानी के साथी बन जाएं, तो फिर दूरियां भी मोहब्बत को रोक नहीं पाती। चांद आज भी हर रात निकलता है, हवा आज भी खिड़कियों को छूती है, थपथपाती है, जुगनू आज भी अंधेरे में रोशनी बिखेरते हैं, और कहीं ना कहीं दो दिल आज भी उसी चांदनी रात में एक दूसरे से मिलने की दुआ करते हैं। रात का सन्नाटा तब डरावना नहीं, बल्कि प्यार से भरा हुआ लगता है।

इस अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। तारे उस रात प्रेमी युगल की अधूरी बातें सुनते रहे, जुगनू उनकी उम्मीदों की तरह टिमटिमाते रहे, नदी उनके प्यार की कहानी अपने साथ बहाती रही, पहाड़ उनकी मोहब्बत के गवाह बने खड़े रहे और हवा हवा हर पल एक दिल से दूसरे दिल तक प्यार का एहसास पहुंचाती रही। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन उनके दिल एक ही धड़कन में बंध चुके थे अब।

रात और गहरी हो चुकी थी। भीगी भीगी चांदनी खिड़की से होकर कमरे में उतर रही थी। कमरे की खिड़की के पास बैठी वो सुंदर सी लड़की कांपती हुई आवाज में आसमान की ओर देखकर फुसफुसाई, सुन रहे हो ना? मैं आज भी उसी खिड़की पर बैठी हूँ तुम्हारे इंतजार में। जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, हवा ने अपना रुख बदल लिया। वो पहाड़ों को छूती हुई जंगलों से गुजरी और सीधे नदी किनारे जा पहुंची, जहां वो लड़का बैठा था। हवा ने उसके गालों को धीरे से छुआ। लड़का मुस्कुराया, बोला, हाँ, तुम्हारी खुशबू आज भी इस हवा में बसी है। रात का सन्नाटा अब खामोश नहीं था, उसमें दो दिलों की धड़कने थी।

उस रात चांद उनका आसमान था, तारे उनकी दुआ थे, हवा उनका संदेश थी, नदी उनकी आवाज थी, पहाड़ उनके सहारे बन गए और भीगी हुई चांदनी उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत गवाह। उस रात चांद चांदनी बरसाने लगा था, तारे दुआ बन गए थे, जुगनू नदी के

किनारे से उड़ते हुए हवा के साथ उस खिड़की तक पहुंच गई। नदी की हर लहर पुकार रही थी, दो दिल एक दूसरे के लिए ठहर गए थे। कमरे के कोने में बैठी वो प्यारी सी लड़की की आंखें अब चमक रही थीं। उन आंखों में उम्मीद की चमक थी, हाँ, कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये दूरी खत्म होगी, यही चांद, यही तारे, यही हवा हमारे मिलन के गवाह बनेंगे।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: करो वादा।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।

0: बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी हम रेल कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये बिलासपुर केंद्र है, रात के 11 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर

0: पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णा नगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. US Ambassador to India Sergio Gore today described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the center and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. The US envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar. Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-US relations and areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir. India's young sensation Ayush Shetty has expressed happiness after securing a second round victory in the men's singles event at the BWF Badminton World Championships in New Delhi. talking to me.